एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 14 अक्टूबर सन 2026। श्रोतो, इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, सुबह के 6 बजने को हैं अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6 चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी

0: तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

0: कभी कभी परमात्मा की अनुभूति शब्दों में नहीं मौन में होती है। प्रार्थना के भी ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता और वह केवल प्रभु के सामने बैठा रहता है। यही मौन धीरे धीरे ध्यान का रूप ले सकता है। मौन हमें अपने भीतर की साक्षी से परिचित कराता है। जब बाहरी संसार की आवाजें कुछ समय के लिए पीछे हटती हैं, तब मनुष्य अपने संस्कारों, विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्टता से देख पाता है। इसलिए मौन को केवल चुप्पी ना समझें, इसे आत्मचिंतन, नाम स्मरण और प्रभु चिंतन का अवसर बनाइए। जिस मौन में मनुष्य स्वयं को सुन लेता है, वहां से आत्मबोध की यात्रा आरंभ हो सकती है।
1: चिंतन के बाद लीजिए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जीवन में जब कोई हाथ और साथ छोड़ दे, तब वो परम शक्ति किसी न किसी रूप में हमारा सहारा बनकर हमारे पास उपस्थित हो जाते हैं। कई बार तो हमें ये आभास भी नहीं होता कि इतनी बड़ी मुश्किल से हम बाहर कैसे निकल पाए। जब परमात्मा का सुरक्षा कवच हमारे आसपास होता है, तो कोई भी व्याधि, कोई भी दुख हमें छू भी नहीं सकता।

जब हम भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं तो वह परम कृपालु हमें किसी और के आगे झुकने नहीं देते। झुकाव का अर्थ हार नहीं है, क्योंकि भूमि से जुड़े हुए लोग हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत जो लोग थूथी बातें करते हैं, झूठ का साथ देते हैं, निंदा, खुशामद और चुगली करते हैं, उनके पैर जमीन पर कभी नहीं टिकते, ना ही उनमें ठहराव और प्रभु भक्ति पाई जाती है। फलों से लदे पेड़ हमेशा झुके रहते हैं, वे झुककर दूसरे लोगों की भूख प्यास शांत

प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान हमारी बातें सुनते हैं और ध्यान में हम भगवान की बातें सुनते हैं।

भरत के साथ अयोध्या का समस्त समाज अवधपुरी के मार्ग पर उदास लौट रहा है। सभी श्री राम के विरह में विह्वल हैं। ऐसी मनोदशा में स्नान भोजन की सुधि किसे होगी? यमुना, गंगा तथा गोमती को पार कर चौथे दिन लोग अयोध्या पहुंचे। मंत्री गुरुवर वशिष्ठ की देखरेख में भरत को राज्य सौंप सहेज कर मिथिलापति 4 दिनों बाद तिरहुत लौट गए। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके गुरुजन तथा माताओं की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर धर्म की धुरी धारण की। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहां निवास करने लगे।

अभी आपने श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ सुना और आज आप सुन रहे थे भाग 239। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रम।

कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। समाचार प्रभात सुबह 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हिमगुंजन। 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जाएगा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 9:50 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। गीतों का कारवां, इस कार्यक्रम का लुत्फ आप उठाएंगे 10:00। पहाड़ों के सुर, हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से 11:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे कव्वालियां। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12:00 सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुनो सखी, महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:30 पर। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम 1:10 से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर जिले की चिट्ठी रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से 5:00 तक, और 5:00 समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें 5:00 हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। संध्याकालीन भजनों का आनंद लीजिएगा 5:10 पर। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्पोर्ट्स बीट। 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ, मौजें कराएं दिया, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार, और आज के गीतकार हैं निदा फाजली। रात 9:30 पर चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात 10:00 आप सुनेंगे रूपक। 10:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत प्रसारित किए जाएंगे। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुन पाएंगे। श्रोता, ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के इस सम्मेलन का विषय है भारत की वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। नई दिल्ली में 3 दिन के सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित अन्य देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान पर चर्चा में योगदान देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए $1,20,00,000 का जुर्माना लगाया है। ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बड़े बैंकों को भी कानून का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन पूरे अमरीकी वित्तीय तंत्र के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इसके प्रभाव से 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांगो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों तक फैल चुका है। ये प्रकोप बंडी बुग्यो वायरस के कारण फैला है और इसका अभी तक कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4th T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नासुकी निदायरा को हराया। उनका अगला मुकाबला जर्मनी की येवोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। डबल्स में, पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपने अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुबह सुहानी।

सुबह का सलाम है, आपकी मुस्कान से रोशन हर मुकाम है। जुड़ जाइए हमारे इस प्यारे से सफ़र में, जहां हर बात में अपनापन, हर लफ्ज़ में पैगाम है। श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है बुधवार और बुधवार की इस सुहानी सी सुबह में आज के अंक के साथ हम स्टूडियोज़ में आ चुके हैं। आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पवन शर्मा के साथ। सुबह की ताजगी प्रकृति के नज़ारों के साथ और भी खूबसूरत सी लगती है, जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, हरे भरे पेड़ पौधे झूम झूम कर नाचते हैं, कलकल करती नदियां संगीत की सुरलहरियां बजाती हैं और पंछी भी अपनी मधुर मीठी आवाज़ में गुनगुनाकर इस वातावरण को और भी सुहावना बना देते हैं। और श्रोताओ इसी के साथ जब आकाशवाणी धर्मशाला से मधुर संगीत बज रहा हो तो फिर चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए इस सुरीले से गीत के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

बिल्कुल श्रोता, हमारा मन भी झूमने गाने का करता है जब आप सब श्रोताओं का साथ हो और मनोरंजन के सफ़र में हम यूं ही साथ साथ मिलकर सुने, क्योंकि ये है हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़, जिस पर आप सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सुहाने समय। और अब बात करते हैं आज की सुविचार की, क्योंकि अच्छे विचार और अच्छा संग हमेशा हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। माता पिता के द्वारा डांटा गया बच्चा, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना हमेशा आभूषण ही बनते हैं। तो इसलिए कहते हैं जीवन में जहाँ भी हमें अच्छी सीख मिले उसे हमें सीखना चाहिए और यही सीख हमें ऊंचाइयों पर ले जाती है। जी बिल्कुल, एक गाना हम सुनवाएंगे और उसके तुरंत बाद लौटेंगे अगले

0: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
1: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
3: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
4: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
5: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
0: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
1: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
6: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
7: सौगात नई, कुछ नए तराने,
8: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
6: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
7: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
8: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
6: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
7: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
6: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
8: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
9: सुबह के 7:23 और 56 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओ, हमारा देश त्योहारों और आस्था की पावन भूमि है। यहाँ मनाया जाने वाला प्रत्येक पर्व हमें अपनी संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ता है। नवरात्रि भी एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप तेजस्वी और दिव्य है। मान्यता है उनकी आराधना से जीवन में ऊर्जा, उत्साह, सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। उन्हें 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन है और ये दिन हमें संदेश भी दे

लगता है कि हमारे भीतर भी सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और नई शुरुआत करने की शक्ति मौजूद है। जिस प्रकार सृष्टि की रचना को माँ कुष्मांडा से जोड़कर देखा जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में नए विचारों और अच्छे कर्मों का सृजन करना चाहिए। तो चलिए माँ को याद करते हुए एक भजन हम सुनते हैं।

हम सब में आस्था, प्रेम और प्रभु भक्ति बिल्कुल होती है। जब उस परम शक्ति की दिव्य दृष्टि हम लोगों तक पहुंचती है तो जीवन निहाल हो जाता है। ये धरती उन्हीं शक्तियों के माध्यम से

चल रही है, हमारे जीवन में होने वाली हर घटना इन्हीं के रचाए हुए खेल हैं। सुबह सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अब जानते हैं इतिहास में क्या कुछ हुआ आज के दिन। शुद्ध इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं, बल्कि उन घटनाओं का संग्रह है जिनसे हम वर्तमान को समझते हैं और भविष्य के लिए प्रेरणा लेते हैं। तो जानते हैं क्या कुछ रहा इतिहास के पन्नों में आज के दिन से संबंधित। सन 1882 को शिमला में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की स्थापना हुई, जो भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। सन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सन 2010 में नई दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज ही के दिन हुआ। सन 1643 में बहादुर शाह प्रथम दिल्ली के मुगल बादशाह का जन्म आज ही के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल 1884 में आज ही के दिन पैदा हुए। आज जन्म दिवस है भारत के प्रसिद्ध सितार वादक निखिल बैनर्जी का, जो 1931 में जन्मे। सन 1950 में पैदा हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का आज जन्म दिवस है, जो परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक हैं।

0: बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीज पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
1: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0 डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा।

0: Adapt a product TNC apply.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till limited period.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीज पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
5: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0 डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाप प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
6: जब सुनाना हो दिल का हाल
7: तो इसमें भाई क्या है सवाल,
6: क्योंकि हेलो धर्मशाला आ रहा है एक नए अंदाज में।
7: उठाइए फोन, मिलाइए हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर
6: 01892224391।
7: कीजिए हमसे बात और सुनिए अपने पसंद का गीत।
6: रिकॉर्डिंग हर शनिवार को दिन में 1:30 से 2 बजे तक होगी।
7: कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा प्रत्येक मंगलवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि हेलो धर्मशाला पहुँचे दिल से दिल तक
6: आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 103.4 MHz पर।
7: सुबह सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, अब हम बात करेंगे विश्व मानक दिवस के बारे में। आज हम बात करेंगे ऐसे दिवस की जिसका संबंध हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले लगभग हर वस्तु की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता से है। और ये है विश्व मानक दिवस, जिसे हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि बाज़ार से खरीदा गया कोई सामान गुणवत्ता के निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है या नहीं? हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बिजली के उपकरण, मोबाइल फ़ोन, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ और यहाँ तक कि निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व मानक दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के निर्माण में योगदान देने वाले विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों को सम्मान देने का अवसर है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग यानी IEC और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU मिलकर मनाते हैं। मानकों का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और उपयोगी बनाना है। जब अलग अलग देशों में तकनीकी मानकों के बीच सामंजस्य होता है तो व्यापार, तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इस वर्ष विश्व मानक दिवस 2026 की थीम है। इस वर्ष विश्व मानक दिवस का संदेश एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण से जुड़ा। वर्ष 2026 में विशेष ध्यान संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य संख्या 7 पर है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ऊर्जा प्रणालियों को सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय बनाने में योगदान देते हैं। मानक केवल तकनीकी नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि वे हमारे जीवन में सुरक्षा, विश्वास और गुणवत्ता की नींव हैं। जब हम गुणवत्ता को महत्व देते हैं और जागरूक उपभोक्ता बनते हैं, तब हम एक सुरक्षित और जिम्मेदार और बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देते हैं।

सुबह के 7:43 और 32 सेकेंड हुए हैं। आपने ट्यून किया है 103.4 MHz। प्रोग्राम सुन रहे हैं सुबह सुहानी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा चयनित 101 JBT अभ्यर्थियों की सूची जिला कांगड़ा में रिक्त पदों को भरने हेतु इस कार्यक्रम में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस सभी के प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में दिनांक 15 अक्टूबर 2026 यानी कल सुबह 10 बजे किया जाएगा और सभी चयनित अभ्यर्थी इस स्कूल में सुबह 10 बजे अपने मूल प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापित प्रति के साथ उपस्थित हो जाएं। और प्रमाण पत्रों की सूची में शामिल है मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, 10:2 मूल प्रमाण पत्र, टेट पास प्रमाण पत्र, JBT प्रमाण पत्र या समकक्ष, हिमाचल प्रदेश का मूल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र और नवीनतम सत्यापित फोटो। सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब एक गीत आपको सुनवाते हैं और आगे की जानकारियां उसके तुरंत बाद।

श्रोताओ, 14 अक्टूबर का दिन भारतीय इतिहास में अपना अलग ही महत्व रखता है, क्योंकि ये दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महान क्रांतिकारी विद्वान और राष्ट्रभक्त की जन्म जयंती का अवसर है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाला हरदयाल जी की, जो कि आज ही के दिन 1884 को पैदा हुए। उन्होंने गदर आंदोलन से जुड़कर

अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनजागरण किया। उनका जीवन त्याग, साहस और देशभक्ति की प्रेरणादायक मिसाल है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता की भावना किसी भी कठिनाई से बड़ी होती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी चरण में हम पहुंच गए हैं और आज के समाचारों से आपको अवगत करवाते हैं। यूपीआई लेन देन पर प्रस्तावित व्यापार शुल्क लागू करने का निर्णय दिवाली के बाद तक टाला गया। नई दिल्ली में आज 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक बृहत्तर भारत विश्वभर में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी

राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजनयिक और विद्वान भाग लेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज 14 अक्टूबर को विशेष अभियान 6.0 के अंतर्गत देशभर की पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाएगा। इस दौरान पंचायत कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई, पौधारोपण, लंबित शिकायतों और आवेदनों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बात करते हैं खेल समाचारों की। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम श्रृंखला में 2-1 से आगे है और पिछले मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से हराया था। अभिषेक शर्मा ने 69 रन बनाए थे जबकि अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट हासिल किए। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए मिली जुली खबरें हैं। पीवी सिंधु ने महिला एकल के पहले दौर में हार का सामना किया है जबकि कदम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा ने दूसरे दौर में जगह बनाई है। स्केटिंग में भारत के आनंद कुमार फेल कुमार ने पैराग्वे में की राजधानी अनसुयोन में आयोजित वर्ल्ड स्केट गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खिलाड़ियों के लिए प्रस्तावित स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश के राज्य के 7 जिलों में गरज चमक, बिजली और ओलावृष्टि की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

0: श्रोतो, ये तो था आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले समाचार प्रभात, तो उसके बाद मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर रिले की जाएंगी।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी

0: निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www

0: www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: नहीं
1: पैसा बढ़ाएंगे हम
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
3: सुनती हो कमाल ही हो गया।
4: क्या हो गया ऐसा?
3: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
4: ये कमाल कैसे हो गया?
3: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
4: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
3: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
6: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीन फील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
7: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
6: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
8: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
6: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
5: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
9: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं

0: सांची वाजपेयी।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यवोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, AI से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट JEE की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास AI ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस बृहत्तर भारत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली टुडे थ्रू वीडियो मैसेज। बिम्स्टेक नेशन स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल इट्स

हिमगुंजन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यारा सा नमस्कार और सुबह की मीठी सी नमस्ते जी। बिल्कुल, हिमाचली गीतों और लोक संगीत से सजा ये कार्यक्रम है और नवरात्रि चल रहे हैं तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माता की इस भेंट के साथ, जिसे गाया है संजीव कुमार ने।

0: वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.62 lakhs.
0: Yes, rupees 9.62 lakhs. Offer valid till limited period.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 799 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: बेजान छतों में जान
4: यार, ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
5: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
4: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
6: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
7: विकास संवाद,
8: एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बातें होंगी विकास की।
9: विकास के इस सफर में हमारे हम सफर होंगे विभिन्न विभागों से आए प्रतिनिधि।
8: कार्यक्रम के इस अंक में आपके रूबरू होंगे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा।
9: कार्यक्रम का प्रसारण होगा मंगलवार दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:05 पर।
8: तो सुनना न भूलिएगा
7: विकास संवाद।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
2: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
1: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
3: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
5: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
4: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till limited period.
5: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
0: Nexa. बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
4: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.62 lakhs.
6: Yes, Rs. 9.62 lakhs. Offer valid till limited period.
4: Own this style icon at an EMI of just Rs. 799 per month.
6: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
7: Nexa.
8: हर दिन नई जानकारियों और मनोरंजन को लेकर आता है
9: आपका अपना कार्यक्रम सुबह सुहानी।
8: बातें करेंगे हम आपसे, मनोरंजन की सौगात भी साथ होगी
9: जब हम मिलेंगे आपसे सुबह 7:10 से 8 बजे तक।
8: ये वो समय होता है जब जुड़ते हैं देश विदेश की जानकारियों के साथ,
9: रोजाना ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचाते हैं,
8: तभी तो आपकी सुबह होती है और भी सुहानी।
9: तो सुनना ना भूलें मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी।
10: आठ बजकर 49 मिनट और 59 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं हिम्बु गुंजन कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए निम्मो चौधरी को।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई, कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
1: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
2: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
1: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
4: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
5: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.62 lakhs.
4: Yes, ₹9.62 lakhs. Offer valid till limited period.
5: Own this style icon at an EMI of just ₹7,999 per month.
4: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
5: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
5: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.75 lakh.
5: Yes, ₹6.75 lakh. Valid till limited period.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: छतों में जान डालने निकला है कोई।

0: क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: हेमगुंजन कार्यक्रम की अगली पेशकश लीजिए सुनिए ज्वाला प्रसाद की आवाज में।

उपनिदेशक स्कूल शिक्षा बोर्ड कांगड़ा स्थित धर्मशाला से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा चयनित 101 JBT अभ्यर्थियों की सूची जिला कांगड़ा में रिक्त पदों को भरने हेतु इस कार्यालय में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुई है। इन सभी के प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थी इस स्कूल में 15 अक्टूबर को यानी कल सुबह 10 बजे अपने मूल प्रमाण पत्रों और मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति के साथ उपस्थित हों। प्रमाण पत्रों की सूची में मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, 10-2 मूल प्रमाण पत्र, टेट पास प्रमाण पत्र, JBT प्रमाण पत्र या समकक्ष, हिमाचल का मूल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र और नवीनतम सत्यापित फोटो 1। सूचना समाप्त हुई।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 होने को हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण रिले किया जाएगा और ये प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा समुद्र बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई

0: 14,500 किलोमीटर के करीब है और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज जलेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्टलाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्टलाइंस है वहां पर भी सफल रहा है?
1: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले मेरे ख्याल से 2020 के आसपास एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
0: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे यहाँ 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कॉमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो, तो ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस उभर रही हैं और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है। और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित हैं और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के

0: बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं। अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा, मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA मिलियन टन पर एनम था, और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है। और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
2: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में, ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें दैट में अगर एक दिन में ये काम हो रहा है तो पहले 3 दिन में होता था, अभी एक दिन में 3 जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता 3 दिन में, तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें 3 टाइम। मुझे अपनी जो गति है देश की उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में, एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है उसमें टॉप 30 में हमारे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये 3 पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा, देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल, इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार?
0: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 90-95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबड़ जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इन सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।

0: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं, तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
1: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से, जब ये दुनिया में जब इनका हुतीस जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे, कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है। और हमारे जहाज कंटिन्यूसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे, तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें जो नेवी के जहाज बन रहे हैं, वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है दोनों का पैरेलल विकास जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार?
2: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो, और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है और वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं उनके विकास की कोशिशें की गई, तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी

0: हो चुकी हैं। तो
1: जी
0: इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है,
1: जी
0: जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहें, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं,
1: जी
0: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सकें और उसमें अपना योगदान दे सकें।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है, जैसा आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
0: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका। और क्योंकि भारत में गंगा नदी, मुख्य रूप से गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर, वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है,
1: जी
0: जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज जो इनलैंड वाटरवे वन की बात हो रही है, जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलैंड वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए
1: जी
0: कि वो भी पोर्टलेट डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है, ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल, खास तौर पे खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में
1: जी
0: आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलैंड वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए, और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं
1: जी
0: उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में, पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास को
1: आपने
0: लेकर।
1: बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया
1: जी
2: के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट
1: जी
2: का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विरिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है त्रिवेंद्रम में,
1: जी
2: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और

0: इंटरनेशनल शिपिंग लेंस जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है। और जो स्वेज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विरिंगम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो
1: जी
0: ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है। और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका, वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्वेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज 2 और फेज 3 खत्म होएगा 2028 तक,
1: जी
0: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEU से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे। और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEU होने का उद्देश्य है इस बात का।
1: आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला, और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर के डी जोशी डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा स्ट्रेटेजी। प्रोफेसर और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात ने, यहाँ पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
2: देखिए, ये जो परियोजना है सागर कांठा के तमाम जो जिले हैं जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से 1000 साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले, बल्कि उससे भी ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई। और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इंपैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक है।
1: कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
2: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्ट लेड डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के, जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें।
1: जी
2: तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित

0: परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
1: बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
2: जी सोलो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरीटाइम जो हेरिटेज है उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है, और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जन साधारण के लिए एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही अच्छा, एक आप कह सकते हैं एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा लोगों के लिए, वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
0: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं, वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5,000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल, जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग किए, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं, तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5,000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है, उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं, 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047, उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच, कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
2: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
1: जी,
2: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का
1: जी
2: वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाह

0: ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है। समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे वन बन रहा है, जो वाराणसी और हल्दिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखे हैं, कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर वडोदरा तक। तो अभी आप देखें कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है। बाकी
1: जी
0: पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब, मेरे को लगता है 300 350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है। और
1: जी
0: ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही हैं। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल
0: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की, वो
1: जी
0: एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में।
1: जी
0: और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट विंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें
1: जी
0: महाराष्ट्र में जो बन रहा है, वो एक और पोर्ट है,
1: जी
0: गलाथिया बे का जो पोर्ट है अभी, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा जो अंडमान में बना रहे हैं, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से। तो
1: जी
0: आप
1: जी
0: देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे पूरी देश की पूरी जो लैंडमास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की, सब जगह कहीं ना कहीं
1: बिल्कुल
0: मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है मुझे।
1: जी बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए।
0: धन्यवाद जी, शुक्रिया।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा समुद्र बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 9:50 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। संस्कृति मंत्रालय द्वारा बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लाहौल स्पीति दौरा आज। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की जा रही पूजा अर्चना। कांगड़ा जिला के तीनों शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रदेश भर में मत्स्य विभाग का जल निकाय स्वच्छता और संरक्षण अभियान जारी। कुल्लू जिला में विशेष कार्यक्रम किए जा रहे आयोजित। और प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सेवा सेतु जागरूकता और पंजीकरण शिविर का किया जा रहा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सम्मेलन में शामिल होंगे। तीन दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज लाहौल स्पीति के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे क्षेत्र को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ स्थानीय लोगों से सीधा

0: बात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री रोंगटोंग में 2 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री काजा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कीह स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे और रंगरीक के मंजूश्री बौद्ध मठ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। यहां वे महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्पीति के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा की कांति और आभा सूर्य के समान है। इनकी आराधना के बिना जप और ध्यान संपूर्ण नहीं होते। प्रदेश के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस बीच कांगड़ा जिला के 3 शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: शारदीय नवरात्र के चलते कांगड़ा जिले के मां ज्वालामुखी, मां ब्रजेश्वरी देवी और मां चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की खूब रौनक है। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तीसरे नवरात्र के दौरान मां ज्वालामुखी मंदिर में सबसे अधिक 20,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। वहीं मां ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 5,500 और मां चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में 3,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। इस तरह तीनों शक्तिपीठों में कुल 28,500 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज चौथे नवरात्र पर मां कुष्मांडा की आराधना के साथ शक्तिपीठों में भक्तों की आस्था का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के बीच मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी के समर्पण और सहयोग से संगठन के प्रति प्रतिबद्धता जनसेवा के संकल्प को मजबूत बनाती है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत आर्थिक आधार और आत्मविश्वास से भरा नया भारत, विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल्लू में लोगों को जागरूक करने और उनका पंजीकरण करने के लिए 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय सेवा सेतु जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर आयोजित किया जा रहा है। परिचालन वृत्त कुल्लू के उप मुख्य अभियंता रोहित ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में लोगों का योजना के तहत मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कुल्लू के सभी स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
3: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
2: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
3: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
4: अपनी बेटी के HPV जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में प्रदेश मत्स्य विभाग द्वारा जल निकाय स्वच्छता एवं संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कुल्लू जिला के गड़सा में कुल्लू जिला संवाददाता।
5: इस अभियान का उद्देश्य जल निकायों की स्वच्छता, संरक्षण तथा जल स्त्रोतों में प्रदूषण के रोकथाम के प्रति आम जनता को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, NSS स्वयं सेवकों तथा स्थानीय लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जन सहभागिता को व्यावहारिक रूप देने के उद्देश्य से प्रतिभागियों ने गड़सा धारा के किनारे जमा मलबे, कचरे एवं अन्य अनावश्यक सामग्री की सफाई की तथा लगभग 45 किलोग्राम

0: मलबा कचरा एकत्रित किया। इस गतिविधि के माध्यम से स्थानीय समुदाय को जल स्रोतों एवं उनके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त रखने के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। मत्स्य विभाग ने सभी वर्गों से जल निकायों को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने में अपना योगदान देने की अपील की है, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल एवं स्वस्थ जलीय पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव इस वर्ष 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रिकॉम्पियो में आयोजित किया जाएगा। राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कल इस महोत्सव को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इसके सफल आयोजन को लेकर संबंधित विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। 4 दिवसीय इस महोत्सव के दौरान किन्नौर की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, लोक नृत्य, लोक संगीत तथा स्थानीय कला एवं हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय उत्पादों एवं पारंपरिक व्यंजनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जग सिंह नेगी ने संबंधित अधिकारियों को इसकी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 17 अक्टूबर तक मौसम के खराब रहने की संभावना जताई है। विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, नियमों के विपरीत वन क्षेत्र में बना दी 55 सड़कें, 16 हेलीपैड, हाईकोर्ट ने लगाई शेष कार्य पर रोक। पंजाब केसरी ने प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को शीर्षक दिया है, अगले आदेशों तक वन क्षेत्रों की सड़कों पर कोई निर्माण या टायरिंग नहीं की जाएगी। दिव्य हिमाचल के शब्द है, गत्ता उद्योग 5 दिन बंद, पुराने दाम पर बॉक्स आपूर्ति के दबाव के बीच बड़ा फैसला। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, प्रदेश में कैश वन और मोबाइल कैंटीन पर लगेगा सालाना टैक्स, परिवहन विभाग ने लोगों से मांगे आपत्तियां व सुझाव। दैनिक जागरण ने विमल नेगी मामले पर लिखा है, दिल्ली से शिमला पहुंची सीबीआई पुलिस अफसरों से घंटों पूछताछ। सिरमौर जिला में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया पुलिस लाइन नाहन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। जिला पुलिस ने भर्ती में शामिल होने वाले महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शेड्यूल जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संस्कृति मंत्रालय द्वारा बेहतर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लाहौल स्पीति दौरा, आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की जा रही पूजा अर्चना। कांगड़ा जिला के तीनों शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रदेश भर में मत्स्य विभाग का जल निकाय स्वच्छता व संरक्षण अभियान जारी। कुल्लू जिला में विशेष कार्यक्रम किए जा रहे आयोजित। और प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सेवा सेतु जागरूकता और पंजीकरण शिविर का किया जा रहा आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां। कार्यक्रम गीतों का कारवां लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त मीनाक्षी। और इस कार्यक्रम को सुनने वाली सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी काम या दिन की शुरुआत ईश्वर की स्तुति से होती है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी भावना के साथ आइए आज के संगीत में सफर की शुरुआत करते हैं। माँ कुष्मांडा के चरणों में नमन करते हुए एक प्यारे से भजन के साथ।

फिल्म आशा से ये भजन आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और सुजों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल से का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर। राहत फतेह अली खां, तनिष्क बख्शी और आशीष कौर की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म तुम बिन का ये गीत। माफ कीजिएगा, गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण।

कार्यक्रम गीतों के कारवां के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म अर्जुन पंडित का ये गीत। आवाजें हैं दिलेर मेहंदी और अलका याग्निक की, संगीत दिया है दिलीप सेन और समीर सेन।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे पहाड़ी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं शक्ति चंद द्वारा गाए इस लोकगीत के साथ, लोक भजन के साथ।

0: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
1: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
3: शक्ति चंद व साथियों की आवाजों में लीजिए सुनिए ये लोकगीत।

पहाड़ों की वादियों में गूंजते ऐसे मधुर सुर मन को एक अलग ही सुकून दे जाते हैं। हिमाचल की खूबसूरती सिर्फ इसके ऊंचे पहाड़ों में नहीं बल्कि यहाँ के लोकगीतों और लोक संगीत में भी बसती है। तो आइए इसी सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं अगले पहाड़ी गीत के साथ। ये लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं करनैल राणा की आवाज में।

0: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
1: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
3: उमा कौशल की आवाज में लीजिए सुनिए ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकाल सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज लाहौल स्पीति के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे क्षेत्र को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री रोंगटोंग में 2 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री काजा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री की ही स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे और रंगरीक में मंजुश्री बोध मठ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। यहां वे महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्पीति के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उन्होंने कहा कि सभी के समर्पण और सहयोग से संगठन के प्रति प्रतिबद्धता जनसेवा के संकल्प को मजबूत बनाती है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत आर्थिक आधार और आत्मविश्वास से भारत विकसित दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा

0: स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां कुष्मांडा की कांति और आभा सूर्य के समान है। इनकी आराधना के बिना जप और ध्यान संपूर्ण नहीं होते। प्रदेश के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस बीच कांगड़ा जिला के तीनों शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: शारदीय नवरात्र के चलते कांगड़ा जिले के मां ज्वालामुखी, मां बर्णेश्वरी देवी और मां चमुंडा नंदीकेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की खूब रौनक है। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तीसरे नवरात्र के दौरान मां ज्वालामुखी मंदिर में सबसे अधिक 20,000 श्रद्धालु धाम में 3,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। इस तरह तीनों शक्तिपीठों में कुल 28,500 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज चौथे नवरात्र पर मां कुष्मांडा की आराधना के साथ शक्तिपीठों में भक्तों की आस्था का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के बीच मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: सिरमौर जिला में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया पुलिस लाइन नाहन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। जिला पुलिस ने भर्ती में शामिल होने वाले महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शेड्यूल जारी किया है। महिला अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगी। इसमें कुल 3,314 महिला अभ्यर्थी भाग लेंगी। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 6,332 पुरुष हिस्सा लेंगे। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि 29 अक्टूबर को करवा चौथ के अवसर पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित रहेगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 17 अक्टूबर तक मौसम के खराब रहने की संभावना जताई है। विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव इस वर्ष 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रिकॉम्पियो में आयोजित किया जाएगा। राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कल इस महोत्सव को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इसके सफल आयोजन को लेकर संबंधित विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कवालियां। कार्यक्रम की ये कवाली आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में फिल्म अमर अकबर एंथनी से।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: फिल्म धड़कन से अब ये कव्वाली आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खां और साथियों की

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

कार्यक्रम की ये कवाली आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फिजा से, आवाजें हैं कादर गुलाम मुस्तफ़ा और मुर्तजा गुलाम मुस्तफ़ा की।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: कार्यक्रम की आखिरी कवाली आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, आवाजें हैं

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कवालियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूं और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है

चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओ, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहे लिख ले या स्केच बना ले। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओ, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि यह काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं। जबकि सच्चाई ये है श्रोताओ, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं साथियों। वो था ग्रेफाइट, यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था, हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसमें ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे। यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB। तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक। इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई। समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के

टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई, अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओं, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर

सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान

बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस ना सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं।

0: और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम।
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में अभी आपने मुकेश और साथियों का गाया ये गाना सुना। अब लीजिए सुनिए रविंद्र जैन को इस संगीत निर्देशन में, यशुदास और हेमलता का गाया ये गाना है चितचूर फिल्म से।

रजिया सुल्तान फिल्म का गाना सैनिक साथियों अब आपको सुनवा रहे हैं। हयाम का संगीत, जानिसार अख्तर के बोल, लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज़ इस गाने में है।

0: विकास संवाद,
1: एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बातें होंगी विकास की।
2: विकास के इस सफर में हमारे हम सफर होंगे विभिन्न विभागों से आए प्रतिनिधि।
1: कार्यक्रम के इस अंक में आपके रूबरू होंगे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा।
2: कार्यक्रम का प्रसारण होगा मंगलवार दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:05 पर।
1: तो सुनना न भूलिएगा
0: विकास संवाद।
3: बाइक में नॉकिंग कम है,
4: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
5: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
6: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
2: जब सुनाना हो दिल का हाल
1: तो इसमें भाई क्या है सवाल,
2: क्योंकि हेलो धर्मशाला आ रहा है एक नए अंदाज में।
1: उठाइए फोन, मिलाइए हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर
2: 01892224391।
1: कीजिए हमसे बात और सुनिए अपने पसंद का गीत।
2: रिकॉर्डिंग हर शनिवार को दिन में 1:30 से 2 बजे तक होगी।
1: कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा प्रत्येक मंगलवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि हेलो धर्मशाला पहुँचे दिल से दिल तक
2: आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 103.4 MHz पर।
5: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
7: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
5: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
8: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
1: दोपहर के 12:16 हुए हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक साथियों, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सावन को आने दो, इस फिल्म से। राजकमल का संगीत, यशोदास की आवाज़।

श्रोता, एक विशेष सूचना सुनिए। उपनिदेशक स्कूल शिक्षा बोर्ड कांगड़ा स्थित धर्मशाला से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा चयनित 101 JBT अभ्यर्थियों की सूची जिला कांगड़ा में स्थित रिक्त पदों को भरने हेतु इस कार्यालय में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस सभी के प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को यानी कल सुबह 10 बजे किया जाएगा। इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थी इस स्कूल में प्रातः 10 बजे अपने मूल प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति के साथ उपस्थित हों। प्रमाण पत्रों की सूची में शामिल है मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, 10:2 मूल प्रमाण पत्र, टेट पास प्रमाण पत्र, JBT प्रमाण पत्र या समकक्ष, हिमाचल प्रदेश का मूल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया हुआ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र, नवीनतम सत्यापित फोटो की एक प्रति भी उन्हें लानी होगी। सूचना समाप्त हुई। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: हर दिन नई जानकारियों और मनोरंजन को लेकर आता है।
1: आपका अपना कार्यक्रम सुबह सुहानी,
0: बातें करेंगे हम आपसे, मनोरंजन की सौगात भी साथ होगी।
1: जब हम मिलेंगे आपसे सुबह 7:10 से 8 बजे तक,
0: ये वो समय होता है जब जुड़ते हैं देश विदेश की जानकारियों के साथ।
1: रोजाना ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचाते हैं,
0: तभी तो आपकी सुबह होती है और भी सुहानी।
1: तो सुनना ना भूलें मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी।
2: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
1: सौगात नई, कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
2: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
1: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
2: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
1: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
2: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुंचे दिल से दिल तक।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी।

भक्ति से, भक्ति के दीप से हर मन का अंधियारा मिट जाए, माँ दुर्गा की कृपा से हर घर खुशियों से भर जाए। जयकारा माँ के नाम का जब दिल से लगाया जाए, हर मुश्किल राह में भी आशा का दीप जल जाए। तो कार्यक्रम सुनो सखी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो दोस्त मीनाक्षी की नमस्ते और आप सभी को शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 14 अक्टूबर 2026 बुधवार और आज हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी, इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, सकारात्मक सोच और विश्वास से हर अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। माँ कुष्मांडा की आराधना से भक्त सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करते हैं। इस पावन दिन पर आइए हम अपने मन को नकारात्मकता, क्रोध और अहंकार को दूर करने का संकल्प लें और प्रेम, करुणा तथा सद्भाव को अपने जीवन में स्थान दें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्रोच्चारण के बाद अब बात करते हैं आज के इस खास दिन की। जी हां सखियों, आज है 14 अक्टूबर और आज पूरी दुनिया में विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। तो सखियों, जानकारी के लिए बता दें, हर वस्तु की गुणवत्ता का जब हो सही प्रमाण, तभी सुरक्षित बने हमारा जीवन और सामान। मानकों से बढ़ता विश्वास, गुणवत्ता की पहचान, विश्व मानक दिवस का संदेश, सुरक्षा और सम्मान। जी हां सखियों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मानकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे घर में इस्तेमाल होने वाले बिजली के उपकरण हो, बच्चों के खिलौने हो, खाद्य पदार्थ हो या चिकित्सा से जुड़े उपकरण, हर क्षेत्र में निर्धारित मानक हमें बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। विश्व मानक दिवस मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ये समझाना है कि साझा मानक देश

देशों, उद्योगों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास कायम करने में सहायक होते हैं। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग यानी IEC और अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU के सहयोग से मनाया जाता है। तो आइए आज हम संकल्प लें कि वस्तुएं खरीदते समय उनकी गुणवत्ता और प्रमाणन पर ध्यान देंगे तथा जागरूक उपभोक्ता बनकर सुरक्षित और बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देंगे। तो आज के इस खास दिन में कुछ और भी है बेहद खास, जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी सखियों का मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

0: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
1: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
10: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
11: गीत और विज्ञापनों के बाद फिर से स्वागत है हमारे सुनो सखी के आज के इस खास अंक यानी कि ग्लैमर कलियारा में। चेहरों की चमक, अदाओं का जादू, कभी फैशन का रंग, कभी सितारों का जादू, किससे हैं मशहूर, अंदाज है निराले, आइए चलें वहां जहां चमकते हैं सितारे। जी हां, हम बात कर रहे हैं खूबसूरती की, व्यक्तित्व की, फैशन की, बदलते ट्रेंड्स की और उन सितारों की जिनका अंदाज लाखों लोगों को प्रेरित करता है। ग्लैमर का नाम सुनते ही हमारे मन में चमकते चेहरे, खूबसूरत परिधान, शानदार समारोह और सितारों से सजी महफिलों की तस्वीर उभरने लगती है। लेकिन क्या ग्लैमर केवल महंगे कपड़े, कीमती गहनों और मेकअप का नाम है? बिल्कुल नहीं। असली ग्लैमर तो है हमारे आत्मविश्वास में, हमारी मुस्कान में, हमारे बोलने के अंदाज में और उस खूबसूरत व्यक्तित्व में जो हमें भीड़ से अलग पहचान देता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं पहचानी जाती, व्यक्तित्व की चमक भी दिलों में उतर जाती है। लिबास तो मौसम के साथ बदलते रहते हैं, मगर अच्छे संस्कारों की चमक कभी नहीं जाती। और फैशन एक ऐसा रंग है जो समय के साथ बदलता रहता है। कभी पारंपरिक परिधानों का जादू छा जाता है तो कभी आधुनिक अंदाज सबका ध्यान खींच लेता है। कभी सादगी लोगों का दिल जीतती है तो कभी नए प्रयोग फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज फैशन की दुनिया में भारतीय परंपराओं का आकर्षण भी लगातार दिखाई देता है। साड़ी की शालीनता हो या हिमाचली परिधान की सांस्कृतिक सुंदरता हो या फिर आधुनिक परिधानों का नया अंदाज, हर शैली की अपनी एक कहानी है। हमें फैशन को अपनाना ज़रूर है, लेकिन सखियों, अपनी पहचान कभी नहीं भूलनी है। ग्लैमर की दुनिया में सितारों की चमक भी कुछ कम नहीं। कलाकारों का पहनावा, उनका व्यक्तित्व, उनका मंच पर आने का अंदाज और उनकी मेहनत लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन कैमरे के सामने दिखाई देने वाली चमक के पीछे अभ्यास, अनुशासन, लगातार मेहनत और चुनौतियों की एक लंबी कहानी भी होती है। यही हमें सिखाता है कि सफलता केवल दिखाई देने वाली चमक से नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे किए गए कई प्रयासों से मिलती है। इसलिए अगर हम खुद को खूबसूरत महसूस करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना होगा। अपनी मुस्कान को हमें अपना आभूषण बनाना होगा, अपने व्यवहार को अपनी पहचान बनाना है और

0: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीज पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
1: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0 डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
0: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीज पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
1: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0 डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
3: गीत और विज्ञापनों के बाद फिर से हाजिर हूँ मैं मीनाक्षी, कार्यक्रम सुनो सखी की आज के इस खास अंक यानी ग्लैमर गलियारा में, जहां आज हमने बात की विश्व मानक दिवस और ग्लैमर पर। और अब हमारा समय हो गया रसोई घर में रुक करने का, जहां आज मैं बनाने जा रही हूं सोया चाप। तो सबसे पहले तो मैंने 4 सोया स्टिक ली हैं और उन्हें अच्छे से पानी में उबाल लिया है, और अब इन्हें स्टिक को अलग कर लेंगे और गोल गोल टुकड़ों में काट कर तेल में फ्राई कर लेंगे। अब बचे हुए तेल में हम 2 प्याज 2 टमाटर 2 हरी मिर्च 4 से 5 लहसुन की कलियां डालकर शैलो फ्राई कर लेंगे और इन्हें ठंडा होने पर मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब उसी कढ़ाही में थोड़े से तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग और कुछ खड़े मसाले जैसे कि 2 से 3 तेज़पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग और फिर डालेंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला यानी प्याज टमाटर लहसुन और हरी मिर्च वाली प्यूरी। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, साथ ही डालेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला 1 चम्मच, 2 चम्मच दही के भी अच्छे से डाल देंगे और अच्छे से फिर पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी के करीब पानी। अब अच्छे से सबको पकने देंगे और अच्छे से पकने के बाद हमारी ये मसाला सोया चाप बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आप भी ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए और परिवार में भी सबको खिलाइए। और खान पान के बाद अब बात करते हैं मनोरंजन की, तो आइए साथ में सुनते हैं ये कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इसी गीत के साथ सखियों मुझे भी जाना पड़ेगा और दीजिए इजाज़त अपने दोस्त को, तो फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
2: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
1: श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा मोचन, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। भारत से नारियल रेशा और इससे बने उत्पादों के निर्यात में 305% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनका निर्यात वर्ष 2014-15 के 1630 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 6614 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे CJP नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। कनाडा और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता तेज कर दी है। वार्ता का लक्ष्य 2026 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना है। 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में 5वें दौर की वार्ता के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने इस सप्ताह नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अनुसार दोनों पक्षों ने वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रस्तावित समझौते को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। 12 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस व्यापार मिशन में लगभग 300 प्रतिनिधि मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल

में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा में आज मौसम में गर्मी तथा उमस रह सकती है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिला जुला रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 73,070 पर और निफ्टी 6 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: that from sanitation and gas connections to healthcare and access to credit, the government's focus is on last mile delivery and creating opportunities for people to improve their lives. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Jammu and Kashmir, Ladakh, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied with hailstorm over Haryana, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh, Punjab and West Rajasthan till Friday. In men's cricket, India will face West Indies in the fourth T20 International in Hyderabad today. The match will begin at 7 p.m. Indian time. And benchmark domestic equity indices were trading on a flat note in the afternoon session today. Sensex added 36 points to 73,070, while Nifty dipped 6 points to 22,716 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: FM एंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: भावनाओं और रिश्तों का सुंदर हिस्सा भी है। फिल्मी गीतों में भी नामों ने कभी प्रेम की दस्तक दी, कभी शरारत जगाई तो कभी दिल की धड़कनों को आवाज दी। और आपने कुछ गानों के बोल लिखे हैं जो हमारी लिस्ट में आज शामिल भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि आपने तो आज पूरी खिचड़ी बना दी है और हमें तो कोई नाम याद नहीं आ रहा है। फिल्में ज़रूर देखी हैं लेकिन उम्र का असर है शायद। चलो छोड़ो, आज गाने सुनाना आपको और सभी को नमस्कार देती हैं। भाई हमने खिचड़ी नहीं पकाई, हमने पुलाव बनाया है जिसमें चावल बिल्कुल अलग अलग अलग अलग है। ध्यान से देखिए तो सही हमारी डिश क्या है। और मैं एक श्रोता लिख दें कि मेरे पापा रेडियो बहुत ही चाव से सुनते थे, खासकर पापा जी लता जी की गज़लें बहुत सुनते थे। उन्हें संगीतकार मदन मोहन जी बहुत पसंद थे। मैं छोटा था तो मैंने पूछा पापा जी मेरा नाम ये क्यों रखा, तो उन्होंने कहा संगीतकार मदन मोहन जी का संगीत उन्हें बहुत पसंद है इसलिए तुम्हारा नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा है। आज मेरे पिताजी को गुजरे 46 बरस हो गए हैं लेकिन उनकी चॉइस पर मुझे गर्व है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नवरस नवकल्पना नवरूप सज्जित नवीन नामकरण युक्त गीतों भरी इबारत स्वागत योग्य है। और आप लिखते हैं कि कुछ नाम गीत और व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इन्हीं भांति भांति के नामों से पिरोई हुई संगीतमय सुरीला सफर का आज आपको इंतजार है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज नाम पर आधारित कार्यक्रम होगा, इसमें भी व्यक्ति दो दो विचार चलते हैं। कोई कहता है कि नाम में क्या रखा है, गुलाब का कुछ नाम रखने पर भी वो खुशबू तो देगा ही, तो कोई कहता है नाम ही आदमी की पहचान है, जैसे कि सुहाना सफर। अब कार्यक्रम में मित्रों के विविध विचार और आपके विचार भी लिए जाएंगे, देखें क्या निर्णय लिया जाता है। तो आज के सवाल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और उनका जवाब दें तो मजा आएगा। हाँ, हमने आज आपसे जानना चाहा है कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का बहुत फिल्मों में नाम विजय था तो ये नाम बड़ा अच्छा लगता था हमें, या चांदनी ये नाम भी बहुत फेमस हुआ। तो आप के फिल्म जो फिल्मी किरदार हैं उनमें आपको कौन सा नाम सबसे ज़्यादा पसंद है। कई बार आपका नाम उनके नामों से मिलता जुलता भी हो सकता है इसलिए भी हमें वो नाम पसंद आता है ना। तो बताइएगा कि आपको कौन सा फिल्मी किरदार का नाम बहुत पसंद है आज तक। और हमारा दूसरा सवाल है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा या मोगेम्बो खुशवा, इस तरह के जो किरदार मशहूर हुए हैं फिल्मी दुनिया में, फिल्मों में, और हम उनका यदाकदा प्रयोग भी कर देते हैं। आपको ऐसे तकिया कलाम वाले कौन से किरदार आज तक याद हैं और आप अक्सर उन्हें गुनगुनाते हैं या पसंद भी करते हैं जैसे ही वो फिल्म हम देखते हैं और कलाकार हमारे सामने कहता है कि मोगेम्बो खुशवा, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो ऐसा ही कोई किरदार आपके मन पे अंकित हुआ होगा, उसका भी जिक्र आप करें, किसी एक किरदार का, बहुत सारे किरदार नहीं, फिर हम उसे शामिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है। किसी एक किरदार जो आपकी पसंद से जुड़ा है उसका जिक्र आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनते हैं, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है भाई भाई। बहुत ही प्यारा गीत है, ध्यान से सुनिएगा।

गया आपका बाल बच्चा, खा के देखो वेरी वेरी गुड मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल।

मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा।

0: 1956 में आई प्रसिद्ध फिल्म भाई भाई का सदाबहार गीत मेरा नाम अब्दुल रहमान वास्तव में भारतीय सिनेमा का एक अनमोल रत्न है। इस गीत को लॉन्च किया गया था महान संगीतकार मदन मोहन के संगीत निर्देशन में और इसके जादुई बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। मेरा नाम अब्दुल रहमान सिर्फ एक मनोरंजक फिल्मी गाना नहीं बल्कि ये मदन मोहन का बेजोड़ संगीत और किशोर कुमार और लता मंगेशकर की अमर गायकी का एक ऐसा उत्सव है जो हर पीढ़ी को पसंद आता है। बिल्कुल आपने सही लिखा, वाकई ये गीत जोड़ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि नाम की भी अपनी एक अद्भुत दुनिया होती है जहां शब्दों से अधिक भावनाएं बोलती हैं और अक्षरों से अधिक यादें सांस लेती हैं। कितना अनोखा है किसी का नाम हमारी जबान पर आते ही उसका चेहरा आंखों के सामने उभर आता है। नाम अक्षरों में भले ही सीमित हो लेकिन उसके एहसास की कोई सीमा नहीं होती। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नाम केवल अक्षर का समूह नहीं बल्कि मनुष्य के अस्तित्व पहचान और सामाजिक अस्मिता का आधार है। जहां नाम संज्ञा होती है वहां एक निराकार चेतना से साकार पिंड तुम्हें बदल जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने राम लिखा तो वो केवल एक शब्द नहीं मर्यादा और मानवीय आदर्शों की साक्षात प्रतिमूर्ति बन गया। और जब नाम के अहंकार का विसर्जन सर्वनाम यानी मैं से उठकर हम या तुम पर आता है तो वो समष्टि से जुड़ जाता है। नाम तब तक मात्र कोरी स्लेट रहता है जब तक कि विशेषण उसे अपने रंगों से नहीं भरता, क्योंकि नाम की पहचान उसके गुण दोषों से जुड़ी होती है। वैसे ही राजा हरिश्चंद्र का नाम के साथ सत्यवादी जगते ही ये एक शाश्वत मूल्य यानी सिद्धांत बन जाता है। नाम का चरम लक्ष्य अवयव हो जाना है। जब कोई नाम इतिहास काल मृत्यु और युगों के थप्पड़ों के बाद भी नहीं बदलता तो वो अवयव बन जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी या सुभाष चंद्र बोस। समय बीतने पर भी इनकी चमक और प्रासंगिकता अपरिवर्तित बनी हुई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात लिखी और आपने हमारा मन जीत लिया। वाकई चलिए तो हमारे सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आपने नोट कर लिए हैं ना? वैसे तो कुछ श्रोताओं ने जवाब देना शुरू भी कर दिया है लेकिन चलिए एक बार सवाल फिर से दोहरा देते हैं कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का कितनी फिल्मों में नाम विजय था और चांदिनी ओ मैं तेरी चांदिनी ये नाम भी हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे बहुत सारे फिल्मी किरदारों के नाम दर्शकों के दिलों में बस गए, वो कौन सा नाम है जो आपको आज भी पसंद है? तो हमारा दूसरा सवाल था प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा और मोगेम्बो खुश हुआ। इस तरह के किरदार हम अक्सर अपने घर में गुनगुनाते हैं जब फिल्म देखकर आते थे। बहुत पहले तो यही होता था कि ये नाम ये किरदार हमारे होठों पे हर वक्त रहा करते थे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कौन से है वो मशहूर किरदार जो आज भी आपके दिल से नहीं निकले हैं? उनका जिक्र आपको किसी एक किरदार का जिक्र करना है। आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन की धुन। ये भी एक नायाब गीत है जिसे गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
1: शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो।

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

रोज रात पर शनी बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्मा नहीं घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या

हमारे श्रोता ने लिखा है कि नाम केवल कुछ अक्षरों का संयोजन नहीं होता, बल्कि ये हमारी पहचान है जो जीवन भर हमारे साथ चलती है। और जन्म के साथ ही हमें नया नाम मिलता है, लेकिन उस नाम का अर्थ हमारे कर्म, हमारा व्यवहार और हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व वो हमें प्रदान भी करता है। वहीं एक श्रोता का कहना है कि नाम केवल संबोधन नहीं, हमारी पहचान का वो अक्षर है जिसमें स्मृतियों की सुगंध और व्यक्तित्व की आभा समाहित होती है। आज नामों की इस दिलचस्प महफिल में शब्दों ने मुस्कुराना सीखा है और सुरों ने संवाद करना। सचमुच जब साहित्य की शालीनता में हास्य का रस घुल जाए और संगीत की स्वर लहरियां साथ चले तो साधारण सी बातचीत भी एक अविस्मरणीय महफिल बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम ये जो कार्यक्रम लेकर आते हैं एक मनोरंजक कार्यक्रम है ये आप सभी के लिए, और इसमें हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम ऐसी महफिल सजाएं कि आपको याद रहे वो महफिल, है ना, और यही एक प्रयास हर उद्घोषक का होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार आम जिंदगी में सिनेमा, टीवी या साहित्य की दुनिया में किसी कलाकार का निभाए हुआ किरदार या मिला हुआ उपनाम इतना मशहूर हो जाता है कि लोग उनका असली नाम भूल जाते हैं। समीर खाकर को लोग उनके असल नाम से कम और टीवी सीरियल नुक्कड़ के किरदार खोपड़ी के नाम से ज़्यादा जानते थे। इसी तरह कलाकारों को इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपने असली नाम बदलने पड़ते थे या नए नाम मिलते ही वो जैसे ही मैन, बिग बी, गब्बर सिंह, बसंती, ये नाम आपको पसंद आते हैं। बिल्कुल यही सवाल हमने किया था कि कौन से नाम आपको पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज नाम की इतनी बोलबाला है, पर भारत का एक गांव ऐसा भी है वहां किसी का नाम नहीं है। मेरा इशारा भारत के उस अनोखे गांव की तरफ है जहां लोगों को पारंपरिक नामों के बजाय सीटी बजाकर पुकारा जाता है। इस गांव का नाम है कोंगथोंग, जो मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय की खासी हिल्स में बसे कोंगथोंग गाँव को विस्लिंग विलेज या एशिया का म्यूजिकल विलेज भी कहा जाता है, जहाँ अब भी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसके लिए खास और अनोखी सीटी की धुन यानी ट्यून करती है। वही धुन जीवन भर के लिए उस व्यक्ति की पहचान या नाम बन जाती है। गांव के लोग एक दूसरे को बुलाने, आवाज देने के लिए इतनी सीटी की धुन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर व्यक्ति की धुन बिल्कुल अलग होती है। अरे, आपने एक नई जानकारी हमें दी और हमें लगता है कि ये गांव क्या है इसके बारे में हम भी जानना चाहेंगे, शुक्रिया। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नाम पहचान एक जरिया है। इस संसार में जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले जो उपहार मिलता है वो है उसका नाम। नाम केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि वो किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व, उसके गौरव, उसकी सामाजिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने।

जब नामों की बात चली तो अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा गीत है, शायद बहुत कम सुना है हमने, लेकिन जो हमारे असली श्रोता हैं जो एक एक गीतों की पहचान रखते हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ ये गीत तो हमने कई बार सुना है। शंकर जयकिशन के बोल हैं, हसरत जयपुरी की रचना, आवाज़ लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम अप्रैल फूल।

हमारे श्रोताओं ने सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक लिखते हैं कि सलमान खान का नाम जो प्रेम है वो उन्हें बेहद पसंद आता है, वहीं किसी को राजू नाम बहुत प्यारा लगता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो VBS के सभी उद्घोषकों के नाम बहुत ही पसंद है। अच्छा वहीं एक श्रोता को राधा, नरगिस, राधा, वैजंती माला ये नाम बहुत पसंद आते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि नाम को लेकर दो मुहावरे ज्यादा प्रचलित हैं, आंख का अंधा नाम नयनसुख, नाम लिया और शैतान हाजिर, ये आपने मुहावरे लिखे हैं। वहीं एक श्रोता को शाकाल नाम जो है बहुत पसंद आता है, कुलभूषण खरबंता शायद शाकाल की भूमिका में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और एक श्रोता लिखते हैं कि विजय दीनानाथ चौहान ये नाम बहुत पसंद है, जो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं विजय दीनानाथ चौहान नाम है हमारा और वैसे उन्हें फिल्मों में विजय के नाम से भी बहुत जाना गया है, आप लिखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं, नाम है शहंशाह, ये बहुत अच्छा लगता है। और एक लिखते हैं कि किसी एक फिल्म में उत्पल दत्त को धुरंधर भटावटे कर पसंद आई थी, जोरू का गुलाम में गोविंदा ने फिल्म में अपने मामा को पीके गिरपड़े नाम भी दिया था, वो मज़ेदार था। एक श्रोता लिखती है कि स्कूल कॉलेज में तरह तरह के नामकरण होते रहते हैं, कुछ नाम को हम बिगाड़ कर ही अपने दोस्तों को बोलते थे। 8वीं में क्लास में एक लड़की थी सतवंत कौर, जिसे हम प्यार से सेऊ से सत्तू बोलते थे। उसे समय बिहार में सत्तू अच्छे भजन में नहीं गिना जाता था, पता नहीं कैसे क्लास टीचर को पता लगा और हम जितनी लड़कियाँ उसे सत्तू बोलते थे सभी सजा मिली। सत्तू खूबसूरत लड़की और पढ़ने में बहुत तेज थी, बाद में वो MBBS डॉक्टर बनी और अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सफल रही, अब तो रिटायर होकर अपना जीवन गुजार रही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख खान जी का जो नाम था राहुल वो बहुत ज़्यादा होता है फिल्मों में, ये नाम उन्हें बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि चंद्रमुखी जो फिल्म चंद्रमुखी से है, नैन के चैन चुरा के ले गई चंद्रमुखी, ये नाम इन्हें बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बॉन्ड, माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का किरदार 6 कलाकारों ने निभाया पर नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर किसी कलाकार से पूछा जाए तो वो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाना चाहता भी है। एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा हीरो नाम है मोगेम्बो और हीरोइन में मोना डार्लिंग वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत नाम पसंद है क्योंकि भारत यानी अपने देश की याद करवाते हैं मनोज कुमार जी, और फिल्मों में वो इसे यूज़ करते हैं, उनका नाम भारत रखा जाता है, वो इन्हें बेहद अच्छा लगता है। और वही कि प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, जब वो बोलते हैं तो वो बहुत पसंद आता है। जी तो सवाल फिर से दोहरा देते हैं, जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ट्यून किया है, हो सकता है किसी काम से श्रोता समय पर इस सफ़र में नहीं आ पाते हैं, तो हमारे सवाल ये हैं कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अभी हमने बहुत से श्रोताओं के जवाब पढ़े और उन्हें अच्छा लगा जो नाम उन्होंने बताया, तो आपको भी बताना है कि जैसे विजय नाम बहुत था फिल्मों में, चांदनी, ऐसे जो नाम हैं जो हमें बहुत पसंद आए उनको आपको बताना है। और वहीं जैसे हमारा दूसरा सवाल था कि प्रेम नाम है प्रेम चोपड़ा और मोगेम्बो खुश हुआ, इस तरह के जो किरदार मशहूर हो गए और आज भी हमारे दिल में घुसे हुए हैं उनका जिक्र आपको करना है, किसी एक किरदार का और किसी एक नाम को पसंद करना है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है स्वर्ग नरक, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

हमारे श्रोता अपनी पसंद के नाम हमें बराबर लिख रहे हैं। एक लिखती हैं कि बाजीराव सिंघम, लिखा है इन्होंने आता माजी सटक ले, ये बहुत अच्छा लगता है डायलॉग अजय देवगन का फिल्म सिंघम से। और वहीं एक श्रोता को गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए हैं, ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे मनोज कुमार जी का नाम हमेशा बहुत ही पसंद रहा है, आज भी है भारत गीत तो पूर्व पश्चिम का गीत, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अमरीश पुरी साहब तो मोगम्बो के नाम से घर घर में मशहूर हो गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते गए, बहुत ही अच्छे विलन के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। बिल्कुल, उनका चेहरा देखकर ही डर लगता था जब वो कहते थे मोगम्बो खुश हुआ, है ना, कितना अजीब सी घबराहट होती थी। वहीं एक श्रोता को शत्रुघ्न सिन्हा का नाम, जो कहते कि नाम चीनू कहते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का अगर ये डायलॉग आपको पसंद है तो एक डायलॉग और अच्छा लगता होगा, खामोश, जो अक्सर उनके साथ जुड़ता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे राज, अनिल, जय ये नाम बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और करण अर्जुन फिल्म में अमरीश पुरी का नाम ठाकुर है जो इन्हें पसंद आता है एक श्रोता को। एक श्रोता ने कहा है कि अमजद खान का शोले में गब्बर सिंह का नाम भूले से भुलाया नहीं जाता, बिल्कुल सही कहा, वो तो नाम इतिहास में लिख दिया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजराती फिल्मों के कलाकार फिरोज ईरानी, जो कि विलेन का रोल करते थे कई फिल्मों में, उनका प्रेम चोपड़ा के जैसा ही डायलॉग होता था, गुलाब, गुलाबनी बात, गुलाब जेबी, अच्छा। और वहीं एक श्रोता को विजय और रवि नाम ही पसंद है। एक श्रोता लिखती है कि रेखा और हमारा ही नाम हमें ज्यादा पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी फिल्मी चरित्र को मेरे वाला नाम प्राप्त हुआ होगा। हाँ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि हमारा नाम किसी फिल्मी चरित्र से मिले। हमने तो ये पूछा, ऐसा हो सकता है कई बार हमारा नाम कहीं आया हो और हमें याद हो। वहीं एक श्रोता को मनोज कुमार का भारत कुमार, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, मोगेम्बो खुश हुआ, ये बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता को देवानंद साहब का जो है हीरा नाम, हीरा पन्ना फिल्म में हीरा नाम था, वो बेहद पसंद है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और ये गीत भी बहुत कम सुना गया है। बताइएगा ये गीत आपने सुना था बहुत पहले कभी?

अच्छा बताइए ना, ये गाना आप में से कितने लोगों ने सुना था, मेरा नाम है जमीला, बताइएगा। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नाम रूप और गुण से ही तो भरी हुई है दुनिया और उसमें अपने अपने व्यवहार की फलश्रुति है। वैसे उस एक के अनेक संज्ञा स्वरूप ही नहीं अपितु गुण रूप ज्ञापक सहस्त्र नाम तो केवल निर्दर्शन परक ही है, अन्यथा वो विष्णु सहस्त्र नाम का एक तो अनाम होते हुए रूप गुण धाम से परे भी स्वयं के सच्चिदानंद स्वरूप में भी प्राप्य है और वही प्रिय भी है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ओ जूली ओ शीला और रानी जमालो, ये गाना जो है ये बेहद पसंद आता है क्योंकि इसमें

सारे नाम आते हैं। और एक श्रोता ने कहा कि पहले एक बार नाम पर ही एक प्रोग्राम हुआ था, याद नहीं। अच्छा, उसमें एक सवाल आया था कि क्या आपका नाम कोई गीत में आता है। अच्छा, ऐसा कोई कार्यक्रम था। वही एक श्रोता का कहना है कि बच्चन साहब पर अमिताभ बच्चन बहुत ही कम लोग कहते हैं, या तो बिग बी या अब एक नया नाम आ गया है करोड़पति अंकल। एक श्रोता लिखते हैं कि अमर अकबर एंथनी फिल्म में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन अमर अकबर एंथनी बनते हैं, ये नाम इन्हें पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं कि व्हाट इज़ द नेम, बट सब कुछ नाम में ही है और सब भागते भी नाम के लिए, पहचान भी नाम से ही है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें गैम्बलर पिक्चर का गाना जो देवानंद साहब और जाहिदा गाते हैं, मेरा मन तेरा प्यासा पूरी कब होगी आशा, अच्छा लगता है। और बातों बातों में हम कहते हैं कि हमारा नाम सूरमा भोपाली, ये सूरमा भोपाली नाम इन्हें बेहद पसंद आया, जो कि फिल्म शोले में जगदीप साहब बोलते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप मुझे लिखते हैं कि आप एक नाम तो भूल ही गई हैं, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली। बिल्कुल नहीं भूले जनाब, पिछले कार्यक्रम में इस गाने को हमने शामिल कर लिया था, इसलिए इस बार इस गाने को हमने नहीं लिया। वहीं एक श्रोता को मेरा नाम है लखन, राम लखन बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता कहते हैं कि आज तो नामों की भरमार रहेगी, नाम करने के लिए सब कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं। रही बात फिल्मी नामों की, तो वो तो सर चढ़कर बोलते हैं, जैसे मेरा नाम राजू, घराना अनाम, जूली आई लव यू, लीना ओली ना मिली, ये सभी गाने पसंद हैं या नाम पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मैं खो सी जाती हूँ, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि हर दुख दर्द आदमी भूल जाता है। ऐसा ही इंसान की भी फितरत होनी चाहिए, उसके बोली में इतनी सच्चाई और अपनापन होना चाहिए कि राह चलता आदमी भी अपना बन जाए। क्या बात है। कार्यक्रम का अगला गीत रविंद्र रावल का लिखा हुआ, राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया हुआ है, आवाजें उषा मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है तराना।

0: हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नाम अब्दुल है मेरा शान, फिल्म का ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, जो अब अगला गीत है। बिल्कुल हाँ, रफ़ी साहब की खनकती आवाज़ में आप सुनना चाहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन में सुनील दत्त का नाम भोला और किशोर कुमार का गुरु इतना लोकप्रिय हुआ कि वे दोनों कलाकार जीवन पर्यंत एक दूसरे को गुरु और भोला कहकर बुलाते रहे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो अभी पूछा जमीला वाला गाना, हमने ये पहली बार सुना है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि मेरा नाम है जमीला, ये गाना उन्होंने पहली बार सुना है। चलिए, अच्छा लगा ना आपको ये गाना। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सच कह रहा हूं, मेरा नाम किसी एक्टर का फिल्म में वही होता है जो मैं खुश होता हूं, या किसी गीत में या कृष्ण जी के किसी भजन में मेरा नाम आता है तो खुशी होती है, क्योंकि कृष्ण जी का पर्यायवाची ही मेरा नाम है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे अमृता सिंह का रूबी नाम पसंद है, क्योंकि मेरा घर पर पुकारने वाला नाम यही है, सब मुझे कहते हैं सुन रूबिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा लगता है जब हमें इस तरह से नामों से चिढ़ाया जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या अभी तक किसी ने मुगले आजम और सलीम और अनारकली को याद नहीं किया। और वहीं एक श्रोता को कटी पतंग का बिंदु का गीत बहुत पसंद है, जो अभी हमने आपको सुनवाया। और एक नाम मैं आपको याद दिलवाना चाहती हूँ, बसंती, बसंती नाम है मेरा, ये भी किसी ने याद नहीं किया। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी सोपान पर हम पहुँच चुके हैं, जहाँ शान फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनवा रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: अली!

0: क्या? हाँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर
1: जी। सबकी खबर आप रखें ना रखें, लेकिन अपनी खबर, अपने लोगों की खबर आपको जरूर रखनी है, अपने नाम को बचाए रखना है। और इसी उम्मीद के साथ आज का सुरीला सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी ना अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज 14 अक्टूबर का दिन है। 14 अक्टूबर 1946 को दुनिया के 25 देशों के प्रतिनिधि लंदन में मिले थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की नींव रखी थी, और इसी की याद में हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन का आखिर क्या महत्व है। आपको बता दें कि भारत में जो स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी है वो निभाता है भारतीय मानक ब्यूरो, और ये कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ पर ISI का निशान हो या सोने पर हॉलमार्क का निशान हो तो वो आधिकारिक रूप से अच्छा माना जाता है और उत्कृष्टता का पैमाना माना जाता है। मानक संगठन बस यही काम करते हैं, यानी बाजार में मिलने वाली चीज़ें सही स्टैंडर्ड की हों, अच्छी क्वालिटी की हों, देर तक टिकें और किसी का नुकसान न करें, इस बात का ध्यान रखता है मानक संगठन। आज का दिन इसी संगठन को सलाम करने का दिन है।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल।

सब संसार। ISO ये एक संक्षिप्त रूप ही नहीं है बल्कि ये यूनानी शब्द ISOS से यानी आइसोस से आया है जिसका मतलब होता है बराबर। दरअसल हम जब जिंदगी में कुछ खरीदते हैं जैसे कि बिजली का सामान खरीदते हैं या बाइक पर जाने के लिए हेलमेट खरीदते हैं या खाना पकाने के लिए जो चूल्हा है वो खरीदते हैं तो हम इन चीज़ों पर एक निशान देखते हैं जो है ISI का निशान। ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का निशान है। जब हम

सोना खरीदते हैं तो उसके ऊपर हॉलमार्क की मुहर होती है और तब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें जिस चीज का वादा किया जा रहा है वही बेची जा रही है। ISI के निशान का मतलब है भरोसा। दुकानदार और ग्राहक के बीच, कारखाने और बाजार के बीच, एक देश और दूसरे देश के बीच भरोसा, यानी यहां कोई धोखेबाजी नहीं हो रही है।

जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसके सस्ते होने पर उसे ना खरीदें, बल्कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जिस चीज के पैसे चुका रहे हैं क्या उस पैसे के बदले में हमें वो क्वालिटी मिल रही है। जैसे बिजली का सामान अगर आपने खराब क्वालिटी का खरीद लिया तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, कोई और हादसा हो जाए। इसी तरह से हेलमेट की मिसाल हमने पहले भी ली, अगर हमने कोई हेलमेट ऐसा लिया जिस पर ISI का निशान नहीं है और वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हादसे का शिकार होने पर हेलमेट आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यानी चीजों को वैसा होना चाहिए जैसा उनका होना जरूरी है, उनकी क्वालिटी भरोसेमंद होनी चाहिए। इसी को सुनिश्चित करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI का निशान इसी बात की मिसाल है और गारंटी भी है। आज हम आपको इस बात की याद दिला रहे हैं कि जब आप एक उपभोक्ता के रूप में कोई चीज खरीदते हैं तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज है वारंटी और गारंटी का ध्यान रखें, उसके पूरे पैमानों को बारीकी से पढ़ें, किसी भी तरह से किसी भी चीज को खरीदने में धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना है, तभी ये जो मानक दिवस है ये कामयाब माना जाएगा और आप एक अच्छे उपभोक्ता साबित होंगे।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसकी जीडीपी लगभग $4 trillion है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष

0: गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
1: From $10 trillion of GDP.
2: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 trillion थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 trillion की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 trillion की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 trillion की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
0: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
2: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
3: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
4: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे CJP नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1,500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से

0: 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
2: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में दो सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ।

नमस्कार। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। स्वर लता मंगेशकर और साथियों के थे। फिल्म का नाम था गंगा की लहरें। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जब जब फूल खिले से चुना है। शब्द आनंद बख्शी के, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: रवि के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है खानदान।

संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो

0: कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: उड़ बैठी बजजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या,
0: रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

अभी आपने मन्ना डे और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। गीत को शैलेंद्र ने लिखा था और तर्ज शंकर जयकिशन की थी।

0: अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम। गीत को इंदिवर ने लिखा था और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पाव,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।

0: प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान स्पीति घाटी के काजा पहुंचे, जहां लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाज से उनका स्वागत किया। इस दौरान काजा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आम लोगों के हितों के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जिले के जरूरतमंद परिवारों को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है और ये सहायता निर्बाध रूप से जारी रहेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि काजा के विकास और जन कल्याण के लिए राज्य सरकार भविष्य में और भी नई योजनाएं लाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी हैं और लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आज हरोली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि क्षेत्र में विकास की नई दिशा तय की जा रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र को न्यू हरोली के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां विभिन्न बड़े कार्यालयों के भवन बनाए जाएंगे। कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों को लेकर भाजपा ने सोलन में आज धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए करीब 4 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं प्रतिमाह 1500 रुपये मिलने की आस लगाए बैठी हैं, रोजगार आरोप लगाया कि प्रदेश का हर वर्ग कांग्रेस सरकार से अपने वायदे पूरे होने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी हर जिले में, हर मंडल में इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है कि कांग्रेस ने जिन वादों से सरकार में सत्ता हासिल की थी, उनमें से एक भी गारंटी जो है वो पूरी नहीं हुई। युवाओं के साथ धोखा, महिलाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, और तो और सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा, ये धोखा कब तक जो है वो जनता बर्दाश्त करेगी। इसी के लिए आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल जो है वो यहाँ पर धरना कर रहा है और आगे ये और उग्र होगा।
0: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि विद्यार्थियों में स्कूल स्तर से ही नेतृत्व क्षमता विकसित की जानी चाहिए, ताकि वे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें। वे आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पनोह में विद्यार्थियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। धर्माणी ने बच्चों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने और उसे हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की सलाह दी। धर्माणी ने शिक्षकों को स्कूल में कम्युनिकेशन क्लब स्थापित करने के भी निर्देश दिए। धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में बांस से निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में पंचरुखी के समीप लदोह गांव निवासी पूर्व सैनिक व शिल्पकार विनय अवस्थी की कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बांस से तैयार इन कलाकृतियों में प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला, मंदिरों की बनावट और आधुनिक स्थापत्य की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। धर्मशाला के SDM मोहित रतन ने इसके शुभारंभ अवसर पर हिमाचल के प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उनकी कला को व्यापक मंच उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: जो आर्टिस्ट हैं, पंचरुखी की एक खास जगह पड़ती है लदो, वहाँ से विनय अवस्थी जी ने जो इतनी अच्छी अलग अलग शैलियों में बैम्बू आर्ट इन्होंने दिखाई है, स्लेट पोस्ट मकान हो गए, सिंगल मंजिल, दो मंजिल मंदिर हो गए हमारे हिमाचल के जो प्रसिद्ध हैं, इवन राम मंदिर अयोध्या में जो बना है उसका भी एक रेप्लिका बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है। तो ऐसी अगर आर्ट फॉर्म है तो हमें उसे एनकरेज करना चाहिए।
0: सेना की शिक्षा कोर से सेवानिवृत्त विनय अवस्थी ने बताया कि वे पिछले लगभग 6 वर्षों से बांस की कलाकृतियां तैयार कर रहे हैं। उनका मानना है कि बांस कला स्वरोजगार का एक बेहतर माध्यम बन सकती है।
3: मैं विगत 5-6 साल से बैम्बू आर्ट कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर मंदिर जैसे चामुंडा का शिव मंदिर, बैजनाथ शिव मंदिर, हिडिम्बा मंदिर वगैरह वगैरह, केदारनाथ मंदिर, राम मंदिर, एफिल टावर और बहुत सारी आइटम्स मेरी गैलरी में लेआउट पड़ी है, क्योंकि कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। और इसमें मेरे पास जो रेप्लिकास है वो more than 70 है, जो की मेरी गैलरी में भी पड़े हुए। और मेरा एक और उद्देश्य है कि वेस्ट को मैं बेस्ट करके दिखाऊं, और उससे मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हुई है। आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है, अगर कोई चाहे तो इस आर्ट से लाखों रुपया जो है वो बंदा कमा सकता है।
0: इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन

0: बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है, नवरात्रि पर लें नारी सम्मान और सेवा का संकल्प। वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
2: भारतीय संस्कृति में शारदीय नवरात्रि शक्ति, श्रद्धा, साधना और आत्मशुद्धि का पावन पर्व है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना हमें जीवन में साहस, संयम, धैर्य, करुणा और आत्मविश्वास अपनाने की प्रेरणा देती है। ये 9 दिन केवल पूजा अर्चना का अवसर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर की शक्ति को पहचानने और समाज के प्रति अपने दायित्वों का संकल्प लेने का समय भी है। देश भर के 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इनमें कांगड़ा जिला में मां ज्वालामुखी, मां बज्रेश्वरी और मां चामुंडा नंदीकेश्वर धाम तथा बिलासपुर में नैना देवी व ऊना में मां चिंतपूर्णी स्थित है। शारदीय नवरात्रों के अवसर पर प्रदेश के शक्तिपीठों में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तीसरे नवरात्रे के दौरान मां ज्वालामुखी में सबसे अधिक 20,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया, वहीं मां बज्रेश्वरी मंदिर में 5,500 और मां चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में 3,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज चौथे नवरात्र पर मां कुष्मांडा की आराधना के साथ शक्तिपीठों में भक्ति की आस्था का सिलसिला जारी है। नवरात्र का प्रत्येक दिन एक विशेष संदेश लेकर आता है। मां शैलपुत्री दृढ़ संकल्प, मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और अनुशासन, मां चंद्रघंटा साहस तथा मां कुष्मांडा सृजनशीलता की प्रेरणा देती है। मां स्कंदमाता वात्सल्य, मां कात्यायनी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, मां कालरात्रि निर्भयता, मां महागौरी पवित्रता और मां सिद्धिदात्री रचना की पूर्णता का संदेश देती है। व्रत, ध्यान, मंत्र जप और सेवा के माध्यम से हम मन को एकाग्र कर सकते हैं तथा अपने जीवन में सकारात्मकता और अनुशासन ला सकते हैं। सच्ची साधना वही है जो हमारे विचारों को शुद्ध करे, व्यवहार में संवेदनशीलता लाए और हमें दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरित करें। मां की आराधना और नारी शक्ति का सम्मान, भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। मां दुर्गा का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि नारी में ममता और करुणा के साथ साहस, नेतृत्व और संघर्ष की अद्भुत है। उद्यमिता, कृषि और राजनीति सहित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का परिचय दे रही है। नारी शक्ति का वास्तविक सम्मान केवल देवी की पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बेटी को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके निर्णयों का सम्मान करने और भेदभाव से मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के प्रयास ही मां की आराधना को वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं। जब एक महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के विकास का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता निवास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी सम्मान से राष्ट्र निर्माण तक महिला व बाल विकास की नई दृष्टि, महिला व बाल विकास मंत्रालय का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और अवसरों से परिपूर्ण वातावरण तैयार करना है। मातृ व शिशु स्वास्थ्य, पोषण, बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे विषय हमारे सामूहिक प्रयासों की प्राथमिकता है। महिला सशक्तिकरण को राष्ट्र के विकास का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। सरकार की सोच महिलाओं के विकास तक सीमित न रहकर उन्हें विकास का नेतृत्वकर्ता बनाने की है। इसी दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ऐतिहासिक पहल है, जिसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई अर्थात 33% सीटों के आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये

0: आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: सुनिश्चित करने में मानकों की अहम भूमिका होती है।
2: ये बात आपने बहुत सही कही दीपा। और चाहे मोबाइल फोन हो, बिजली के उपकरण हो, खाद्य पदार्थ हो या दवाइयाँ हो, हर क्षेत्र में मानकों का विशेष महत्व है। और विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी। 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे और इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आगे चलकर इसी प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO की स्थापना हुई।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1970 में ISO के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे उस वक्त फेरुख सुंटर, इन्होंने 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाने की पहल की और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानकों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
2: और इस वर्ष की जो थीम है ना दीपा 2026 की, वो है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य पर विशेष ध्यान, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इस वर्ष का संदेश है
1: बिल्कुल
2: प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, भरोसेमंद, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में अंतर्राष्ट्रीय मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मानक क्या होते हैं? मानक यानी किसी वस्तु, सेवा या प्रक्रिया की गुणवत्ता, सुरक्षा, आकार, माप और कार्यक्षमता के लिए निर्धारित नियम या दिशा निर्देश हैं। अब उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा, बिजली के उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के नियम और मोबाइल और इंटरनेट उपकरणों के बीच तालमेल, वजन और माप में एकरूपता, जैसे 1 किलोग्राम और 1 मीटर का समान माप।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से इमारत और जो पुल होती है उनकी सुरक्षा से संबंधित भी नियम होते हैं। तो इन मानकों से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। तो ISO जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। ये संगठन अलग अलग उद्योग या सेवाएं या प्रक्रियाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करता है। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग यानी IEC ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के मानकों पर काम करता है। और इसी तरह से फिर एक और है ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का, ये इसका फुल फॉर्म है। ये दूर संचार और संचार नेटवर्क और डिजिटल तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में योगदान देता है। अब ये तीनों जो संस्थाएं हैं मिलकर विश्व मानक दिवस के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: और भारत में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS राष्ट्रीय मानक तैयार करने और उत्पादों की गुणवत्ता और अनुरूपता से संबंधित कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है। हमारे दैनिक जीवन में मानकों के महत्व को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क देखना, निर्धारित गुणवत्ता वाले बिजली के उपकरण चुनना, उत्पादों पर ISI चिन्ह और अन्य लागू प्रमाणन चिन्हों की जांच करना, वस्तुओं की पैकिंग पर दी गई जानकारी और गुणवत्ता संबंधी विवरण पढ़ना, हर उत्पाद पर एक चिन्ह लागू नहीं होता, हर उत्पाद पर हर चिन्ह लागू नहीं होता है, हर उत्पाद पर एक ही चिन्ह लागू नहीं, इसलिए खरीददारी करते समय संबंधित उत्पाद के लिए लागू मानक और प्रमाणन देखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो हमें लगता है अब सखियां हमारी सच में इस बात, इस जो जानकारी है इससे और सचेत हो जाएंगी और हमेशा मानक की महत्व
2: चिन्ह देखकर ही
1: खरीदारी करेंगे।
2: अब जैसे कोई सोने के गहने खरीदते हैं तो उसमें भी मानक हमें देखना है, चिन्ह देखना है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, कोई भी चीजें हैं तो उसे उसका चिन्ह देखकर ही हमें खरीदारी करना चाहिए।
1: फिलहाल अभी क्या करना चाहिए,
2: गीत सुनना चाहिए?
1: चलिए

0: सपनों का रंग देखो कभी कभी परिधानों पे भी आ जाता है
1: और कभी कभी डरा भी देता है
0: कैसे?
1: जैसे हमेशा एक ही सपना आता है कि हम परीक्षा में लिखने बैठे हैं और हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हमें कुछ लिखना ही नहीं आ रहा है, या फिर हम दौड़े जा रहे हैं और रेगिस्तान में हमारे पैर ही नहीं उठ रहे हैं।
0: ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी कोई साड़ी खरीदने की इच्छा होती है ना, तो आप देखिएगा कितनी सारी हमारी सखियां इस बात से सहमत भी होंगी, वो सपने में आने लग जाती है।
1: हाँ,
0: है ना?
1: आपकी आती है?
0: आती है। हाँ? बिल्कुल, सच में ऐसी इच्छा है कि कभी हम जाएं ऐसी बर्फीली पहाड़ियों पे, हम भी कोई ऐसे शिफॉन की साड़ी लहरा करके एक बढ़िया सा कुछ वीडियो बनवाएं,
1: यानी जैसे फिल्मों की हीरोइनें।
0: हाँ, जैसे फिल्मों की हीरोइनें करती हैं, हीरोइंस करती है भाई, अभिनेत्री, हर महिला अपने जीवन की अभिनेत्री तो होती है ना, और साड़ी उनका वही खूबसूरत परिधान है। और ये सिर्फ परिधान नहीं है, हमारे देश की कला संस्कृति और परंपराओं को अपने आंचल में समेटे हुए एक खूबसूरत विरासत है। देश के अलग अलग हिस्सों की साड़ियों की अपनी अलग पहचान होती है ना सोनाली। इन्हीं में से एक जो हम आज बात कर रहे हैं ना, पोचमपल्ली इक्कत, जिसे अपने जिसमें उसमें बड़े अट्रैक्टिव ये होते हैं
1: डिजाइन,
0: ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं, हिंदी में अपन ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, और उसकी अनोखी बुनाई होती है जो कि दुनिया भर में जानी जाती है।
1: और पोचमपल्ली तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ पीढ़ियों से बुनकर परिवार इक्कत की कला को संजोते आए हैं और पोचमपल्ली इक्कत को भारत की पारंपरिक हाथकरघा कलाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन

0: टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग है, ये भी हमने मानक की जो बात की,
1: हाँ,
0: ना,
1: मानक की बात की है,
0: तो इसे भी जीआई टैग मिला हुआ
1: जी,
0: है
1: जी। अब इस साड़ी में ऐसा क्या खास है? तो असल में इक्कत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रंगाई और बुनाई की तकनीक है। सामान्य साड़ी में अक्सर कपड़ा बुनने के बाद उस पर डिजाइन बनाया जाता है, लेकिन इक्कत में धागों को बुनने से पहले एक खास तरीके से बांध कर उनमें रंग भरा जाता है, यानी डिजाइन कपड़े पर बाद में नहीं बल्कि जब बुनाई होती है ना तो धागे में पहले से ही तैयार किया जाता है।
0: और इस प्रक्रिया को समझना भी बहुत दिलचस्प है। ताने या बाने के धागों के जिन हिस्सों को किसी खास रंग से बचाना होता है उसे कसकर बांध दिया जाता है, फिर धागों को रंगा जाता है। बांधे गए हिस्सों पर रंग नहीं चढ़ता, इसके बाद अलग अलग हिस्सों को खोलकर दूसरे रंगों में रंगा जाता है और अंत में इन्हीं रंगे हुए धागों को करघे पर बुनकर मनमोहक पैटर्न तैयार किया जाता है। इसी वजह से इक्कत के डिज़ाइनों में हल्का सा धुंधलापन या धागों के मिलने का प्रभाव दिखाई देता है, जो इसकी खूबसूरती और पहचान दोनों हैं।
1: बिल्कुल, अब हमारे जिन सखियों ने ये साड़ी खरीदी होगी या जिन्हें पसंद है तो वो जानती हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, जैसे हीरे वाला जो पैटर्न है ना, हीरे का आकार या चौकर डायमंड शेप या चौकर पैटर्न होंगे, धारियां मिलेंगी या फिर पारंपरिक मोटिफ दिखाई देते हैं। कलर की बात करें तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, काला, ऐसे सारे चटक रंग इस्तेमाल होते हैं इनमें। और आज के समय में बुनकर पारंपरिक रंगों के साथ कुछ पेस्टल और आधुनिक रंग, ये उसका भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो तैयार करते हैं, वैसी साड़ियाँ भी पसंद की जा रही हैं।
0: और पोचमपल्ली इक्कत की परंपरा का इतिहास कई पीढ़ियों पुराना है। यहाँ के बुनकरों ने इस कला को अपने परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। कभी ये कला मुख्य रूप से स्थानीय और पारंपरिक ज़रूरतों से जुड़ी थी, लेकिन समय के साथ पोचमपल्ली इक्कत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज साड़ी के अलावा इक्कत से दुपट्टे, कुर्ते, स्टोल, शर्ट और घर की सजावट से जुड़ी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं।
1: अब भाई बात होगी कि चलिए आपकी इतनी सारी जानकारी से अब हमारी तो इच्छा जागृत हो गई कि हमें साड़ी खरीदनी है।
0: और इसमें शर्ट का जिक्र किया है तो हमारे पुरुष जो भाई हैं
1: वो भी खरीद
0: सकते हैं इक्कत का शर्ट।
1: अब वो जानेंगे भाई मैं शर्ट लूं उससे पहले मुझे घर में जो महिलाएं उनको दिलाना पड़ेगा, तो कीमत क्या है इन साड़ियों की? तो कीमत जो है उसके कपड़े, धागे, डिजाइन, बुनाई की जो जटिलता है या हस्तकरघा का काम या पावरलूम पर बन रही है उस पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अब अगर आप मिक्स्ड फैब्रिक का, मिक्स्ड कपड़े का लेते हैं ना इक्कत की साड़ियाँ, तो 1500 से 2000 या 2500 तक की भी मिल सकती है शुरुआती उसके जो रेट हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन की लेते हैं या सिल्क कॉटन साड़ियाँ तो लगभग 3000 से 7000 के बीच में ये मिल जाती हैं। और वहीं शुद्ध रेशम से की हाथ से बनी हुई जटिल डिज़ाइन वाली और एकदम प्रीमियम पोचमपल्ली इक्कत साड़ियों की कीमत अगर आप जानना चाहें तो 10000 से 25000 तक या उससे ऊपर भी हो सकती है। अब अगर उसमें जितने ये है कि कितना बारीक काम है उस पर निर्भर करता है इसका रेट, और हाँ फैब्रिक पर भी कि किस तरह का आपने कपड़ा चुना है
0: जी। और इसलिए जब अगली बार आप किसी पोचमपल्ली इक्का साड़ी को देखें तो सिर्फ उसके रंग और डिज़ाइन पर नज़र मत डालिएगा, उसके पीछे छिपी उस मेहनत को भी महसूस कीजिएगा जिसमें एक एक धागे को बांधा जाता है, रंगा जाता है, फिर करघे पर बड़ी कुशलता से बुना जाता है। यही तो भारतीय हथकरघे की खूबसूरती है। कपड़ा केवल बुना नहीं जाता, उसमें हमारी परंपराएँ, कारीगरों की मेहनत और पीढ़ियों की कला भी बुनी जाती है।
1: सही बात है। और ये जो सपनीली दुनिया है इसको बुनने के लिए क्या सबसे खूबसूरत साधन है?
0: गीत।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: सोनाली, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम नहीं सुनेंगे पोचमपल्ली की जानकारी क्योंकि बजट हमारा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए हर रेंज की साड़ियों के बारे में आपको बताया। आप अगर चाहिए तो मिक्स्ड फैब्रिक, जिसमें कि
3: कॉटन भी ले सकते हैं।
2: कॉटन में भी इकत की जो वीविंग वाली साड़ी आती है, और अगर आप वीविंग वाली भी नहीं लेना चाहें तो प्रिंट वाली भी आती है। तो आप एक बार अपने मर्जी से बिना उनसे पूछे, घर में बगैर पूछे लेके तो जाइए और ये तोहफा देके बताइए, और उसके बाद यहाँ आकर के बताइएगा इसी मंच पर कि वो उनका चेहरा खुशी से देखिए, खूबसूरती उनकी बढ़ी या नहीं।
3: बिल्कुल। और महिलाएं जो है ना दीपा, वो तो अपनी जो है ना परिवार की सलामती के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। तो घर की महिलाएं अगर खुश हो जाए, फिर भला ही वो साड़ी के माध्यम से हो या छोटे के तोहफे से माध्यम से हो, तो कितनी बड़ी बात होगी।
2: सच में छोटी छोटी बात है, और कोई साड़ी लेना भी जरूरी नहीं है, आप छोटी सी चीज भी लेकर जाएंगे ना। बस यूं ही जाते हुए घर, दफ्तर से घर आते हुए अगर आप एक गुलाब का फूल भी लेके जाते हैं, वो फूल देख कर भी बहुत खुश हो जाती है कि अरे मुझे याद किया, क्या बात है।
3: या उनकी पसंद की कोई चीज है ना, भले ही छोटी सी चॉकलेट क्यों ना हो। और अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का,

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं,
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। इतने सारे संदेश आए हैं ना कि वो ब्रेक खत्म होने का भी इंतजार नहीं हो रहा था। हमारे एक सखी ने लिखा कि कुछ महीने पहले मेरे भतीजी की शादी के एक कार्यक्रम में मैंने पोचमपल्ली साड़ी खरीदी थी और अच्छा उनका अनुभव रहा, ऐसा वो कहती हैं। तो सच में अलग अलग हथकरघा या आप अलग अलग प्रदेशों की साड़ियाँ जब आप पहनते हैं, अलग अलग हमारे अनुभव होते हैं। और सच में बहुत जो आपस में जो ये जो कहते हैं ना महिलाओं वाली बातें, उसमें साड़ियों का जिक्र तो निकलता ही है।
0: वैसे प्रार्थना की बात चली है तो हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे स्कूल में शुरुआत में सभी स्टूडेंट और टीचर प्रिंसिपल एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। वे प्रार्थनाएं आज भी याद है। कुछ खास बात प्रिंसिपल को कहनी होती तो उसी समय कहते थे। प्रार्थना का असर क्या होता था पता नहीं, पर मन बहुत शांत हो जाता था। मैं रोज़ सुबह नहाने के बाद 10 मिनट के लिए प्रार्थना के लिए बैठती हूँ। उस समय जो भी भगवान से जो कहना होता है वो कह लेती हूँ। आखिरकार उस परम पिता की कोई तो शक्ति है जो इतनी बड़ी दुनिया को चला रहा है। प्रार्थना से शांति तो मिलती ही है।
1: बहुत सही कहा, बिल्कुल सही। और इसी तरह से विचार हमारे एक श्रोता के कहते हैं, हमारे विचार से प्रार्थना करने से हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन पर कई सकारात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। ये तभी संभव है जब सच्चे दिल से प्रार्थना की गई हो। नियमित प्रार्थना करने से अहंकार दूर होता है, स्वभाव विनम्र बनता है, जिससे आंतरिक बल और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, जीवन से जुड़ी समस्याओं और उलझनों का समाधान मिलता है। आगे कहते हैं, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब है मानव तू प्रार्थना कर, ईश्वर से प्रार्थना कर।
0: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना केवल कुछ शब्दों को दोहराना या हाथ जोड़कर घुटने टेकना नहीं है, बल्कि आत्मा की वे गहरी पुकार है जो सीधे उस परम चेतना तक पहुंचती है जिसे हम ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड कहते हैं। जब हम कहते हैं शब्द हमारा विचार आपके, तो इसका अर्थ है कि यह शब्द केवल एक माध्यम है, लेकिन उनके पीछे की भावना, गहराई और चिंतन पूरी तरह से आपका अपना होना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन में एक ऐसा सेतु है जो हमें अशांति से शांति की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही कहा। और संदेश अगला कहता है कि पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं, उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तित्व आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
0: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना हृदय का गीत है। चाहे आप शब्दों का प्रयोग करें या मौन रहकर केवल अपने मन के भावों को अर्पित करें, यदि उसमें सच्चाई और श्रद्धा है तो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को भूलकर उस परम शक्ति के सामने नतमस्तक होता है, तब उसके भीतर क्षमा, करुणा और प्रेम जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। प्रार्थना हमारे जीवन को सुंदर, अनुशासित और उद्देश्य पूर्ण बनाने का सबसे सरल माध्यम है। यह हमारे भीतर छिपी असीम शक्तियों को जगाने और ईश्वर के साथ एक अटूट व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का जरिया है। शब्द चाहे कोई भी हो, यदि आपके विचार और भावनाएं शुद्ध हैं, तो आपकी हर प्रार्थना स्वीकार्य है। कितनी सुंदर बात, कितने सुंदर विचार लिखे हैं हमारे सभी।
1: सही कहा सोनाली। हमारे एक श्रोता ने कुछ फिल्मों में दिखाए गए प्रार्थनाओं के बारे में जिक्र किया है, जैसे कि हे प्रभु आनंद दाता, ए मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये सारे फिल्मों में प्रार्थना के रूप में इन्हें जो गीतों को दिखाया है, आज भी हम बेहद पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति आभार, सम्मान और मार्गदर्शन व्यक्त करना, जो मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। आगे लिखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से ठीक पहले प्रार्थना करवाया जाती था, पहले हमारे समय में, और एक स्वस्थ और अच्छी दिनचर्या मानी गई है सुबह की प्रार्थना। बच्चों के मन को शांत करती है और दिन भर की पढ़ाई के लिए उनका ध्यान केंद्रित रखती है। और आगे कहते हैं कि कतार में खड़े होकर साथ में प्रार्थना करने से बच्चों में अनुशासन, नियम और समय की पाबंदी की जो कि ये जो आदत है ये विकसित होती है।
0: एक साथी कहते हैं, पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तिगत आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
1: एक और कहते हैं कि प्रार्थना शब्द सुनते ही वो स्कूल की सुबह की प्रार्थना याद आ जाती। एक छोटा सा ढोलक और एक खंजरी बजाकर तीन लड़कियां सामने बैठकर गाती थी और उनके पीछे सब गाते थे। हर दिन एक नई प्रार्थना गाई जाती थी, हमें बड़ा मजा आता था।
0: एक कहते हैं, प्रार्थना दुखी मन को न केवल शांति प्रदान करता है अपितु हृदय में धैर्य भी भरता है, और इस दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हुए जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।
1: एक अगला संदेश कह रहा है कि प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि जो मिला है उसका धन्यवाद करने के लिए भी होना चाहिए। किसी असहाय की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, दुखी को सांत्वना देना जैसे काम भी प्रार्थना के ही रूप हैं।
0: एक साथी कहते हैं, हम सभी लगभग प्रार्थना करते ही हैं, परंतु अगर हम संसार के रचयिता से सच्चे मन से भगवान से जुड़कर प्रार्थना करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी प्रार्थना स्वीकार न हो। जरूरी होती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। सुख और दुख दोनों में प्रार्थना कर जगत के पालनहारी से प्रार्थना करें। और अब
1: गीत सुनते हैं।

0: प्रार्थना से देखिए, सच में कहा ना, सभी हमारी जैसे सखियां बता रही थी कि मन में एक सुकून आ जाता है और शांति आ जाती है ना, और सबके लिए ऐसा लगता है एक शुभ कामनाएं निकलती हैं दिल से कि इसका भी अच्छा हो, इसका भी अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो, जो हमारे संबंधी हैं उन लोगों का सबका अच्छा हो, है ना।
1: और जो माताएं होती, जो मम्मियां होती है जिनके युवा शादी नहीं करते, तो वो भी प्रार्थना करती कि जल्दी से हमारे घर में बहू रानी आ जाए या फिर हमारे घर में दामाद आ जाए। मैं हमेशा हाथ जोड़ के कहती कि भाई हमारे बच्चों को अब इस तरह की इच्छा जागृत हो कि वे जल्दी से शादी के लिए हाँ कह दे।
0: बिल्कुल, लेकिन आज के जो बदलते सामाजिक परिवेश है ना सोनाली, उसमें जो युवा है, यूथ जो है, उनकी सोच, जीवन शैली और उनकी जो प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं हैं वो बहुत बदल गई हैं आजकल। एक समय था जब विवाह को जीवन का एक स्वाभाविक हम पड़ाव मानते थे कि हाँ अब इस एज के बाद तो ये शादी होनी है, पढ़ाई पूरी करना, नौकरी पाना, विवाह करना और परिवार बसाना, ये जीवन का एक सामान्य रूपरेखा हुआ करती थी। लेकिन आज जो युवा हैं वो विवाह करने और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं।
1: इसके पीछे अनेक कारण हैं दीपा, कि जैसे उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हमने शादी कर ली तो फिर हमारे करियर में, खासकर महिलाओं को, युवतियों को ऐसा लगता है कि हमारे करियर में बाधा आ जाएगी, या फिर हमने इतना बड़ी मेहनत से हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने अपने करियर को इतना अच्छा सजाया संवारा है, और अगर हम शादी के बाद में उसमें बाधा आ जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे, हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा, तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपके क्या विचार है, आपको ऐसा लगता है क्या पुराने ज़माने में भी करियर भी हुआ करते थे, शादियाँ भी हुआ करती थी, तब हमारे मन में विचार नहीं आता था, पर आजकल के युवाओं के मन में ये विचार क्यों आने लग गए?
0: आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। हम भी यहाँ पर से अपनी तरफ से इस बातों को, इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये समझना आवश्यक है कि विवाह का अर्थ स्वतंत्रता का अंत नहीं है। सबको लगता है कि अरे भाई शादी हो गई ना, सारी आजादी खत्म, बस एक शब्द बोला जाता है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच समझदारी, सहयोग और आपसी सम्मान का ये रिश्ता है। और आज के युवा पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अच्छी नौकरी, आर्थिक स्थिरता, फिर अपना घर, सुरक्षित भविष्य, और ये सब उनकी प्राथमिकताएं हैं। वो चाहते हैं कि विवाह से पहले उनका करियर स्थापित हो जाए, ताकि वे अपने जीवन साथी के साथ एक आर्थिक तनाव के बिना जीवन बिता सकें।
1: और जैसे दीपा मैंने भी कहा था कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों युवा ये बात को सोचने पे मजबूर हो गए, उसके पीछे एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि माता पिता के बीच लगातार होने वाले झगड़े भी बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े होकर वे भी इसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहेंगे। हालांकि हर विवाह का अनुभव एक जैसा नहीं होता है। स्वस्थ संवाद, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल, और अपने आसपास शादियों का जो टूटना देखते हैं ना, पारिवारिक विवाद भी देखते हैं, घरेलू तनाव और रिश्तों में कड़वाहट देखने वाले युवाओं के मन में भी एक विवाह को लेकर ना थोड़ी एक डाउट डर आ जाती है, डाउट सा बनने लग जाता है। वे सोचते हैं कि यदि विवाह के बाद जीवन में शांति के बजाय अगर ये तनाव इस तरह मिलना है, तो ऐसा रिश्ता बनाने का क्या लाभ है।
1: अब देखिए, दोस्ती के बीच में भी जब हम दोस्ती बनाते हैं ना किसी से, तब भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
0: ये बात
1: तो हमारी हाथों की पांचों उंगलियां एक समान
0: वो भी होता, एक समान
1: तो हर इंसान कैसे एक समान।
0: अरे भाई, घर में भाई बहन जो होते हैं, एक ही माता पिता के बच्चे,

0: देती
1: और रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। भाई हमारे साथियों ने भी लिखी है कुछ बातें। हमारे एक साथी कहते हैं कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा बड़ा रोचक मुद्दा है। नई शादी होने के बाद युवक और युवती अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। युवक त्योहार उत्सव में जाना बड़ा आनंद लेते हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ना, फिर काम पर जाना, अभी हम सेटल नहीं हुए, अभी हम पढ़ रहे हैं, इस जंजाल में युवा फंसे होते हैं। हमारी माँ तो कहती है प्रभु ही शादी कराएगा, असल में प्रभु ही इनकी शादी करवाएगा, ऐसी उन्हें चिंता लगी रहती है।
0: एक संदेश ये भी कह रहा है कि भाई जहाँ तक वैवाहिक जवाबदारी से बचने की बात है, जवाब कम है, दुनियादारी ज़्यादा है। आजकल के युवा 21वीं सदी के हैं जो कह रहे हैं हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे, वो मंजिल है नौकरी या कोई बिजनेस, फिर बाद में बाद में कहते हैं बाद में छोकरी, मतलब ये गुजराती में शायद उन्होंने लिखा है कि भाई वो कहते हैं कि सब सेटल हो जाए हम उसके बाद ही विवाह करना चाहेंगे। अच्छा, माता पिता के बीच भी लगातार होने वाले झगड़ों में भी बच्चों का मन, ये अगर घर में कुछ ऐसा माहौल है ना कि माता पिता के बीच में बहसबाजियां अगर बच्चों ने देख रखी है तो उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, फिर वो बड़े होकर उसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहते हैं। हालांकि अब ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर विवाह का अनुभव एक जैसा होता भी नहीं है। स्वस्थ संवाद होते हैं, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बना सकती है। अब ये भी बात है सोनाली कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं है ना, इसके साथ हम इमोशनल तरीके से भी जुड़ते हैं, फिर घर की व्यवस्था भी देखनी होती है, आर्थिक योजना क्या है, या परिवार के प्रति संवेदनशीलता और भविष्य से जुड़े निर्णय भी आ जाते हैं।
1: और अब क्या किया जाए,
0: एक गीत सुना जाए,
1: सुनते हैं गीत।

0: बच्चे कहते हैं आजकल कि हमें ये तो यकीन है कि अभी शादी हमें नहीं करना है, और एक संदेश ये कहता है कि विगत सालों से सोशल मीडिया और ख़बरों ने शादी विवाह के मामले में ऐसा दहशत फैला दिया है कि लड़के लड़कियां क्या माँ बाप भी बेहद सहम गए हैं बच्चों की शादियों की बातों से, वो भी डरने लगे हैं। लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, सभी की कहानी एक समान होती जा रही है। कई सालों तक साथ रहने के बाद भी वैवाहिक जीवन का जो सुनहरा रंग है उस वो बदलता जा रहा है। यहाँ पर दबाव की ही नहीं, यहाँ बातचीत करके किसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है उसे बदला जाए या उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो अच्छे लोग और अच्छे विचारों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में ये तय नहीं होता है, बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही लड़के लड़कियों के दिमाग में बैठाना होगा कि वैवाहिक सूत्र दाम्पत्य जीवन एक पवित्र रिश्ता होता है। इसमें दो परिवार बनते हैं, दो लोग मिलते हैं, परिवार बढ़ता है और कई तरह की जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, तो ये जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी ही।
1: एक हमारे साथी ने कहा है, आज के युवा वैवाहिक जीवन से ज़्यादा करियर पर ज़्यादा जोर देने लगे हैं। वे मानते हैं कि शादी कर लेने से घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी और करियर खत्म हो जाएगा। अभी कुछ कमा कर पग भर हो जाए तभी शादी तो बाद में होगी। मेरे घर में भी मेरी बेटी 29 साल की हो गई पर शादी से मना कर रही है और नौकरी के साथ साथ एग्ज़ाम भी दे रही है ताकि और बेहतर नौकरी कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेहनत कर रही है, पर शादी की ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद में ना बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं, शारीरिक बदलाव आ जाते हैं, मानसिक बदलाव आ जाते हैं। फिर वो एक उम्र के बाद में ना जो महिला है या पुरुष यानी लड़के लड़के कोई भी एक दूसरे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की सोच की एक और संदेश है कि आज के युवा, उन्होंने लिखा है, दोनों महिला और पुरुष अपने करियर और वित्तीय स्थिरता को पहली प्राथमिकता देते हैं। वे शादी से पहले एक मजबूत बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं जिसके कारण विवाह में देरी होती है या युवा इससे बचते हैं। और एक और संदेश कहता है कि आधुनिक युवा अपनी जीवन शैली, प्राइवेसी और आज़ादी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके व्यक्तिगत विकास और सपनों में बाधा बन सकती है। बढ़ते तलाक के मामले और रिश्तों में अस्थिरता, समाज में टूटते हुए परिवारों और कोर्ट कचहरी के मामलों को देख कर, युवाओं के मन में विवाह जैसी संस्था के प्रति एक अदृश्य डर बैठ गया है। ये बात सही है कि कभी कभी अगर ये मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है तो जो बच्चे जिनकी शादी होने वाली होती है तो वो बहुत डर जाते हैं। और अगर घर में ही कुछ आपके घर में इस तरह का कोई आपने किस्सा देख लिया हो या आपके रिश्तेदारों में, तो और डर बैठ जाता है कि अरे भाई हमें अभी शादी नहीं करनी, अभी हमें थोड़ा वक्त दीजिए।
1: अभी जो आज का जो मुद्दा है ना, थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा, थोड़ा सा हमारा मन भी भारी हो गया बात करते करते, क्यों ना व्यंजन की ओर बढ़ा जाए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: शक्करकंद के व्यंजन। तो एक हमारे साथी ने लिखा है, शकरकंद को उबालें, स्टीम कर लें, ठंडा होने पर इन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें, भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक को मोटा दरदरा कूट लें। अगर फलाहार बनाना है तो इसमें सेंधा नमक और नींबू, कूटी मूंगफली के मसाले मिलकर चटपटा शकरकंदी तैयार है। और इसे मीठा भी बना सकते हैं ना, तो उसे मीठे को उबाल के उसको छोटे यानी मीठा भी खा सकते हैं। तो उबले शकरकंद को टुकड़ों में काट ले, थोड़ा सा घी में भून ले, कढ़ाई में गुड़ को पिघला ले, उसमें शकरकंद के टुकड़े डालकर उलट पलट कर सुखा ले, मीठे शकरकंदी तैयार है। आप इसे घी में भुनना नहीं चाहते तो ऐसे भी गुड़ में बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब एक गीत सुन सकते हैं।

0: हम तो ये कहेंगे अपनी हमारे श्रोताओं से कि जिन परिवार में बच्चे नहीं सुन रहे उन्हें ये गीत सुनाइए, जहाँ पे उन्हें बताइए कि एक छोटा सा बंगला बनाकर एक नई दुनिया बसाए जो बहुत खूबसूरत है।
1: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
2: की सहेली।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: हो। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई,
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। इस बातचीत की पहली कड़ी हमने पिछले सप्ताह सुनी थी और अब सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
3: विशाल जी सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
4: धन्यवाद।
3: और अब आपकी दूसरी फिल्मों का जिक्र करते हैं विशाल जी। इसके पहले भी आपने फिल्में बनाई हैं, तो उन फिल्मों के बारे में बताइए। कहाँ से आपकी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट का चुनाव और लिखने का चुनाव कैसे आपके मन में आता है, क्या क्राइटेरिया होता है?
4: मुझे लगता है कि एक तो मैंने पहले ये डायरेक्टोरियली मेरी पहली फिल्म है, इसके पहले मैंने फौजी 2 मतलब फॉलो अप सीजन ऑफ फौजी 1 जो शाहरुख खान जी का जो सीरियल था उसका एक फॉलो अप सीजन मैंने पिछले वर्ष लिखा।
3: द गर्ल ऑन द हाईवे
4: वो हमारे अपना हम बहुत सारी आईपीज हमने क्रिएट किए उसमें, वो अपनी आईपी अपना कंटेंट है। द गर्ल ऑन हाईवे प्लस जो है ना हुड़दंग में क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं, बहुत से मित्र हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, प्लस जो है ना कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट में कुछ समय तक कंटेंट हेड कर रहा था। तो मुझे लगता है कि मैं जो है ना बहुत समय से वायरल फिल्म्स तो बना रहा था जो कि शॉर्ट्स थी, 10-12 मिनट की फिल्म्स होती थी वो, और एड्स भी थे मेरे बहुत वायरल हो जाते थे। तो वायरल शॉर्ट से वायरल सोशल मीडिया वायरल कॉन्टेंट से थिएटरिकली वायरल फिल्म बनाने का मुझे एक चस्का भी था कि कैसी फिल्म बनानी जो सब एक्सेप्ट करें, उसको सब देखें, जिसके बारे में कोई निगेटिव ना बोले। अब ये अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी समझ की आवश्यकता थी जो मुझे बहुत समय से जिसको मैं फॉलो कर रहा था कि कैसे मैं ऐसा कंटेंट लिखूं जिसको सब प्यार करें, जिसमें आप महिलाएं तो महिलाएं, बच्चे तो बच्चे, ग्रैंड सन ग्रैंड फादर, मौसा फूफा, जो भी आप पॉसिबल है, दोस्त मित्र, आपको हर व्यक्ति के लिए हर रोल के लिए आपको एक कुछ मिल जाए फिल्म के अंदर और आप उस फिल्म को सराहें। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो कि हो कैसे गई मुझे पता नहीं, कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ भी कितना भी अच्छा आप कर लो लेकिन आपको नेगेटिव करने वाले कोई ना कोई मिल ही जाते हैं।
3: बिल्कुल।
4: आप समझिए, सोचिए, आपके 9.7 की रेटिंग है, ऑलमोस्ट 10 ही हो गया ऑन बुक माई शो, 1.5 लाख से ऊपर रिव्यूज हैं उस पर, आप नेगेटिव ढूंढते रह जाएंगे आपको मिलेगा ही नहीं। इंटरनेट सोशल मीडिया पर आप ढूंढते रह जाएंगे आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, कमेंट ही नहीं मिलेगा नेगेटिव।
3: बिल्कुल नहीं।
4: तो ये कैसे हो गया, ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगता था कि लोग लेंगे साइड, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। चूंकि फिल्म में कोई विलन नहीं है, चूंकि फिल्म में किसी को भी एंटागनाइज नहीं किया, चूंकि फिल्म में ऐसा कोई मुद्दा समाज का नहीं है जिसको मैंने केटर नहीं किया। अगर वो पति पत्नी के बीच में वो है तो सबको एड्रेस किया है समस्याओं को। तो मैं इस फिल्म को बोलता हूँ, जब मैं फिल्म को पोजिशन कर रहा था तो मैं बोलता हूँ इसको कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, ये मेरे लिए वो फिल्म है। मैं एज अ फिल्म मेकर क्या बोलूँ, एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ,
3: मानवीयता है,
4: मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ, कुंडलिनियों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मैं एज अ डॉक्टर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन और Somebody who's a filmmaker और वो समाज को कुछ तो दे है ना भाई, आप फिल्म बना के दे क्या रहे हो एंटरटेनमेंट के साथ में, बट किसी भी समय पे फिल्म में से एंटरटेनमेंट जाना नहीं चाहिए कि आपको फिल्म जो है ना टिटलेट करती रहे, आपको कॉन्स्टेंटली आपको जो है ना वो एक
3: बांध के रख

0: गाने के बाद वापस की फिल्म पर आते हैं विशाल जी, एक आध्यात्मिक कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता है ये, तो आपने इसमें हनुमान अंश में तथ्य समय और कहानी को कैसे तीनों में संतुलन बनाया आपने?
1: तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तथ्यात्मक रूप से मैंने रेफरेंसिंग करी अच्छे से, प्रॉपर रेफरेंसिंग करी, तो उसमें बहुत गलत ना चला जाऊं, सिनेमेटिक लिबर्टी तो लेते ही हैं हम सब, लेकिन कहीं गलत ना चला जाऊं, गलत का मतलब कोई ऑफेंड ना हो जाए, उनकी उनके परिवार वाले इन्फेंड ना हो जाए, उनके फॉलोअर्स इन्फेंड ना हो जाए, या एक आप सनातन को मानने वाले हैं, आप अगर हिंदू धर्म में के बिलीवर हैं, आपकी भक्ति पे कोई किसी तरह का आपको ना बुरा लग जाए, तो संवेदनशीलता जब हाँ, मुझे मेरा कहना मानना ऐसा है कि संवेदनशील आप जब होते हो, आप जिस सब्जेक्ट पे भी काम कर रहे हो, तो आप एक अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सेंस रहता है कि आप कहीं गलत ना कर दो, तो तथ्यात्मक रूप से मैंने कोई उसको जो है ना बैलेंस करके रखा। कालखंड को मैनेज करना, क्योंकि पीरियड फिल्म्स जनरली बहुत टफ मानी जाती हैं और माना जाता है कि आप उस कालखंड को करोगे क्रिएट करोगे तो बहुत महंगा होगा, जबकि मैंने उसको उल्टा सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोला कि 4 कलर्स के कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, पांचवा नहीं होगा,
0: जी जी जी,
1: और थान खरीदो और उनको कलर करो, तो पगड़ियां बनेंगी या धोती बनेगी या कुछ भी बनेगा, वो सेम कलर, 4 कलर के अंदर पांचवा कलर नहीं होगा कॉस्ट्यूम्स में। सिमिलरली ऑन द वॉल्स, जो भी वॉल्स हैं, एक तो मैं सेलेक्ट ही ऐसी जगह करूंगा जहां पे किसी तरह की मॉडर्निटी ना हो, तो उसको बचना वहां से, लेकिन जो हमें पेंट करना है, पेंट करने के लिए भी लगभग 4 कलर हैं, उनका पैलेट है एज एन वॉल का, जिसको प्रोडक्शन डिजाइन बोलते हैं, और कॉस्ट्यूम डिजाइन जिसको बोलते हैं, तो कॉस्ट्यूम के कलर्स में और इसके कलर्स में इनको 4-4 कर दिया, प्लस मैंने पूरी फिल्म को 9 भाग में बांट दिया।
0: अच्छा।
1: लगभग 9 चैप्टर्स थे, उनको बांट दिया, और ये करने से हुआ ये कि हम कहीं ना कहीं वो जिन गलियों में घूम रहे थे, जिन वॉल्स को हम देख रहे थे, जिसको जो हमें कलर्स पता था, सबको क्लैरिटी थी कि यार ये कलर नहीं हो सकता, कोई कलर हो ही नहीं सकता मॉडर्न है, तो पेंट करो, रीपेंट करो उसको, मतलब जब आप उनको वापस करोगे तो रीपेंट कर दो, इफ दे आर ओके विद द सेम पेंट इट्स ओके। तो ऐसे करते करते करते मिट्टी के बने हुए मकान, पुरानी जो वॉल्स, पुराने कोतवाली, पुरानी जगह, उन सबको हमने टारगेट किया, फोकस किया, और मिलते भी गए हमको, तो ढूंढते ढूंढते हमको मिलते भी गए, तो ऐसे करके मैंने पीरियड अप्रोप्रिएट किया। और तीसरा सवाल था आपका
0: कि कालखंड और इसको आध्यात्मिक व्यक्तित्व की कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में।

0: संभालना
1: कैसे क्या, हाँ, तो सो बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे हूँ बहुत समय से, पिछले 20 साल से। मैं उसका श्रेय पूरी तरह मैं अपनी माताजी को देता हूँ, मुझे कंसिस्टेंटली जो है ना वो पुश करती रहती हैं और कुछ कुछ बताती रहती हैं कि ये सुन लो, ये हो गया, वो हो गया, ये किताब पढ़ लेना। भले मैं पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ, उनकी बात को मना नहीं करता, मैं कहता हाँ मैं कर लेता हूँ। और कई बार वो बोरिंग भी होता है जो बोलती हैं, कह रही नहीं ये सुन लो वो सुन लो। अब मैंने जिस जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो गया मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, तो मैं नई नई चीज़ों में जंप नहीं करता, उनको बहुत इंटरेस्ट दिन भर यही करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी 20 से मैं जो फॉलो करते आया बिकॉज ऑफ मदर, आई कुड एक्चुअली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड द कोर प्रिंसिपल्स। किसी का कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, अगर सिद्धियां आई तो कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, कुंडलिनी जागरण के बिना तो सिद्धियां नहीं आएंगी, तो सिद्धियां कहां से आई होंगी? तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअली आपको यू हैव टू डीप डाइव, यू हैव टू फिगर आउट कि हुआ क्या होगा। तो नाथ संप्रदाय के जो साधु मिलते हैं, जहां पर सासा हाले हंसा चाले सॉन्ग है, जहां पे वो इट ऑल टॉक्स अबाउट कि आपके भीतर जो है ना, भीतर बड़ा उजाला भासे एक मणिधर आगे, दीज लाइन्स जो है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी सिंपल, कि वो जो मूलाधार में जो मणि चक्र बोलते हैं, जिसको मणि बोलते हैं कि कुंडलिनी का जो मणि है, तो भीतर बड़ा, और जो अंधेरे में जो ताला खोले, वो बिना चाबी के अंधेरे में ताला खोले, अंधेरा ही है ना, आप जब आंख बंद करोगे तो अंधेरा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअली चीजों को इंक्लूड करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत समझ की आवश्यकता थी, वो मुझे मेरी अपनी माताजी के वजह से बहुत मिली। प्लस मुझे एक आई फाउंड वन ऑफ द बुक कॉल्ड सारस्वत कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटली बाय समबडी आई मेट, ही रेफर्ड दैट बुक समहाउ। मैं एक वंदे भारत ट्रेन में बैठा था, 6 घंटे का समय था, मेरे पे आईपैड पे वो बुक थी, मैंने उसको खोल के पढ़ना शुरू किया, उसके 58वें पेज पे मुझे सासा हाले हंसा चाले मिल गया, जो कुंडलिनी जागरण के बारे में गुरु गोरक्षनाथ की 11वीं शताब्दी की लिखी हुई कपलेट से, और वो इतनी सिंप्लीफाइड और इतनी गूढ़ और सिंप्लीफाइड येट सिंप्लीफाइड। सो आई लव थिंग्स विच आर वेरी सिंप्लीफाइड, यू विल लव टू हियर देम इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। गूढ़ इन्फॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में मिले, पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, बट अंडरस्टैंडेबल इफ यू विश टू गो इन टू, आप डीप डाइव करोगे, अगर आप मैंने तेरे ही भरोसे अनुमान आप डीप डाइव करोगे तो आपको उसके अंदर वो मिलेगा जो आप शायद जिंदगी में ना खोज पाओ,
0: बिल्कुल
1: उतनी क्लैरिटी ना मिले। तो मेरा ये जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन दैट आई प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, कि अगर आप उसमें डीप डाइव करना चाहते हो तो आप कर लो फिर,
0: बिल्कुल
1: आपके पास में ये रास्ता है, सुगम रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए। जो मैंने समझाया मैंने आपको समझा दिया, हो सकता है कि मैंने 5% ही समझाओ, लेकिन एटलीस्ट 5% 4% तो समझेंगे आप, फिर आपकी जर्नी आप देखेंगे आप कैसे कहाँ जाना है।
0: तो यहाँ पर ये आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है
1: जी।
0: और माँ पिता से हम बहुत कुछ सीखते हैं, कभी डांट खाते हैं, मार खाते हैं, तो ऐसी कोई शरारत वाली घटना भी बताइए, अच्छी अच्छी बातें तो बताए कि डांट पड़ी हो वो भी बताइए।
1: बहुत मैं अपने भाई की वजह से बहुत मार खाता था, मेरे भाई मुझे जो है ना ट्रैप करा देता था कुछ कुछ चीज़ों में, कभी बचपन में भाई ने मुझे बहुत जो है ना इस तरह की सिचुएशन में फंसाया है
0: जी।
1: तो मार तो मैं खाता था लेकिन भाई की वजह से खाता था, और वो तो फिर माता जी के हाथ में जो आ जाए, फिर वो पाइप होता था जिससे बेलन टाइट चिमचा, तो कर ये तो आप सब देखते हो, लेकिन जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना जिसमें पानी भरते हैं, वो बड़ा खतरनाक होता था, वो चिपकता भी बहुत था वो, तो वो तो मैंने बड़े काफी उम्र तक खाया है वो। अच्छा। मुझे याद नहीं कौन से, मुझे लगता है कि मैं 17-18 साल तक की उम्र तक भी खाया है।
0: तो लेकिन क्या बात होती थी, घटना क्या रहती थी?
1: She will just get furious and then she will beat and then now you don't have any option because you ये तो जॉब है
0: तो मतलब कौन सी गलती आप करते थे जिससे मार पड़ती थी?
1: मैं एक्चुअली कोई सच वो नहीं थी, इन्फॉर्मेशन कैसे कैसी पास होती है, इंटरप्रिटेशन होता है ना, कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म और फॉर अ स्टोरी कि आप जो भी इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको आप यू वर्क इट आउट। एंड आई टेल यू वन ऑफ द सीन जहाँ पे फिल्म में जो है ना वो महाराज जी को नीचे उतार देते हैं और गोपाल को और महाराज जी को उतार देते हैं, आपको जो हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें गोपाल था ही नहीं उस सीन के अंदर। किसी ने मुझे बोला कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महाराज जी अरोगेंट हैं, उन्होंने अपने गुस्से में आके उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो तुम, सोचता हूँ मैं इस बारे में। तो मैंने शूट पे वहीं पे जाके वो उस पूरे के पूरे उसमें इवेंट में उसको इंक्लूड किया, तो अगर आप देखें गोपाल के पास बहुत डायलॉग्स नहीं है
0: जी।
1: पूरे सीक्वेंस में गोपाल डायलॉग्स नहीं बोलता क्योंकि डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे। वो चूंकि गोपाल को धक्का मार के गिरा दिया इसलिए महाराज जी को गुस्सा आती है, और वो फिर गोपाल से ही हर बात पे, अगर आप याद हो आपको वो जब रोने लगता है, वो कहते हैं यहाँ पे स्टेशन बनेगा और यहाँ पे कभी साधु संत को नहीं उतारेंगे, तो ही लुक्स एट हिम एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज ही नोज दैट ही इज ये मेरे लिए कर रहे हैं। तो मैं उनका साथी, मुझे भाई

0: भी बोलते हैं, मतलब मुझसे भाई भी बोलते हैं, और मेरे लिए कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं. दैट्स हाउ दैट सीन वर्क्स. तो इंटरप्रिटेशन है. अगर आपने इंटरप्रिटेशन में ध्यान नहीं दिया होता मैंने, तो शायद वो सीन इतना अच्छा वर्क नहीं करता. हो सकता है कोई भी ना मुझसे क्वेश्चन करता,
1: बिल्कुल.
0: लेकिन फिर भी मैं उस बात पे गौर किया और उसके हिसाब से थोड़ा सा जो भी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए वो फिल्म का इंटरप्रिटेशन चेंज किया. दैट वर्क फॉर पीपल. से किसी ने मुझे भी कल ही बोला कि द वे ही लुक्स एट महाराज जी एंड स्टार्ट्स क्राइंग, वो मेरे लिए सीन में सबसे ज्यादा वर्क किया.
1: तो यहाँ माँ का ही जिक्र चल रहा है, तो मुझे लगता है कि माँ के नाम एक गाना होना चाहिए. माँ पिता के नाम कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
0: माँ के नाम पे, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे.

0: बहुत सारी बातें माँ पिता के बारे में, संस्कार होते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे थे, मैं MBBS कर रहे थे, बाकायदा एक डॉक्टर बन चुके थे, फिर अचानक फिल्मों की ओर झुकाव कैसे हुआ, मतलब वो बीज कैसे आया? आप इतनी बड़ी, मतलब एक आपको नौकरी मिल चुकी है और फिल्मों की ओर जाना कितना बड़ा रिस्क था, तो कैसे आपने चयन किया ये?
1: आई थिंक बहुत टफ था। मुझे लगता है कि मैं आ तो गया मुंबई, और आया क्यों मैंने बता दिया कि मैंने लखनऊ में ऐसा माहौल में चला गया मैं कि मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, म्यूज़िक में इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंट आर्ट फॉर्म में पोइट्रीज लिखने शुरू कर दी मैंने। तो वो कॉलेज में भी करता रहा, परस्यू करता रहा करता रहा, फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे मेडिसिन पसंद आ गई। अब वो दोनों पसंद है, अब दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बना नहीं। कुछ सालों मैंने जो है ना यहाँ पे नौकरियाँ भी की मुंबई में, और उसके बाद में कुछ समय मैंने अपनी क्लिनिक भी चलाई, और बाय द एंड ऑफ इट मुझे समझ में ये आया कि एक समय ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा था कि इट इज़ टू एग्जॉस्टिंग टू, ये दोनों अलग अलग दुनिया है, मैं इस दुनिया में जाता हूँ फिर इस दुनिया में आता हूँ। और मेडिसिन जो है ना, चूंकि आई एम लिटिल इमोशनल पर्सन, मैं

0: अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करता था, यानी साइलेंट भी नहीं करता था। पता नहीं किस पेशेंट का किस हालत में कॉल आ जाए, किस व्यक्ति का जान जो है ना जोखिम में हो और वो बोल रहे हो। लेकिन लोग कॉल ऐसे भी करते थे, सर 2 बजे के, सर जो है थोड़ा पेट में गैस बन गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, बोल रहे हैं पेट में गैस बन गया। तो फिर मुझे एकदम समझ में आया कि ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। और मैंने अपनी पीक जो प्रैक्टिस थी उस पर चलते हुए मैंने अचानक से एक दिन क्लिनिक बंद कर दिया, और तब से मैं वो सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबके मैं फ़ोन पे इलाज कर रहा हूँ कई सालों से। तो ऐसा नहीं होने उनको छोड़ दिया जी जी। सागर में नैया डाल दी, मैं उनको मजार में नहीं छोड़ा मैंने जी। तो खैर विद देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2011 में मैंने अपनी क्लिनिक बंद की, और उसके बाद से मैंने उसी समय मैंने कैमरा खरीदा और सेम समय मैंने म्यूज़िक भी छोड़ा था, म्यूज़िक और मेडिसिन दोनों छोड़ दी मैंने। मैंने एक फिल्म साइन की थी और काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर थे उनके, मैं आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया बाद में आगे जाके। तो उनकी एक फिल्म थी जिसके सारे गाने मैं कर रहा था, सारे गाने सेलेक्ट हो जाते हैं, 2 साल तक उस पर काम चलता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो गाने शायद वो डायरेक्टर के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, या वो डिसाइडेड कि मुझे लगता है कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर अच्छा हूँ नहीं, मैं म्यूज़िक कंपोजर शायद सिंगर सॉन्ग राइटर ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं अपने लिए अच्छा गाने म्यूज़िक बनाता हूँ, गाने बनाता हूँ, लेकिन किसी सिचुएशन के लिए मैं शायद बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं उस बात को क्वेश्चन करने लगा। और अल्टीमेटली मुझे डायरेक्ट करना था, लिखना था और डायरेक्ट करना था, मेरा वो अल्टीमेट उद्देश्य था। तो मैंने कहा कि जब वो ही अल्टीमेट है तो मैं क्यों ना उस पर ही लगूँ। 2011 से 26 तक, 15 साल तक, 14 साल तक, वो 25 तक मैं कहूँगा, वो यात्रा पूरी मेरी चर्निंग चली है टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, टू राइटिंग, ये वो सब कुछ जो भी है। तो पहली स्क्रिप्ट मैंने 6 साल में लिखी, 6 साल तक एक ही स्क्रिप्ट थी मेरे पास में, दूसरी स्क्रिप्ट मेरे 1.5 साल में अनदर स्क्रिप्ट, फिर साल में फिर हर 2 महीने पे एक स्क्रिप्ट लिखने लगा मैं। तो ऐसा मेरे पास कुछ 53 स्क्रिप्ट प्लस कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं अलग अलग समय पे काम करता रहा हूँ या करना चाहता हूँ भविष्य में।
1: और ये स्क्रिप्ट 15 दिन में लिखी, तो अगली स्क्रिप्ट 10 दिन
0: में। नहीं ऐसा नहीं, डिजिटल माध्यम से निकल गए तो कुछ भी हो सकता है, वो तो डाउनलोड है।
1: यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।

0: गाने के बाद विशाल जी हमारे श्रोताओं को बताइए कि एमबीबीएस, आपने बचपन के उस संसार के बारे में बताया जहाँ माँ की मार थी, डांट थी, जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे आप, तो उस समय टीचर्स की, प्रोफेसर्स की डांट भी तो रही होगी, उनके बारे में भी बताइए, कोई दिलचस्प घटना बताइए
1: तो
0: उनके
1: मेडिकल
0: बारे में।
1: कॉलेज में जो है ना, कुछ होता नहीं, इज्जत नहीं होती है जूनियर की, है ना, मतलब
0: अच्छा।
1: ऐसा हो।

0: कि वो कॉलेज के अंदर एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति होती है पहले साल में। और मुझे क्या था कि मुझे अब वो नया नया कॉलेज में हूँ लेकिन जाना तो बम्बई है,
1: जी
0: तो मैं दोस्तों के साथ में दो तीन दोस्त मिलके बम्बई चले गए। हमने 15 दिन का बंक मार दिया। अब उसमें मेरा दूसरा दोस्त था, वो भी MBBS ही कर रहा था, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, निरंजन पांडे। उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, और वो बहुत ही होमसिक भी था, ये सब चीज़ें थी। हम तीनों दो लोग और मेरा एक लखनऊ का दोस्त, हम सब लोग बम्बई आए कि वहाँ पर जो गाने हैं सॉन्ग्स हैं वो हम पिच करेंगे, ये करेंगे वो
1: अच्छा
0: करेंगे करके 15-17 दिन मैंने वहाँ पे करके वापस गया अपने कॉलेज। तो वहाँ पे बंक मारना अच्छा है। तो वहाँ पे मेरे बहुत अभी तो बहुत बहुत दिल अजीज टीचर हैं, वो रामजी पवार उनका नाम है,
1: जी
0: डॉक्टर रामजी पवार, इनाटॉमी पढ़ाते थे। वो ऐसा टॉल डार्क हैंडसम 6 फीट, और मतलब क्या पर्सनालिटी थी, मतलब हमारे कॉलेज के अमिताभ बच्चन थे वो, सब फैसिनेटेड रहते थे उनसे। लेकिन वो बहुत फ्यूर, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे,
1: अच्छा
0: और वो पकड़ लिया तो वो कुछ भी करेंगे। तो मेरे थोड़े से बाल लंबे हो गए, थोड़े लंबे बालों, मुझे लंबे बाल करने का शौक भी था, बम्बई से आया लंबे बाल के साथ में, और गलती से मैं जो है ना आगे वाली सीट पर बैठ गया।
1: अच्छा
0: अब उन्होंने पहले से नोटिस कर रखा था कि ये लड़का गायब है, या बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया ये। तो उन्होंने बोला, किसी को सवाल किया कल, क्या एनाटॉमी का कुछ तो सवाल था जिसका जवाब मैंने दे नहीं पाया, और वो पता नहीं वो आगे बैठने की वजह से उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने मेरा सर पकड़ा, ऐसा बाल पकड़ और बाल पकड़ के पूरा ऐसा, और कई बार उन्होंने 7 मिनट 10 मिनट का लेक्चर बाल पकड़ के ऐसे
1: अरे
0: ऐसे
1: बरे
0: हिलाते हिलाते किया।
1: बरे
0: तो जो जो इंसल्ट थी, जो जिसके बोलते
1: पीड़ा,
0: हैं
1: मन
0: हाँ,
1: की
0: जो
1: पीड़ा
0: अनबीड़ा की, और
1: रही
0: यार ये क्या कर दिया मैंने, और ये आगे क्यों बैठना था। तो
1: हाँ
0: ये सारी चीज़ें जब हुई तो कहीं ना कहीं उसके बाद से मेरा एक इंटरेस्ट वापस पढ़ाई, क्योंकि अब पढ़ाई की तरफ ध्यान देने, क्योंकि इंसल्ट हो गई है। अभी तक तो आप म्यूजिशियन हो, पोइट हो, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज यू समाउ। मैं ऐसा था कि मैं जब पहुंचा था अपने कॉलेज, तो पहुंचने से पहले लोगों को पता था कि देयर इज दिस गाय जो कि इसका बैंड है लखनऊ में और बहुत अच्छा गाता है, ऑल ऑफ दैट। तो मैं ऐसा छोटे से स्टार की तरह एंट्री हुई थी कॉलेज में, और वो जो धुलाई हुई मेरी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, नहीं तो पहले साल में फेल हो जाता
1: जी,
0: मैं।
1: यहाँ पर पढ़ाई और धुलाई दोनों की बात हो गई। बैंड का जिक्र किया आपने,
0: जी
1: लखनऊ में कौन
0: जी
1: सा बैंड था? म्यूजिक बैंड।
0: म्यूजिक बैंड था अपने, मेरे अपने कंपोज सॉन्ग्स थे। मेरे एक मित्र हैं शिखर श्रीवास्तव, अभी वो गल्फ में चले गए, वहाँ म्यूजिक टीचर हैं, और भी दो दोस्त थे ऐसे, तो हम मिलके जो है ना वी हैड अ बैंड, तो वहाँ पे जाके लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे ओरिजिनल सॉन्ग्स के। सो वी वर इन अ वे लिटिल पॉपुलर ऑल्सो, बट देन मूव टू गोरखपुर। तो गोरखपुर में तो क्या ही होता है, मतलब कॉलेज कल्चरल साल में एक बार होते हैं, उन 3 दिन में अपन स्टार होते हैं, उसके बाद फिर वापस वही जो है जैसे बोलते हैं ना कि रेगुलर डेज ऑफ लाइफ। तो वो 5-6 साल मैंने बहुत म्यूजिक को मिस किया कि मैं सीख नहीं पा रहा था और ये सब कुछ था। लेकिन फिर आके मुंबई आके भी मैंने एक बार, इन बिटवीन 2017 एंड 2020, आई डिड इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, शॉट देम वेल, ऑल ऑफ दैट। तो वो
1: जी,
0: एक इंटरेस्ट जो था उसको मैंने पूरा कर लिया।
1: अगर याद है वो म्यूजिक बैंड का कुछ
0: आई कैन
1: लाइनें,
0: सिंग,
1: कुछ याद है
0: आई
1: तो
0: कैन
1: गा के
0: सिंग, आई कैन
1: सुनाइए।
0: सिंग अ सॉन्ग, या आई
1: जी
0: कैन सिंग कपल ऑफ लाइन्स। एक हवा का हूं झोंका, उड़ता ही फिर रहा हूं, इस गली उस डगर को घूमता फिर रहा हूं, रास्ते ही जिंदगी, क्या है गम क्या है खुशी, कौन जाने यहाँ।
1: क्या बात है,
0: दिस वॉज वन सॉन्ग,
1: बहुत बढ़िया।
0: उसकी उसकी एक एक दो लाइनें बहुत सुंदर लाइनें, वो मैंने लद्दाख में पूरा फिल्माया था उसको।
1: यहाँ जिक्र कविता का भी चला ना,
0: जी
1: और यादों के गलियारों में इस समय सैर कर रहे
0: जी
1: हैं, तो कोई कविता याद है वो जो उन दिनों में लिखी है, कोई खास कविता?
0: एक एक खास कविता है जो मैं अभी मैंने रिसेंटली, एक जयपुरिया स्कूल है लखनऊ में, वहाँ पे बच्चों के सामने भी पढ़ी मैंने, क्योंकि लगभग मेरी उस समय की कविता है। अभी मैं कविताएं लिखता हूँ पर मैं वो थोड़ी, मुझे लगता है कि सिंप्लीफाइड
1: जी
0: जीवन क्वेश्चन अपने आप से हरदम होता है ना, कि ये जीवन है किस लिए,
1: जी जी
0: क्यों जी रहे हैं जीवन, अल्टीमेटली क्यों जी रहे हैं, उसको क्वेश्चन करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक पात हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक पात हूँ, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूँ।
1: क्या बात है।
0: इतना ट्रिवियल है ह्यूमन लाइफ। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक पात हूँ, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूँ, जमी से हूँ उत्पन्न मैं, जमी में जाके घुल गया,
1: क्या बात है, वाह।
0: जमी से हूँ उत्पन्न मैं, जमी में जाके घुल गया, देख तेरा लाल माँ

0: सांझ ढले मिल गया।
1: वाह वाह वाह।
0: ईश्वर माँ है और डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, हूँ धन्य मेरी खाद से जो एक फूल खिल गया।
1: क्या बात है, वाह। तो आपके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू उजागर हो रहे हैं, और तो अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
0: गाना आप सुनाइए रहमान साहब का वंदे मातरम, दैट्स माय वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद विशाल जी, चाय वाली एक कविता
1: जी
0: बड़ी मशहूर हुई है आपकी, तो याद कीजिए और सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं क्या जो सिनेमा में मैंने सीखा है, स्टोरी टेलिंग में जो सीखा है, क्या मैं किसी उसको किसी कविता पे अप्लाई कर सकता हूँ।
0: जी
1: तो चाय को एक सेंट्रल कैरेक्टर बना के, यानी चाय को एक हीरो बना के मैंने एक कविता लिखी।
0: जी
1: इसके अंदर वो सब कुछ है, इसके अंदर विलेन भी है, इसके अंदर महिमा मंडन भी है, इलेवेशन सीन भी है, जो होते हैं ना फिल्मों के जो
0: जी
1: तीन
0: जी
1: थ्री
0: बिल्कुल
1: स्ट्रक्चर होते
0: बिल्कुल।
1: हैं, तीन स्ट्रक्चर भी
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: फिर रेजोल्यूशन भी है।
0: तो क्या तरन्नुम में भी गाते
1: नहीं
0: हैं
1: ऐसे नहीं, ऐसे
0: ऐसे?
1: आप ऐसे
0: हाँ
1: सुनिए।
0: ठीक है सुनाइए।
1: चाय को मना कौन करता है भाई,
0: चाय को मना
1: चाय
0: कौन
1: को
0: करता है भाई?
1: मना कौन करता है भाई, कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक रोचक विमोचक, करंट मारती जगाती हंसाती मूड बनाती, मिलने के बहाने सुझाती,
0: क्या बात है, वाह
1: मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय
0: क्या बात है,
1: होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई।
0: वाह।

0: वाह, बहुत बढ़िया।
1: कत्थई सी, रसीली सी, नशीली सी, अदरक सी, तीखी, गुड़ सी, मीठी, इलायची सी, मोहक, रोचक, विमोचक, करंट मारती, जगाती, हंसाती, मूड बनाती, बातें कराती, मिलने के बहाने सुझाती, मुस्कुराहटें लाती, कड़क
0: क्या बात,
1: रसीली नशीली चाय होश खोल देती है। ऐसे मना कौन करता है भाई। लेखक रसपान कर उपन्यास लिख दें, कवि मीठी जुबान लिख दें, फिल्मकार कहानी कर दें, पात्र सब मुंह जबानी कह दें,
0: क्या बात है,
1: पात्र सब मुंह
0: मुंह
1: जबानी
0: जुबानी कहते।
1: जुबानी कह दें, टपरी पे की कटिंग देती है गुहार, सुगंध छोड़ती है ले आती है बाहर, और कड़वी है कॉफी, यहां से विलिन की एंट्री,
0: कड़वी है कॉफी।
1: और कड़वी है कॉफी और चाय की है अपनी ही मिठास,
0: क्या बात है,
1: और कॉफी बोले अंग्रेजी पर अपनी चाय करती है हिंदी में बात,
0: वाह वाह वाह,
1: थकान मिटा देती है, इसे मना कौन करता है भाई। अब ये हो गया, विलेन खड़ा कर दिया, अब रेजोल्यूशन है भाई, कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है
0: क्या बात है,
1: भाई,
0: वाह,
1: कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है, उसकी अपनी शान होगी, कोई ऊंची दुकान होगी, होंगे एयर कंडीशन में मोका अमेरिकाने की चुस्की के अपने स्वाद, तुम्हारी कॉफी रहे आबाद,
0: क्या बात है, वाह
1: पर अपनी चाय जिंदाबाद जिंदाबाद।
0: वाह वाह,
1: और फिर कांच के कप में मचलती चली आए, और कैसी चमक छोड़ती है हाय, इसे मना कौन करता है भाई,
0: वाह,
1: इसे मना कौन करता है भाई, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क
0: क्या बात है,
1: रसीली।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे हुनर आपके सामने आ रहे हैं आज की इस बातचीत
1: जी
0: में। विशाल जी, एक बार फिर आपकी फिल्म की ओर चलते हैं,
1: जी
0: हनुमान अंश
1: जी
0: की ओर।
1: जी
0: इसमें जो कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा,
1: जी
0: तो ये पात्र कैसे मिले, मतलब कैसे आपने चयन किया कलाकारों का? एक बच्चा है, फिर बड़ा बड़े कलाकार का, सत्य
1: स्वप्न
0: शोभिना
1: सत्य।
0: शोभिना सत्य, कहाँ से मिले ये?
1: तो मैं एक ही करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जिनको आप कलाकार को देख रहे हैं, जिनका नाम है चंदन के आनंद, जिन्होंने डॉक्टर भोसले का रोल प्ले किया है,
0: जी,
1: वो मेरे मित्र थे, एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे, पर बहुत समय के बाद में मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था, नॉट भोसलेस, मुझे चाहिए था नासिर अली के रोल के लिए, तो मैंने उनको नासिर अली के रोल के लिए चयनित किया था। एक राजीव मिश्रा जी हैं, उनको मैंने सुखी राम के लिए चूज़ किया था, और हुआ सेट पे ऐसा कि चूंकि मुझे डॉक्टर भोसले, जिनको मैं कास्ट करना चाह रहा था, कोई बड़े एक्टर थे, वो जब उनका नहीं हो पाया आखिरी तक, तो मैंने फिर इनको नासिर अली की जगह डॉक्टर भोसले प्रपोज़ किया, और जिन जो सुखी राम प्ले कर रहे थे उनको नासिर अली प्रपोज किया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो जाएगा, और वो ऐसे फिट हुए दोनों के दोनों, आई हैड एन आइडिया कि ये होगा,
0: जी,
1: और मेरे दिमाग में था कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। तो चयन तो किसी और कैरेक्टर के लिए, पांच कैरेक्टर्स उस दो सीन के अंदर थे जिनको अपग्रेड किया मैंने, तो जो नीचे वाले रोल पे था ऊपर गया, उसके ऊपर वाले ऊपर पे गया, ऐसे ऐसे करके सब
0: जी
1: सबका ऐसा हो गया।
0: जी
1: देन जो बच्चा है विहान शेडगे, जिसने लक्ष्मी नारायण जी का रोल प्ले किया है, बचपन का लक्ष्मी नारायण का रोल प्ले किया है, उसके साथ मैंने एक ऐड किया था पिछले साल, उसके पहले
0: जी
1: साल, और वो और जो पार्वती जिन्होंने प्ले किया है नेहा परांजपे, उन दोनों दोनों मराठी हैं, और वो मैंने
0: यहाँ
1: मरा, हाँ
0: नेहा परांजपे विविध भारती में कैजुअल अनाउंसर थी,
1: रही हैं, अच्छा
0: रही
1: क्या बात है,
0: हैं,
1: क्या बात है,
0: तो अभी भी कैजुअल आकाशवाणी में
1: आकाशवाणी
0: रही हैं।
1: करती हैं।
0: जी जी
1: तो
0: अभी
1: नेहा और इन दोनों ने, मैंने एक मराठी ऐड किया था, और वो इतना पॉपुलर हुआ ऐड, वो मैं मराठी मैं बोल नहीं सकता, समझता हूँ, मैंने वो महाराष्ट्र मराठी ऐड था, और वो इतना पॉपुलर हुआ, ये दोनों ने इतना अच्छा उसमें एक्टिंग की थी, और इतने सिंगल टेक एक्टर्स थे लोग, दोनों के दोनों, एक पुणे से आया था और एक यहाँ से आया था, बट इट्स सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन दैट आई ऑलवेज थॉट कि मैं इनको किसी दिन कास्ट करूंगा। तो ये दो कैरेक्टर वहाँ से आए। फिर जिन्होंने राम बेटी श्रीमती राम बेटी शर्मा जी का, मतलब महाराज जी की पत्नी का रोल प्ले किया है, वो उनको मैंने चयनित किया, उनके ऑडिशंस में वो चयनित हुई। जो चोर का जिसने रोल किया है अभिषेक जो है ना, वो चित्रकूट से ही कास्ट किया उसको मैंने, उसने
0: जी
1: पहली बार कैमरा फेस किया है।
0: ओहो,
1: ज़्यादातर जो कोतवाली वाले सीन के सारे एक्टर्स जो है ना, वो वहीं से लोकली चयनित किए गए हैं। जो ट्रेन सिक्वेंस में जो इंग्लिश एक्टर्स हैं वो सारे रशियंस हैं, और उसमें तीन जो अंग्रेज बैठे हैं वो तीनों के तीनों एक एल्बिनो हैं, और वहीं के लोकल हलवाई वलवाई पकड़ के लेके आके हमने उनको उनसे
0: अच्छा,
1: एक्टिंग कराई है,
0: ओ
1: जो पता पता नहीं चलता है आपको। तो बहुत कास्टिंग के लेवल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। शोभिना सत्य जो है ना, वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मेरे लीड कास्ट की तबीयत खराब हो जाती है, और वो नीम करोली बाबा जैसे महाराज जी से दिखता था वो। मैं जब वो पहले दिन मेरे ऑफिस आया था, तो मैं एग्जैक्टली सीधे इमीडिएटली मैंने बोला, अरे तो महाराज जी हैं, और मैं उस पर गुस्सा था कि वो 3 दिन बाद आए, लेट आया था वो। सो आई वॉज एंग्री एट हिम, कह यार तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तुम 3 दिन लेट आ रहे हो। तो मैं गया लेकिन भूल गया, मैं तो बोला अरे महाराज जी हैं, बट मेरे लीड एक्टर की तबीयत खराब हो जाती है ऑन सेट, तो रिप्लेसमेंट के तौर पर मैं इसको टेस्ट करता हूँ मंदाकिनी रिवर पे, तुलसी घाट पे, चित्रकूट के तुलसी घाट पे, जहाँ पे तुलसी जी ने बहुत बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं, उसी घाट पे मैं उसका 5 घंटे तक टेस्ट करता हूँ, और फिर वो सुर पकड़ लेता है। जब वो सुर पकड़ लेता है, तो मेरी एक आदत है, आदत नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है,

0: मैं एक्टर्स को बहुत ओवर गाइड नहीं करता हूँ, मैं उनको ओवर इन्फॉर्म भी नहीं करता, मैं सिर्फ उनके उनके कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ।
1: अच्छा
0: मेरी मेरी टेक्निक ही है कि मैं सारे एक्टर्स को, चाहे नया हो पुराना हो, उसको उसके
1: जी
0: कैरेक्टर के बारे में कंसिस्टेंटली बताता रहता हूँ। ह्यूमन माइंड इतना रिसेप्टिव होता है और इतना समझदार है कि जैसे ही वो अपने कैरेक्टर को समझ पाएगा वो बिहेव करने लगेगा वैसा।
1: बिल्कुल
0: हम अपने बच्चे के सामने पिता की तरह बिहेव करते हैं, वही हम पत्नी आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, और मैं
1: बिल्कुल
0: माता आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, दोस्त आता है तो अरे यार करके बात शुरू कर देता हूँ। हम अपने जीवन में जैसे ही हम अपने रोल को समझ पाते हैं हम इमिडिएटली वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतने सिंपल प्रोसेस है। मैं किसी भी, जितने भी आपने एक्टर्स देख रहे हैं उसमें कुछ लोग बहुत तगड़े एक्टर्स हैं, कुछ लोग बहुत वीक एक्टर्स भी हैं, पर उनका एक ही मेरा तरीका है। मैं सब किसी को कैमरे के सामने डांटता नहीं हूँ। अगर मुझे किसी एक्टर से बात करनी है मैं उसको साइड में ले जाऊंगा और फिर से वही बात समझाऊंगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले से। तो इंटरेक्शन विद एक्टर्स, तो यही शोभनम के साथ में भी हुआ कि मैंने उसको ओवर इन्फॉर्म नहीं किया। वंस ही कॉट द कैरेक्टर, जब उसने कैरेक्टर पकड़ लिया, डायलॉग्स उसको याद है, हिंदी उसकी अच्छी है, तो मैं क्यों उसको ओवर इंस्ट्रक्ट करूँ। और वो फिर बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गई कि हमने 22 दिन में रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने 2.5 घंटे की फिल्म शूट करी है। जी
1: और हिट हुई तो अब यहाँ एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से हनुमान अंश फिल्म का ही एक गाना प्ले करें जिसका टाइटल है सासा हाले हासा चाले।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: विशाल जी, संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? जब आपका संघर्ष चल रहा था, उस समय कौन सी प्रेरणा आपको आगे बढ़ा रही थी?
1: आई थिंक वो एक आपकी जो क्या होता है कि कभी भी अपने जीवन को यदि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ

0: में एक एक एक नई राह पे उनको एक नए नया इंटरेस्टिंग कोई पर्सपेक्टिव दो, ये ड्राइव करता है मुझे। तो वो इसलिए मुझे कभी कभी हुआ नहीं। और मैं बहुत ही, रघु जी जानते हैं बात, कि मैं बहुत मॉडेस्ट लाइफ जीता हूँ, कोई किसी तरह का व्यसन नहीं है, और पार्टियाँ वार्टियाँ नहीं करता हूँ किसी तरह, कोई खर्चा अदरवाइज है नहीं। जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है वो, खाने पीना और जो किराए हैं, यही मेरे खर्चे हैं। इसके ऊपर किताबें खरीदना और फिल्में देखना, ये दूसरे खर्चे हैं, जो एक्चुअली जिसे बोलते हैं कि जो लग्जरी है। या कभी टेंटिंग वेंटिंग करने के लिए, उस तरह उसमें बहुत मुझे,
1: जी
0: मेरा
1: जी
0: मन करता है कि मैं बाहर जाके मतलब टेंटिंग करूं और एकांत में जाके। तो ये मेरे शौक हैं, जिस वजह से मैंने काफ़ी अपने जीवन को बहुत ही मॉडरेट लाइफ में, मिनिमल और मॉडरेट लाइफ की तरह से जीता हूँ। तो बहुत आवश्यकताएं जब नहीं होती हैं तो आप किसी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आपका जीवन चलता रहता है। जीवन जब चलता नहीं है, जब उसमें कांस्टेंट स्ट्रगल होती रहती है और आप किल्लत में हैं, इसमें हैं, उसमें, फिर आप उल्टी सीधी संगत में जाते हैं, फिर आप नए नए रास्ते निकालते हैं जो कि जो सही रास्ते नहीं हैं। तो इनकी वजह से मुझे खास कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और मैं बहुत, वो जो मेरे अंदर है वो बहुत वोकल हूँ उसको लेके मैं, और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ। तो मुझे इस परिवेश में रहते हुए भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ या मुझे सक्सेस पानी है। फिल्म बनानी है, ये एक डेफिनेटली एक बात थी जो कि हरदम कचोटती थी कि यार सब कुछ कर लिया, फिल्म ही बन रही है अपनी।
1: जी विशाल जी, रघु का जिक्र आपने किया, रघुविंदर सिंह,
0: जी
1: और फिल्म में इनका नाम भी बाकायदा हम देखते हैं,
0: जी
1: तो इनके बारे में बताइए, इनकी फिल्म में क्या भूमिका है और क्या योगदान रहा है आपकी इस फिल्म मेकिंग में?
0: मुझे लगता है कि जीवन में मतलब काफ़ी मेरे मित्रों के नाम फिल्में हैं, और जिसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री के एक जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड्स में से, मतलब मैं कहूँगा रघु ही एक अकेले फ्रेंड है जो मेरे घर में मतलब घर की तरह से ही रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास घर नहीं था, ये मेरे घर पे आके टिका करते थे ना, अपना
1: बिल्कुल
0: जॉब करके आ गए तो अपना जागरण में काम करते थे, फिर ये फिल्म फेयर चले गए। तो इनके साथ में एक जर्नी कंसिस्टेंटली जो ना हमारे दोनों के बीच में एक एक वो भी है कि हम एक दूसरे से सलाह भी बहुत लेते हैं, तो मेरे सलाहकार भी हैं बहुत समय से, और मैं भी इनका सलाहकार हूँ, ऐसा नहीं कि मैं
1: जी
0: ये
1: जी
0: सिर्फ सलाह लेते हैं। फिर मैं
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर हूँ इनका, तो
1: जी
0: जिनकी तबीयत जब जब खराब होती थी तो जो होता था तो मैं इसका इलाज भी करता, तो मेरे घर पे आके ही फिर मैं मेरा वो इसको हॉस्पिटल बना के उसमें इलाज भी कराते थे।
1: जी
0: लेकिन हमने साथ में काम, शायद मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ काम एज सच किया, अब हम साथ में काम करेंगे भविष्य
1: जी
0: में। लेकिन रघु की जर्नी, रघु का जो जो उसकी बेस्ट उसकी क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं, बहुत सारा बहुत सीखता हूँ उससे कि कैसे, हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, हाउ टू द पूरी फिल्म जो इंडस्ट्री है वो पीपल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है। इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज, एंड ही नोज़ इट सो सो वेल, एंड बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत क्लियर थाट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ थाट्स है कि ये ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा, उसकी क्लैरिटी थॉट है। और हिंदी के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे हैं, हमें हिंदी भी बहुत जोड़ती है आपस में।
1: जी
0: मतलब मैं भी अपने आप को हिंदी नाज़ी मान, नाज़ी तो नहीं बोलूँगा मैं, मुझे लगता है फ्लैग बेयर हूँ मैं, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही कहना चाहिए इसको, मैं
1: जी
0: बॉलीवुड नहीं कहना पसंद करता हूँ। मेरे ट्विटर वगैरह जहाँ भी जाएंगे आपको लिखे दिखा मिलेगा फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, नॉट बॉलीवुड। तो वो हमारा
1: वो इलाहाबाद के, आप लखनऊ के,
0: जी
1: ये भी एक रिश्ता है तो,
0: मिले
1: और
0: तो ही
1: उसी,
0: मुंबई में थे, मेरे पेशेंट
1: हाँ
0: थे जब मैं क्लिनिक
1: अच्छा
0: चलाता था, तो ये एक दिन एक मित्र
1: जी,
0: मनीष
1: अभी तो आपके
0: मतलब
1: बहुत सारे पेशेंट हो गए फिल्म के माध्यम से, जो मुरीद हो गए हैं कि आपसे मिलने के लिए इच्छुक हैं, एक लंबी तादाद, अमूमन लोग एक्टर एक्ट्रेसेस के फ़ैन होते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एक डायरेक्टर और राइटर के इतने बड़े फ़ैन फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभकामनाएं और बधाई
0: धन्यवाद
1: के पात्र हैं, आप बहुत
0: धन्यवाद,
1: सारी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
1: बधाइयाँ।
0: धन्यवाद।
1: यहाँ हमें, हमारे श्रोताओं को बताइए कि मुंबई में रहते हुए आप लखनऊ रहे और बुंदेलखंड का जीवन जिया है, तो यहाँ उन शहरों को क्या चीज़ मिस करते हैं, कौन सी बात आप मिस करते हैं?
0: एक तो वो शांति और जो बेफिक्री होती है ना, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ जाते से ही आपको एक एक शांत वो महसूस होता है, जैसे कि जीवन चल रहा है
1: जी
0: उसी पेस पे चल रहा है प्रॉब्ली, जैसे मेरा अंतरंग, मेरा मन चल रहा है, मेरा शरीर चल रहा है। यहाँ पे शरीर और वो सब पीछे रहता है और आप हरदम कॉन्स्टेंटली उसको कोपअप करने के लिए कॉफ़ियाँ, चाय, दुनिया भर के का इस्तेमाल करते हैं इसलिए, ताकि आप जो है ना उसके साथ कोपअप कर पाओ। लेकिन मुंबई जो है मुझे बहुत सुंदर शहर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो यहाँ लोगों के बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता प्रॉब्लम, तो एक बहुत सिक्योर्ड शहर लगता है,
1: जी बिल्कुल, बहुत
0: ऐसा
1: अनुशासित
0: अनुशासित है,
1: डिसिप्लिन।
0: लोगों से आपको भय नहीं होता, लोगों ऐसा लगता नहीं कि आपको ये व्यक्ति कुछ बात मांगने पूछने जाएंगे तो वो आदमी मना कर देगा, बहुत सौहार्द रहता है, लोग बहुत हेल्पिंग है। और जिस तरह से महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित शहर है, जिस तरह की भाषा का लोग प्रयोग करते हैं,

0: ऑटो वाला कभी आपको मीटर उल्टा नहीं मारता है, ऐसी हजारों खूबियां हैं शहर के अंदर
1: जी
0: जो वहां पे आपको टेंशन होती है, वहां पे उलझन होती है,
1: जी
0: जिस तरह से लोग जो है ना हर चीज को मतलब ग्रैब करने के लिए दे कॉम्पीट एंड बहुत ज्यादा, तो
1: जी
0: मुंबई में उतना वो मुझे लगता है इस मामले में बहुत रिलैक्स है। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहोगे कि सुबह सुबह कहाँ की अच्छी होती है और शाम कहाँ की अच्छी होती है, तो मैं लखनऊ से ज्यादा अच्छी कहीं नहीं होती है।
1: बिल्कुल, बनारस की सुबह और
0: लखनऊ की शाम, अवध की शाम,
1: अवध की शाम।
0: जी
1: जी विशाल जी, एक आखिरी बात जो पहले हमें जाननी चाहिए थी, मेरे जहन में भी है और वो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, कैंची धाम जहाँ पर आप रहे हैं, कैची धाम की पहाड़ियाँ तो किस तरह से आपको मोहित करती रहीं, और फिल्मांकन भी उन्हीं इलाकों में किया है, तो कुछ शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में।
0: तो आप चूंकि आप देख के आपको लग रहा है कि वो उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं, वो सब चित्रकूट है,
1: ओहो
0: और
1: चित्रकूट,
0: चित्रकूट है,
1: ओहो
0: तो जो भी आप उसमें बर्फ की पहाड़ियां देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब हमने VFX पे क्रिएट किया है।
1: चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश चित्रकूट,
0: उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जो है ना,
1: वाह क्या बात है, और सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो उत्तराखंड है और कैची धाम
0: कैची
1: है,
0: धाम
1: क्योंकि
0: है,
1: आपने कई बार
0: धाम
1: अपने
0: भी दिखाया है,
1: इंटरव्यू
0: जो भी
1: जिक्र
0: आपने
1: भी
0: दिखाया है,
1: किया
0: वो अगमर्षण
1: तो
0: कुंड है जहाँ पे यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था,
1: हाँ।
0: वो धारकुंडी नाम का एक आश्रम है जो चित्रकूट के डीप इन जंगल्स है, जहाँ पे तेंदुए और
1: जी जी
0: दुनिया भर
1: बिल्कुल
0: के वो सब हमारे यूनिट ने भी देख लिए, तो मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, और अजगर वजगर सब कुछ था वहाँ पे,
1: घने जंगल हैं
0: घने
1: उस।
0: जंगल हैं। तो हमने वहाँ जाके शूट किया उसको, अगमर्षण कुंड में, धारकुंडी आश्रम था वहाँ पे शूट करना। इसके अलावा चित्रकूट में जितनी भी आप लोकेशन देख रहे हैं, नदियाँ देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, सब वो हमने मैच कर दिए। तो फिल्म मेकिंग जो है ना, वो बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मैचिंग, इट्स ऑल अबाउट मेक बिलीव, इट्स ऑल अबाउट चीटिंग टू, जिसे बोलते हैं चीट सीन करना। रियल लोकेशन है वो, लेकिन किसी और जगह की हैं, पर आपको वो ऐसा महसूस कराती हैं भावनात्मक लेवल पे, आपको ऐसे वहाँ पहुँच ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो जो भी आप एलिमेंटली जो चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो वहाँ का,
1: जी
0: वो आप कर लेते हो। इस तरह से हमने किसी तरह से चित्रकूट में ही,
1: जी
0: और चित्रकूट नहीं होता तो शायद ही फिल्म उस बजट में जिसमें उन्होंने बनाई बन नहीं पाती।
1: बिल्कुल, अब चलते चलते हमारे जो नए श्रोता हैं, युवा श्रोता हैं, उन्हें कुछ दो लाइन में संदेश दे सकते हैं तो दीजिए।
0: तो मुझे लगता है कि हम भारतीय जो जो संस्कृति है, जो संत परंपरा है, जिसने धागे की तरह से पूरे पिछले 5-7 हज़ार साल में सारा टेक्स्ट, सारा लिटरेचर और समाज को बांध के रखा है। संत समाज से बाहर निकल जाता है, ना उसका जाति होती है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है, संप्रदाय होते हैं पर वो संप्रदाय, फिल्म के अंदर आपने उसमें देखा भी वो सीन,
1: बिल्कुल
0: विरक्ति उसको हो जाती है, वो ना नाम से अटैचमेंट रखता है, ना किसी जेंडर से अटैचमेंट रखता है, वो पूरी तरह से ईश्वर का हो जाता है। जब आदमी अपने आप को बिल्कुल बाहर रख के थर्ड पर्सपेक्टिव से, दृष्टा भाव से देखता है, एक संत दृष्टा भाव से ही दुनिया को देखता है, तो सारे जो मैल होते हैं ना, वो सारे मैल आपको दिखने बंद हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीन चीज़ें जो नीम करौली बाबा भी बोलते थे, लव ऑल, सभी को प्रेम करो, फीड ऑल, भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर खिलाओ, सबसे पहले खाना पूछो आदमी को, और तीसरा राम राम लिखो, ईश्वर को हरदम याद करते रहो। ये तीन चीज़ें वो सिखा के गए हैं। मुझे लगता है कि जो जेंजी है या जो नई जनरेशन है, वो भी ऐसा ही कुछ सोचती है, जस्ट दैट उनको अलाइन करने की आवश्यकता है। वो भी यही बातें कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि ये एक्चुअली कोर है, और
1: जी
0: यही तो, इसलिए नीम करौली बाबा की जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जेंजी और जैन एल्फा को सबसे ज़्यादा प्रभावित, जो मैं करना चाहता भी था, करेगी।
1: बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, क्या एक दो लाइन गुनगुनाएंगे?
0: जी अब ना देर लगाओ देर, अब कृपा करो महादेव, अब ना देर लगाओ देर, बस कृपा करो महादेव, ये दुनिया एक छलावा, तू साचा ठौर है बाबा, के आहवा के जावा, के
1: क्या बात,
0: आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, हर हर महादेव।
1: हर
0: आस्किंग,
1: महादेव,
0: इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ दी रेयरेस्ट सॉन्ग्स जो मुक्ति चाह रहा है पर वो हंस के मांग रहा है, इतने ज्यादा फन भाव में, इतने अच्छे, इतने अच्छे सुंदर भाव में, हंसते हंसते बोल रहा है कि आवागमन मिटा दो, बोले शंकर
1: जी। जी विशाल जी, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी बातें यादें साझा की, बड़ी दिलचस्प लगी हमें, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी लगेंगी हमें उम्मीद है। आपका तहे दिल से शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का।

0: यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, मुझे लग रहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, मैं 1960s में कहीं बैठा हूँ, ऐसा फीलिंग आ रही है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, तकनीकी सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
5: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
6: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
7: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
8: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
9: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
10: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर
11: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
12: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
13: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
12: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
13: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
12: उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है।
13: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं।

0: के लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
0: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। और पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। जन्म से उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी, करीब करीब 27 लाख दिव्यांगजन इस पेंशन के कार्यक्रम में लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री का संदेश संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने पढ़कर सुनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को ₹5,000 की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनते हैं कुछ संदेश।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
2: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम
4: है? ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
3: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
4: है ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
3: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
5: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
6: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
7: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
8: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
9: आपके 4800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
10: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
11: बस यही पूछो why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक why आपको फ्रॉड से बचाए।
12: हमेशा पूछो WHY, why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
11: आपका साइबर रक्षक।

इसी शिव भजन के साथ थे। गैर फिल्मी भजनों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हो चुके हैं और ये समय है युवाओं के कार्यक्रम युवा मंच का।

युवा मंच सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में। जी दोस्तों, सुहानी सी इस शाम के साथ लेकर आ पहुंचे हैं कार्यक्रम वहीं खास। जी हाँ श्रोताओं, अब समय है दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा सा ठहरने का, खुद के लिए कुछ पल का वक्त निकालने का, और हाँ, दिल से गीत संगीत के साथ जुड़ने का। और बात करें सुहानी सी इस शाम की, तो सूरज ढल रहा है, आसमान पर शाम के रंग सज रहे हैं और हमारा ये कार्यक्रम भी सज चुका है दोस्तों, आज भी कुछ जानकारियों के साथ और मधुर मीठी नई पुरानी गीत संगीत की उन सुहानी

के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शाम का ये खूबसूरत सफर कार्यक्रम युवा मंच। जी हाँ, और कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सीमा, आपकी हम सफर। युवा दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बात होती है स्पोर्ट्स बीट्स की, क्योंकि आज है बुधवार। और जी हाँ, खेलों की दुनिया जहाँ जोश है, जुनून है और है जीत का जज्बा। खेल सिर्फ मैदान में जीतने का नाम नहीं है, बल्कि अनुशासन, मेहनत, टीम भावना और हार से सीखकर फिर से आगे बढ़ने का नाम है। तो तैयार हो जाइए देश दुनिया की उपलब्धियों और उन खबरों से रूबरू होने के लिए जो आप सब युवाओं के उत्साह को और भी अधिक बढ़ा देंगे। लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं।

0: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
1: इसलिए रूमर्स पर नहीं फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
2: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार, सुबह और शाम डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीज पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
5: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0 डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
6: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
7: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। कार्यक्रम में आज बात हो रही है स्पोर्ट्स बीट्स की, तो चलिए अब जान लेते हैं खबरें खेल जगत की जिन पर इस सप्ताह सबकी नज़र रही। बात करें क्रिकेट की तो भारत के लिए एशियाई खेलों के बाद अब न्यूजीलैंड दौरा चर्चा में है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अक्टूबर से T20 वनडे और टेस्ट मुकाबलों की सीरीज प्रस्तावित है और न्यूजीलैंड में आगामी वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम में उन्होंने कई दमदार खिलाड़ियों को शामिल किया है, तो भारतीय टीम भी पूरी तरह से रेडी है। और बात करें हॉकी की तो भारत ने आगामी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 के लिए पुरुष हॉकी टीम घोषित कर दी है। हरमनप्रीत सिंह टीम की कप्तानी करेंगे और अनुभवी गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक की वापसी हुई है। ये टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब में होगा। बात करें बैडमिंटन की तो भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन इस सप्ताह सुर्खियों में रहे। 13 अक्टूबर यानी पिछले कल की रिपोर्ट के अनुसार वे प्रतियोगिता के पहले दौर में बाहर हो गए हैं। कोई बात नहीं, हार जीत चलती ही रहती है। और बात करें भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु की तो महिला एकल के दौर में भी जर्मनी का सामना कर रही हैं। वहीं भारत की तन्वी शर्मा भी प्रतियोगिता में चुनौती पेश कर रही है। तो खेल जगत की खूब सारी खबरों के साथ आज हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में और युवाओं से कहना चाहेंगे कि अभी और भी हम खेल से जुड़ी आपसे जानकारियां साझा करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर कार्यक्रम का यही एक लक्ष्य एक उद्देश्य रहता है कि आप सभी युवा इन सारे खिलाड़ियों से प्रेरणा लें और जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका क्षेत्र है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो या जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो, वहाँ आपने अपना बेस्ट देना है। हार और जीत तो चलती ही रहती है। तो कार्यक्रम में बातें और भी होंगी, लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना। और युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। समय 5:40 और 17 सेकेंड बात हो रही है आज स्पोर्ट्स बीट्स की। तो आपको बता दें, भारत के उदयवीर सिंधु ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड कप राइफल एंड पिस्टल में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और हाँ, 2026 एशियन गेम्स में भारत में कुल 85 पदक, जिसमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीतने के बाद चौथा स्थान तो हासिल कर लिया है। इस प्रदर्शन की समीक्षा के लिए खेल मंत्रालय ने पिछले कल राष्ट्रीय खेल महासंघ की बैठक की। और पैरा स्पोर्ट्स भी थोड़ी सी हम इस पर नज़र मार लेते हैं, रख लेते हैं। तो आगामी एशियन पैरा गेम्स के लिए भारत ने 166 खिलाड़ियों का दल जो है वो मंजूर कर दिया है। प्रतियोगिता 18 अक्टूबर से जापान में शुरू होगी और भारत इसमें 10 खेलों में हिस्सा लेगा। तो खेल, जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में इसे अपनाना। और देखिए, खेल का मैदान हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाता, बल्कि अनुशासन, धैर्य, टीम भावना और हार के बाद फिर से उठना भी सिखाता है। और सच कहा है किसी ने कि चाहे खेल का मैदान हो या

फिर हमारी जिंदगी, असली जीत तो कोशिश करते रहने में ही है। तो युवा साथियों, आपने भी कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अब फिर से सुन लेते हैं एक और म्यूजिकल नंबर।

जीतकर इतिहास रचा और इसी स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। टेबल टेनिस की बात करते हैं तो पंचकूला में दूसरे नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंकुर भट्टाचार्य और दिया चित्ते ने पुरुष और महिला एकल खिताब जीते। और बॉक्सिंग की भी बात कर ही लेते हैं तो भारतीय बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को और प्रेरित करने के लिए SAI और इंडियन ऑयल ने 2 वर्षों में 40 करोड़ के सहयोग का समझौता किया है। तो खेल जगत भाई बहुत ही रोचक है ये क्षेत्र और यहाँ मैदान में खिलाड़ियों का संघर्ष तो हमें दिखाई देता ही है, साथ ही साथ उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत, अनुशासन और हाँ निरंतर प्रयास भी उनके दिखाई देते हैं उनके प्रदर्शन में। जीत हो या हार हो, हर मुकाबला उन्हें बेहतर बनने का मौका देता है और वो और बेहतर बनकर बखूबी उभरते भी हैं।

जी, आप सुन रहे हैं युवा मंच, और चलते चलते कुछ और जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो युवा बल्लेबाज विहान मल्होत्रा ने अपने डेब्यू मैच में शतक लगाकर शानदार शुरुआत की। और हॉकी की हमने पहले भी बात की तो आगामी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी भारतीय खिलाड़ियों के लिए, भारतीय हॉकी के लिए बहुत ही खास होगी, क्योंकि 17 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का बड़ा आयोजन हो रहा है। साथ ही कुछ अनुभवी खिलाड़ियों के लिए ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो सकता है। तो ये तो थी खेल खबरों से जुड़ी जानकारियां, और चलते चलते एक और प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

तो युवा साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले किसी कार्यक्रम में कुछ नई बातों, कुछ नई जानकारियों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, आगे बढ़ते रहिए। बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह और इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। युवा साथियों नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया। कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा रसायनों का संतुलित उपयोग। 7:10 सुनिएगा किसान व बागबान भाई बहनों का कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: आज की बातचीत का विषय रहेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। रात्रि 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में सुनिएगा गीतकार निदा फाजली के लिखे कुछ गीत। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चर्चा का विषय रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रूपक। 10:30 पर पुराने गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9 और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुहानी, जिसमें सुविचार के साथ इतिहास की जानकारी और ताजा तरीन समाचारों की भी होगी बात। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और कार्यक्रम की रूपरेखा का मैं बस इतना ही। अब आकाशवाणी शिमला से कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज स्पीति घाटी के काजा में ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र व रोंगटोंग में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने छिदांग तंगती से खर तेलिंग और तंजित से हिक्किम तक की सड़कों के उन्नयन कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्पीति घाटी में स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर सड़क संपर्क को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये पहल स्थानीय लोगों के जीवन को अधिक सुगम बनाएगी और पर्यटन, आजीविका व आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के नए अवसर भी सृजित करेंगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे को लेकर चिंता जताई है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में आज राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों को कचरे के कारण प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित होती है और इससे बाहर से आने वाले लोगों के बीच भी गलत संदेश जाता है। उन्होंने प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक भागीदारी पर बल देते हुए कहा कि स्वच्छता से ही प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले।
1: हम अपने घर को जैसे साफ करते हैं, वैसे ही हिमाचल में किसी प्रकार का कचरा हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको खराब करता है। बाहर से जो लोग आते हैं उनमें गलत मैसेज आता है। पर्यटन तभी बढ़ेगा जब यहाँ उनको साफ सुथरा वातावरण मिलेगा। मुझे लगता है कि हम सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इससे अपना हिमाचल का मैं नारा देता हूँ, इसको समझ करके अपना काम करें।
0: राज्य सरकार ने जन सुविधा व प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस पुनर्गठन में प्रशासनिक इकाइयों का गठन, मौजूदा इकाइयों का विलय और उनका विभाजन शामिल है। आयोग की अध्यक्षता प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी करेंगे और इसका मुख्यालय शिमला में होगा। आयोग द्वारा प्रदेश में जिलों, उपमंडल

0: तहसीलों, उप तहसीलों, विकासखंडों और अन्य विभागीय मंडलों की मौजूदा संरचना की समीक्षा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जून 2027 तक करीब 900 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। भटियात क्षेत्र की अवाहां पंचायत में नवनिर्मित उठाऊ पेयजल योजना के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। इससे क्षेत्र के अवाहां, दरमन और पुरखेड़ी सहित करीब एक दर्जन गांव के लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तय समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे आज नाहन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत शिमला संसदीय क्षेत्र की 294 सड़कों को मंजूरी दी गई है। सुरेश कश्यप ने जल जीवन मिशन के तहत लंबित कार्यों को वर्ष 2027 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए।
1: हिमाचल प्रदेश को बहुत भारी राशि पीएमजीएसवाई 3 में, पीएमजीएसवाई 4 में मिली है और मेरे संसदीय क्षेत्र की 294 रोड्स पीएमजीएसवाई 4 के बैच 1 में आई है और जिला सिरमौर की 11 सड़कें उसमें हैं। पीएमजीएसवाई 3 में 9 सड़कें आई थी। इसके अलावा पीएमजीएसवाई 1 से लेकर और पीएमजीएसवाई 4 तक सभी जितने भी परियोजनाएं समर्पित हुई हमने उनका रिव्यू किया है। 31 मार्च 2027 तक हम सभी स्कीमों को पूर्ण कर लेंगे और सुचारू रूप से हमारी स्कीमें चलने लगेंगे।
0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नाहन में सेवा सेतु अभियान के तहत जागरूकता व पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के फायदे और रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। बिजली बोर्ड की सहायक अभियंता कोमल शर्मा ने बताया कि योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बैंक के माध्यम से 5.7% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने की सुविधा भी दी जा रही है।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए खर्चा 50 से 60 हजार पर किलोवाट का है और उसमें सरकार 33 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसमें घरेलू उपभोक्ता अपनी कंजप्शन के अनुसार 1 किलोवाट, 2 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक जितनी भी कंजप्शन है उसके अनुसार अपने घर में सोलर रूफटॉप के प्लांट लगवा सकते हैं।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सिलसिला फिल्म के इस गीत के साथ।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने सुना सिलसिला फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वारिस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुरमई सांझ अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां सुना करदे सारे ही किसान कने बागवान साथियां जो मास्टर निधि दो हाथ जोड़ी कने राम राम कने किसान साथियों संजय दी वेला दिखा टियाले पर मेरी सोगी मेरा साथ देना आए हो हरिया जी तो हरिया जी तुहांजो भी मेरी राम राम
1: मास्टर जी तुहांजो भी दोनों हाथ जोड़ी के राम राम कने आंदे सारिया किसान भाई बहन जो भी राम राम
0: जी
1: कने देखा आज फिरी असें आई गिरे एक बारी फिरी अपना कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां ले करी
0: जी
1: ता इस विच आज भी असा नई नई जानकारियां देनी और सौगी जे ऐसे लोक गीतां ने मनोरंजन भी अपने स्रोतियां दा करना
0: जी ता सब ते पहले हरिया जी दिखा आज कर लग्यो माता रानी दे नवरात्रे तो साढ़े सारे किसान कने बागवान साथियां जो दिखा इन्हां नवरात्रियां दियां बड़ियां बड़ियां शुभकामना कने दिखा अजकल जेड़े साढ़े

0: शक्तिपीठ है, चाहे से ज्वाला जी हुई है, चाहे से चामुंडा माता का मंदिर हुई है, या ब्रजेश्वरी धाम, नैना देवी वगैरह, चिंतपुर्नी, ते इत्थों दिखा दूरे दूरे ते लोग जड़े हैं सह मत्था टेकना ओवा दे, कने अपनी दरबार च हाजरी जड़ी है सह लगा दे, कने हर कोई जड़ी है सह अपनी एक तमन्ना ले के माता वाल जाता, कने जड़ा सह बड़ी खुशी खुशी है जड़ा सह मत्था टेकता, कने अपने घरे जो वापस हुंदा
1: जी
0: जी।
1: तो देखा मास्टर जी, बिल्कुल नवरात्रियों के सारे किसान साथियों जो भी एक नहारे सारे स्रोतियों जो बड़ी बड़ी बधाइयां।
0: जी
1: और आज देखा कार्यक्रम की शुरुआत भी असा करनी एक माता दी भेंटा सौगी।
0: जी तो ओह सुन दे एक प्यारी जी माता दी भेंट, कने कने कने जड़ा ऐसे हाँ संजय दे बेटे जड़ी ऐसे माता दे दरबार च अपनी हाजरी भी जड़ी ऐसे लगाई लैनी
1: जी।

0: चाहे जवाना तक देखी ले या किसी जो भी देखी ले तो हर त्रिए मन जो मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी जरूर है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, तो इन्हों का अगर अहाँ सही तरीके ने कने ठीक तरीके ने इस्तेमाल करगे तो अहाँ जड़ा सा इन्ह गलत प्रभावों से जड़ा सा बची जाना है। कने जालू भी अहाँ अगर इन्ह का इस्तेमाल करते हैं तो हाँ जो अपन अखा का ध्यान रखना चाहिए, अपने साह का ध्यान रखना चाहिए, इं नहीं कि अंधा धुंध करते रहे, चमड़ी का भी ध्यान रखना चाहिए, दस्ताने वगैरह पहन लेना चाहिए, हवा का भी रुख जड़ा ऐसा ध्यान च रखना चाहिए कि बड़ी ज़्यादा हवा तो नहीं चली हो है जिसते कि इसे सारी दवाई जी इसे साड़े पर ही पई आए।
0: बिल्कुल तुहें सही गल बोली, क्योंकि प्रयोग अगर करने की जरूरत पौंदी भी है तो बिल्कुल सोची समझ ने जितना घट ते घट प्रयोग हो ही पाए उतना करना, और सारे ते बड़ी गल है कि प्रयोग करती वक्त भी जे ऐसे सावधानियां जरूर बरतनी।
1: बिल्कुल जी, कने खेतों ते रूढ़ी कने उर्वरक कने कीटनाशक जड़े से पानी के स्रोतों जो भी जड़ा से खराब करी देंदे हैं, कुछ रसायना के अवशेष जड़े साढ़े फल सब्जियां वगैरह कने या अन्य खाद्य पदार्थों च जड़े से रही जाते हैं तो सह भी साढ़े स्वास्थ्य जो जड़ा से प्रभावित करते हैं।
0: बिल्कुल जी, तो जरूर आंदे जड़े स्रोता है उन्हें ये गल बड़े ध्यान ने सुनी होनी, और उन्होंने उम्मीद भी करते कि अगर भविष्य च कभी रसायन का छिड़काव करने की जरूरत पौंदी भी है तो तिना जरूर मतलब सोची समझी ने कने घट ते घट करना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, दिखा साड़ियाँ चाहे सह मधुमक्खियां मछलियां हर कोई जड़ा सा इहदा बुरा प्रभाव जड़ी है से लैंदी है।
0: बिल्कुल जी, आंदे चाहे पशु पक्षी है चाहे जंगली जानवर है, जितना ज्यादा अहें मिट्टी च अपना रसायन का प्रयोग करिए किती ना किती उन्होंने सेहत च भी फर्क पौंदा ही पौंदा।
1: बिल्कुल जी, कने अगर सानू दी इसकी जरूरत पई भी आती है तो हाँ जी असं अपनी मिट्टी की जांच करवानी है पहले, कने फसलों की जरूरत के मुताबिक करना है, कने कृषि विशेषज्ञ जड़े उन्होंने जी असं सलाह जरूर लैनी है, कने अगर जरूरत पोए तो ही अपने खेते च पाने हैं।
0: बिल्कुल जी, तो देखा हूँ इस बाद चलना हाँ कार्यक्रम के अगले पास
1: जी।
2: Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till limited period.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
2: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till limited period.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
1: किसान साथियों अहाँ गल करा दे थे रसायना दे बारे च, तो दिखा जालू भी अहाँ कुछ दे दिया काम करना है तो लैवल पर लिखी है जड़ी ये मात्रा है उते अनुसार ही अहाँ जड़ा ऐसा इन्हें जो पाना है कने उचित सावधानी जरूर रखनी है, कने ज़्यादा मात्रा जड़ी ऐसा कदी भी नहीं पानी है, कने हमेशा अहाँ जड़ा ऐसा घटते घट इन्हों का प्रयोग करना है, कने ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ी ऐसे अहाँ प्राकृतिक खेती जड़ी ऐसे करनी है।
0: बिल्कुल जी, अगे मास्टर जी हाँ फिर गलबात जारी रखनी पर अपने स्रोतों का जी ऐसे मनोरंजन भी जरूर करवाना, तो ये लोग गीत जी ऐसे हाँ प्रस्तुत करना अपने स्रोतों वास्ते
1: जी।

0: अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य का भरोसा। डाक जीवन बीमा च कई योजनाएं हैं जिन्हें की सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा ते बाल जीवन बीमा। अपनी जरूरत अनुसार योजना चुनो ते परिवार के भविष्य जो सुरक्षित बनाओ। हुन शहरी लोगों वास्ते भी ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI की सुविधा आई गई है। गांव हो या शहर, अपने परिवार की सुरक्षा वास्ते डाकघर तुहाडे कन्ने है। ते फिर देर कजो करा दे, अजे अपने नजदीकी डाकघर जान्यो ते डाक जीवन बीमा की पूरी जानकारी ले आन्यो। डाक जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य दा भरोसा।
1: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
2: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
1: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
5: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
6: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।

0: इसी कन्नै कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां दा समें जिहड़ा सा इत्थे संपन्न होदा जाने ते पहले दस दईए तकनीकी सहयोग रिहा विकास पठानिया दा कन्नै प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह कन्नै हुण मास्टरनी कन्नै हरि अयोध्या अनुमति
1: अच्छा जी जय हिंद।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,991 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है।
2: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, एमएसएमई को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुकों, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जनसमुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक

0: घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने बताया कि ये हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर स्थिर हुआ। आनंद कुमार बेलकुमार ने परागवे में आयोजित विश्व स्केटिंग खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता। 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Union Cabinet has approved a productivity-linked bonus (PLB) of 78 days for more than 11,40,000 eligible railway employees in recognition of the performance. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today.
2: The Cabinet today approved a productivity-linked bonus equivalent to 78 days' wages for around 11,40,770 railway employees. The bonus is a Diwali gift for all railway employees who work tirelessly day and night to ensure the smooth functioning of the Indian Railways. The total financial outlay for the bonus is approximately 2,009 crore rupees.
1: Mr. Vaishnaw also said large-scale recruitment is underway in the railways, with the recruitment being carried out for around 1,65,000 posts. The union minister said government has also approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years, from 2026-27 to 2030-31, with an outlay of 53,428 crore rupees. He said the cabinet has approved the strategic restructuring of IDBI Bank. Prime Minister Narendra Modi has said India's civilizational journey has been shaped by centuries of cultural exchange and the sharing of knowledge across borders. The Prime Minister made the remarks during a message delivered at the inaugural session of the 3-day international conference on Bharat's cultural connections across the globe in New Delhi today. The Prime Minister highlighted the role of ancient centres of learning such as Nalanda in promoting the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. The Prime Minister's message was read out by Culture Secretary Vivek Agarwal at the conference. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Canadian Foreign Minister Anita Anand today reviewed progress in India-Canada relations covering trade and investment, education, energy, defence and people-to-people exchanges. The two ministers held a meeting in New Delhi, during which they also exchanged views on key regional and global developments. In a social media post, Dr. Jaishankar said, India and Canada are advancing the strategic partnership through leadership-level engagement and sustained cooperation between the governments and industries. India today expressed solidarity with Saudi Arabia and condemned the string of attacks in the West Asian nation. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attack on the Aramco headquarters, which took place yesterday, saying India condemns all such attacks on civil infrastructure in the country. He said such attacks are totally unacceptable and must cease immediately. Mr. Jaiswal

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुना करते सारे ही किसान कने बागवान साथी हैं जो जड़ी है संजा दी बेला दी फिरी ते मास्टर निधि दो हाथ जोड़ी करी राम राम कने किसान साथियों दिखा मेरे सोगी टियाले पर एन हरी है जी कने हरी है जी तो अंजो भी मेरी राम राम
1: मास्टर जी तुहांजो भी मेरी तरफ ते राम राम और अहंदे सारे किसान बागवान भाई बहन जो एक बारी फिर दोनों हाथ जोड़ी करी संजा दी राम राम
0: जी
1: तो देखा फिर अज असें अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी विच जे असें नई नई जानकारियां भी अपने किसानां जो स्रोतां जो देनी कने सौगी सौगी जे असें लोक गीतां ने भी उन्हां दा पूरा मनोरंजन करना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा वैसे भी नवरात्रे लगे हुए न हाँ मिठी मिठियां माता दियां भेंटा भी सुनानियां अपने जड़े जितने भी सारे श्रोता न कने अहां आपू जो भी अहां टियाले पर मौजूद न सारे माता दे दरबार च हाजरी भी लगानी कने लगाना भी चाहिए दिखा।
1: बिल्कुल
0: माता दे अजकल दिन लग्यो सब बखे रौनकां लगियां
1: देखा कितना बढ़िया आंदे हिमाचल च जितने भी तीर्थ स्थल मंदिर सारे चाहे चिंतपूर्णी की गल करिए ज्वाला जी मां की गल करिए बगला मुखी की गल करिए नैना देवी की गल करिए मतलब चौ पास्या किती भी तुहें चली आ ता सारे पास्या जी असें मंदरां विच कने इयां भी देखा चाहे आहां दे ग्रां च भी जेड़े मंदर है उन्हां विच भी और खासकर देखा टियाले पर केड़ा माहौल बनी रहा है ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल देखा इत्थों बखे जेड़ा है साढ़े मंदर है माता दा इत्थों भी देखा हाँ खूब हाजरी लगाई खूब अहां जेड़ा है सै जयकारे किते
1: जी
0: ता देखा जी हुण अहां चलना है कम्मे दी गल्लां दी तरफ ता कम्मे दी गल इह है कि अज अहां तुहानूं जो जानकारी देनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दे बारे च
1: जी
0: ता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिहड़ी है भारत

0: सरकार की एक योजना है जिदा उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण जड़े क्षेत्र हैं साड़ी उन्हां दा सड़कां ने संपर्क जड़ा ऐसा खरा होए जिसते कि क्या हुंदा ग्राएं जो जड़ा ऐसा 12 महीने सड़कां ने हाँ जोड़ी सकन। क्या हुंदा ना हरिया जी कुछ एक ग्राँ ऐसे हुंदे कि जित्थों सड़क ही नहीं हुंदी
1: बिल्कुल
0: तां
1: जी
0: बड़ा मुश्किल हुंदा कि चाहे कोई बीमार पई जांदा तां उस चो वी नीणा जड़ा ऐसा चुक्की के पालकीए च या पिट्ठी पर नीणा पौंदा तां बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जांदी या फिर साढ़े बच्चे जड़े हुंदे उन्हां जो कई किलोमीटर सफ़र करी के जड़ा ऐसा पढ़ना जाना पौंदा।
1: बिल्कुल मास्टर जी तुहें बड़ी अच्छी गल बोली, क्योंकि अहं दा मनना ए ही है कि अगर कोई भी अहं दा इलाका अगर से सड़का ते वंचित आ तो
0: जी
1: एड़ा समझा कि से सारी तरक्की ते वंचित आ।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा
1: और अगर सड़क अहं दे किसी भी बड़े ते बड़े दूर दराज रख क्षेत्र सड़क अगर अहं दे गाँव उन्हां इलाकों विच पहुंचेगी तो
0: बिल्कुल
1: यह समझा कि अहं दी जे तरक्की है से शुरू होगी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा पहले साढ़े ग्राएं की तरक्की शुरू होंगी ता ही साढ़े शहरें की होंगी ता ही साढ़े देश का जोड़ा सा विकास होंदा कने ग्राएं जो शहरे जो कस्बे जो कने मुख्य सड़क जो जोड़ने इस कने जड़ी ऐसा मदद मिलती इस योजना का यही सारे ते बड़ा जोड़ा सा एक फायदा है। दिखा सड़क जालू जुड़ी आनी तो सू क्या क्या मदद मिलनी शिक्षा च कितना फायदा हो जाना जड़ा बच्चे भ्याग ही बेचारे पैदल दूरे दूरे तक चली के जाते बरखा च सिजदे
1: जी
0: है ना और कई घटना घटी आदियाँ तो जोड़ा सा सब कैसी तो छुट्टी भी हो जाती दूजा जोड़ा उन्होंने बच्चों का समय भी बची आता उस समय जो सा पढ़ाई च लगाई के जोड़ा सा सदउपयोग करी सकते।
1: बिल्कुल। कने देखा दूजी गल जियां तुसें पहले गल कीती कि ग्रां च कोई देखा बीमार ही हो जांदा
0: जी
1: तां पालकिया पर नैना या फिर इतने दूर कई बारी 5-6 किलोमीटर आंदे हुण भी अजी भी
0: अजी
1: हिमाचल
0: भी
1: च
0: लेके जांदे बिल्कुल जी
1: ऐसे क्षेत्र हाए
0: जी
1: मास्टर जी कि जिथी बड़ा मुश्किल है अज भी
0: बिल्कुल जी
1: जीवन
0: बिल्कुल
1: यापन करना है ना।
0: जी
1: तो बोलने का मतलब यही है कि अहां दी चाहे सरकार ही उन्हां दी भी सारे ते पहली कोशिश यही रहने चाहिए कि
0: बिल्कुल
1: हर
0: जी
1: ग्रां जो सड़क ने जोड़ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: जी
1: तजे देखा हाँ जो केंद्र सरकार दे पासे ते हर सहूलत मिला दी
0: जी
1: ठीक है ना, तो हाँ दियाँ राज्य सरकार का भी ये फर्ज बनता कि उन्हों का पूरा फायदा चुकन कने अहां दे जड़े गांव है चाहे पिछड़े नहीं बोली सकते फिर
0: बिल्कुल जी
1: जड़ा
0: बिल्कुल
1: गांव सड़क ने जुड़ी गया वो बिल्कुल मतलब तरक्की दे रस्ते पर आई गया।
0: दिखा जाना कई बार क्या होंगे कि साड़ा मरीज जड़ा ऐसा इतना मरीज है सीरियस हुंदा
1: जी
0: भई अहां इतने किलोमीटर का सफर जड़ा जो पिट्ठा पर या चुक्की के या पालकी च नहीं कराई सकते
1: बिल्कुल
0: जड़ी
1: बिल्कुल
0: सुविधा हाँ जो गड्डिया ने मिलनी है एम्बुलेंस घरे तक आई आनी है तो सर कितना फायदा जड़ा सा हो जाता। तो अगर ये छोटिया छोटिया गल्ला जड़िया साड़िए ग्रां च हो एक खुशी का माहौल भी बनी जाता कने सब तो वड्डी गल है कि किसान जड़े हैं साढ़े साथी जालू से फसल उगाते तो सड़क जालू नहीं होंगी तो उन्होंने जो सह भी सब कुछ जड़ा सा पिट्ठी पर ढोई के जड़ा सा मंडिया तक या कुछ पुजाना पौंदा तो उन्हें जो सह फायदा नहीं मिली पाता।
1: बिल्कुल। और देखा कई बारी अगर जियां तुहें मौसम की भी गल की खराब हो तो देखा
0: जी
1: कई बारी अहां दा जिहड़ा माल है कोई सब्जियां है फल है तो मतलब अगर सड़क की सुविधा नहीं और एड़ा मौसम आ कि तिसो मतलब जियां बरखा ही बहुत ज़्यादा
0: बिल्कुल
1: ही
0: जी
1: कोई एड़े रस्ते जिथे चलने का भी डर लगता
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: कियां अहां दे किसान साथी जे ऐसा मतलब उस समान जो अपनी मंडी तक पहुँचाई सकता है।
0: बिल्कुल जी तो क्या होंगे कि तीसरे फिर सब बेचारे किसान साथियों साढ़े उस मौसम की मार भी सहना पौंदी
1: और देखा
0: कने
1: चौं पासियां ते फिर मतलब घाटा जे ऐसे हुंदा ही हुंदा
0: हुंदा
1: फिर
0: ही हुंदा फिर से किसान साथी भी साढ़े हताश हो जाते पे दे दी खेतीबाड़ी करी के भी क्या फायदा। तो
1: बिल्कुल
0: अगर से चीज़ा सारिया दिखिया जान कने तिना उस सुविधा मिलन तो अज से जो थोड़ा प्रयास करा दे तो उन्हें जोड़ा सह प्रयास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाना कने उन्हें जो दिखी के 10 लोगों होर ये काम करना बई ए तरक्की करा दा हूँ करें गड्डिया आई हैं तो अह भी जोड़ा इसे करी
1: बिल्कुल
0: सकते।
1: मास्टर जी। और देखा कई अहां दे इलाके एड़े अज भी इतने मतलब पिछड़े रे बोली सका है
0: जी
1: क्योंकि उत्थी कोई भी जियां चाहे तुहें पर्यटन दी संभावना हो सकदी
0: बिल्कुल
1: बड़ी
0: जी
1: अच्छी
0: जी
1: दूरा दूरा ते देखा अहां दे भारत दे कोने कोने ते बाहरले देशां ते भी लोग इस प्राकृतिक जिहड़ी सुंदरता इहदा ही मजा लैणे आउंदे।
0: बिल्कुल जी
1: पर
0: बिल्कुल
1: अगर सड़क नहीं होंगी तो
0: जी
1: तिना स्थानां री जैसा कीमत जैसा भी बिल्कुल जीरो हो जाती।
0: बिल्कुल जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: अगर अहां दे मतलब सही गल आएगी कि अगर अहारी सरकारा प्रयास करन
0: जी
1: सारे ते पहले सड़कां ने अहां दे पिछड़े ते पिछड़े क्षेत्रां जो भी जोड़न और जिथे प्राकृतिक सुंदर

0: दिता ही वहाँ का भी पूरा फायदा चुकन
1: जी
0: ता जे अता मतलब आहंदे एक मतलब रोजगार च भी आहंदे जड़े किसान साथी उस च भी वृद्धि होनी उत्पादन च भी वृद्धि होनी क्योंकि नई नई तकनीकां ने जे खेतीबाड़ी होनी तो बिल्कुल फायदा आहंदे किसान साथियों जो मिलना
1: करे दिखा ना फिर अगर जे मशीनरी भी जड़ी है साढ़े खेतों तक पुजी आनी तो इन्हों के घर द्वार पुजी आनी तो जड़ा कम बड़े सारे माणू जड़े हैं कई दिनों च मकाते स कुछ घंटिया च हो जाना तो हर जगह जी इस तरक्की ही तरक्की जी इस होनी।
0: बिल्कुल तो देखा गलबात भी असा जारी रखनी पर अपने श्रोतियां दा मनोरंजन लोक गीतां सौगी कराना बिल्कुल नहीं भुलना ता कार्यक्रम च इस च भी अहां जी माता दी एक भेंट सौगी ही लोक गीत दी शुरुआत करनी
1: जी।

0: जी इस बड़ी प्यारी माता दी भेंट ते बाद अहां फिरी चलना है जानकारी दी तरफ। ता हरी है जी अहां हुण जानकारी सुननी है,
1: बिल्कुल जी।
0: ता अहां सुननी है औषधीय जड़ी है पौधियां दी खेतीबाड़ी दे बारे च गलबात।
1: जी
2: जब भी हमारा किसान भाई कोई भी फसल लगाता है तो इस मकसद से लगाता है कि उसको उस फसल से जब भी हमारा किसान भाई कोई भी फसल लगाता है तो इस मकसद से लगाता है कि उसको उस फसल से ज्यादा लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, और जिससे जो है उसके घर परिवार जो है अच्छा रहन सहन हो, उनका उनके रहन सहन में फायदा हो। तो औषधीय पौधों की खेती बाड़ी जो है कितनी लाभकारी है, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो इस संबंध में जानकारी देने हेतु हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन गुलेरिया, जो कि वैज्ञानिक हैं क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जसूर जिला कांगड़ा में। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। तो डॉक्टर साहब कौन कौन से ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनकी खेती बाड़ी करके जो है हमारा हिमाचल का किसान भाई जो है मुनाफा कमा सकता है और उसको जो है अच्छी तरीके से खेती बाड़ी कर सकता है?
3: जी, हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ चार प्रकार के जलवायु और चार प्रकार के क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं। इसलिए हिमाचल के हर क्षेत्र के लिए अलग प्रकार के औषधीय पेड़ पौधों की जो है जानकारी किसानों को रखनी चाहिए। इसके अलावा ये जो अभी कुछ समय में औषधीय पौधों का जो चलन बढ़ा है उसका मुख्य कारण यह है कि जो पारंपरिक हमारी फसलें हैं उनसे आमदनी कम हुई है। जंगली जानवरों का और आवारा पशुओं का और बंदरों का प्रकोप बढ़ने के कारण किसान पारंपरिक फसलें लेने में थोड़ा दुख और उसको मुश्किल आ रही है। तो इस कारण से औषधीय पेड़ पौधों का जो उनसे जो फसलें जो है उनके उनसे बाजार में मांग बढ़ी है, क्योंकि विश्व में जितना भी एलोपैथिक दवाइयां था उनसे लोगों का मोह भंग हो रहा है और धीरे धीरे आयुर्वेदा का प्रचलन बढ़ रहा है। और आयुर्वेदा जब बात आती है तो भारत की तरफ लोग देखते हैं, और भारत की जब बात आती है तो हिमालय की ओर लोग देखते हैं, और हिमालय में हिमाचल जो है बड़ा प्रमुख स्थान रखता है। इसलिए हिमाचल में औषधीय पेड़ पौधों की खेती एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, और इसके कारण किसान भाइयों की आमदनी जो है, हमने एक अनुसंधान किया और उसमें जो इसकी जो रेशो हम एक आर्थिक की बात करें तो जो आम तौर पे हमारी फसलों का अगर हम 1 रुपया कमाई होती है तो औषधीय पौधों से हम लगभग 1.5 से लेकर 1.9% अधिक हम उसकी कमाई कर सकते। इसका मतलब यह है कि उसमें कॉस्ट कम है, खर्चा कम है, और क्योंकि इसमें संभाल भी कम है, और इनकी बाजार में मांग 10% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है।
2: तो ये तो ब्यौरा दिया आपने जो है औषधीय पौधे कितने लाभकारी हैं, कितने गुणकारी हैं। तो वो कौन कौन से पौधे हैं जिनकी खेती बाड़ी जो है हमारे हिमाचल में की जा सके?
3: जो तो हमारे ठंडे और पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ तो काफी महंगे किस्म के औषधीय पौधे मिलते हैं, लेकिन हमारा जो निचला हिमाचल है यहाँ भी बहुत अच्छे औषधीय पौधे जैसे एलोवेरा है, तुलसी
2: जी,
3: है
2: जी,
3: फिर मालकंगनी है, ब्रह्मी है, जल ब्रह्मी है, मुरुकपर्णी है, लेमन ग्रास है, और लेमन ग्रास की काफी किसान जो है निचले क्षेत्रों में खेती भी कर रहे हैं और उसका तेल जो है काफी आर्थिकी उनकी सुदृढ़ हो रही है। इसके अलावा निचले क्षेत्रों का अगर हम देखें तो यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो इस कारण से औषधीय पेड़ों का भी बहुत महत्व है, और औषधीय पेड़ों से ये जो हमारे जो बागवानों से जुड़े हुए किसान हैं उनको थोड़ा अच्छा भी अपील करती है, ये चीज उनको अच्छी लगती है, तो वो इस तरफ काफी रुझान हो रहा है। जैसे हमारा जो अनुसंधान केंद्र है, हमने यहाँ हर्ड के ऊपर अनुसंधान किया और लगभग 5 किस्में जिनकी पूरे भारत वर्ष में डिमांड रहती है, कभी भी औषधीय पेड़ पौधों की चर्चा आती है तो उनका जिक्र भी जरूर रहता है, तो वो जो 5 किस्में हमने तैयार की हैं उनको किसान भाई बड़ी ज्यादा उनकी मांग है। और आप हैरान होंगे कि कई किसान तो इसके फलों को बेच करके 3 से 4 हजार रुपए प्रति पेड़ उनकी इनकम आ रही है
2: जी।
3: और इस प्रकार से जो प्लेन में जितनी भी इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रियां हैं, उनको औषधीय पेड़ों से जो उत्पाद की आवश्यकता है वो आपूर्ति हो रही है, इसलिए वो भी हिमाचल में बहुत ज्यादा जो किसान है उनके साथ उनका संपर्क बढ़ रहा है, और किसान भाई हरड़, बेहड़ा, आंवला, रीठा और इसकी और उनका रुझान है, लसूड़ा, इसकी और उनका रुझान बढ़ रहा है। हमने जो इसमें एक अनुसंधान करके जो इसमें नई चीज जो की है वो एक तो इसमें गुणवत्ता का सुधार किया है, और इसके साथ एक और सुधार हमने किया है कि हमने जो पहले कहावत थी कि पेड़ों का लगाने का अर्थ है कि दादा लगाए पोता खाए, उस कहावत को हमने थोड़ा सा बदला है। हमने उसमें जो कायिक विधियां होती हैं जिसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, उनके द्वारा हमने उन पेड़ों से इनके जो प्रजनन अंग लिए हैं जिसे हम कलम बोलते हैं उनसे हमने उनको स्टैंडर्डाइज किया टेक्नोलॉजी को, और अब जो वो पेड़ जो 16-17 साल के बाद फल देते थे और फल की भी कोई गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती थी, अब हमने इन विधियों द्वारा ऐसी तरह के बगीचे तैयार करना शुरू कर दिए हैं जो लगभग 3rd साल और 4th साल उन्हें फल आना शुरू हो जाता है, और अगर हम 7-8 सालों के बाद किसान भरपूर फसल और ले सकते हैं, और किसान को एक आर्थिकी सुदृढ़ी में इसका बहुत बड़ा

0: हो गया। और किसान को ये लगता है कि मैंने जो पेड़ लगाया उससे मुझे इतने सालों के बाद इतना लाभ होने वाला है, तो किसान भाई अब इनकी तरफ बहुत झुक रहे हैं। और काफी ज्यादा हमारा जो क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र जांच है, यहाँ हमारे पास प्रति वर्ष हजारों के इन पेड़ पौधों की डिमांड रहती है। और किसान भाइयों को हम ये, क्योंकि हमारा एक सरकारी इदारा है तो हम फ्री में कुछ नहीं देते हैं, तो हम इन किसानों को उसकी पूरी कीमत पे चीजें देते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि हमारा कोई भी पेड़ पौधा कभी बचता नहीं है, हमारे पास पौधों की कमी आ जाती है। इस प्रकार से किसानों का रुझान बढ़ रहा है और कुछ किसान तो अब इससे आर्थिकी कमाना शुरू हो गए हैं। और वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो सफलता की कहानियां, वो अब हर क्षेत्र में, हर प्रागपुर हुआ, चाहे वो अपना कांगड़ा का क्षेत्र हुआ, धर्मशाला के आसपास का क्षेत्र, वहां ये शुरू हो गए हैं और किसान भाई इससे काफी लाभ कमा रहे हैं।
1: जी, ये तो बात हुई हिमाचल के निचले इलाकों में जो है, जो अपने औषधीय पौधे हैं उनकी खेती बाड़ी करके किसान जो है कितना फायदा उठा सकता है। इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, भरमौर का है, चंबा का है, ऊपरी इलाका है, हमारे यहाँ भीड़ बंगाल का है, जो और ऊपरी इलाके हैं हमारे, तो वहाँ औषधीय पौधे जो है वो कौन कौन से लगाए?
0: देखिए, वहाँ तो इतना ज्यादा संभावना है। चंबा में हमने एक प्रोजेक्ट के काम किया और वहाँ हमने कड़ू पतरीश एक ऐसा पौधा है जिसको हम छायादार पौधा है, और हमारे बगीचों के नीचे जो ठंडे पहाड़ बर्फ बड़े वहाँ हो सकता है। और ये लगभग 3 से लेकर 6 हजार रुपए प्रति किलो तक इसकी मांग रहती है। अगर ये बीघा में हमने जो इसकी स्टडी किया 20 किलो तक भी हो जाए तो ये लगभग 60 से 80 हजार रुपया 2 बीघों से हमें इनकम दे सकता है। लगभग 30 हजार प्रति बीघा हमें आर्थिक हम ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक है किसान को जानकारी, दूसरा किसान को उसकी जो मूल वृंत और जो उसकी बीज है वो मिलने थोड़े मुश्किल रहते हैं, तो उसके लिए वो हमारे जो केंद्र है, जैसे हमारा कुल्लू में केंद्र है और ठंडे क्षेत्र में जो लाहौल स्पीति है वहां से उनको बीज लेकर के वो करें। दूसरा इसमें एक और है कि उसमें 3 वर्षीय, कम से कम ये 3 वर्षीय फसलें उन क्षेत्रों में है
1: जी।
0: तो इसके लिए किसान को हर वर्ष इनकम लेने के लिए अपने जो पूरा क्षेत्र है उसको 3 से 5 भागों में बांटना चाहिए और प्रति वर्ष एक भाग में ही फसल लगानी चाहिए, ताकि जब वो 3 साल पूरे हो जाए तो उसको एक फसल आना शुरू हो जाए और हर वर्ष उसको वहां से उसके एक पार्ट से इनकम आए। और ये एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जहाँ बंजर और बेकार भूमि भी इन क्षेत्रों में जो है बड़ा ज्यादा संभावना है और किसान की आर्थिकी एकदम बदल सकती है
1: जी।
0: और किसान भाई जो जिन्होंने चंबा में, हमारे अनुभव में आया कि कुछ लोगों ने जिन्होंने दिल से इस चीज को किया है, साई कोठी हुआ, तीसा हुआ, बैरागढ़ क्षेत्र हुआ, भरमौर हुआ, हमारा बड़ा बंगाल का कुछ क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो इसमें लगे हैं औषधीय पौधे खेती में, उन्होंने कईयों ने तो अपनी सरकारी जो दिहाड़ी या मजदूरी करते सरकारी काम करते उनको छोड़ करके किराए पर जमीन लेकर के काम शुरू किया है और बड़े अच्छे परिणाम उसके रहे। और वो किसान भाई हमारे पास अब नई नई जानकारी लेकर भी आते हैं कई बार कि हमारे अफगानिस्तान से ऐसा आ रहा है तो हमारा वो फल भी ऐसा होना चाहिए अनुसंधान करने की, और हमें वो प्रेरित भी करते हैं। तो इसमें बड़ी ज्यादा संभावनाएं हैं और हमारे ठंडे क्षेत्र पूरे भारत वर्ष में अग्रणी हो सकते
1: जी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जब भी कोई फसल लगाते हैं नई तो अच्छी फसल हो जाती है, उत्पादन उसका अच्छा हो जाता है, लेकिन बिक्री के मामले में जो है कहीं कोताही हो जाती है, उनको मंडी का पता नहीं होता है, तो इसके लिए मंडी जो है कैसे सुनिश्चित की जाए, क्या इसका तरीकाकार होना
0: जी? ये एक बहुत बड़ा विषय अभी भी आम किसान के नजर में है कि वो इस चीज में तो माहिर है कि वो फसल को तैयार कर लेता है, लेकिन जब फसल वो बेचने जाता है तो वहां उसको लूटा जाता है। पीछे कुछ अनुभव ऐसे रहे कि किसान जब मजीठा मंडी एक अमृतसर में है जहां औषधीय फसलों का जितना भी उत्पाद है वो बिकता है, वहां से ही लगभग पूरे उत्तर भारत में क्या पूरे देश में वहां से सामान जाता है, लेकिन वहां जो आड़त जो बिजनेस में लोग हैं वो एक उनमें एक डर रहता है कि किसान कहीं सीधा उन इंडस्ट्रियों से संपर्क ना करे तो उनको लगता है कि हमारा जो कमीशन होता है आड़त का वो ना मारा जाए, इसलिए कई बार वो उनको निराश करते हैं, डिस्करेज करते हैं। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में चावड़ी बाजार है और जलंधर में भी काफी इसकी मार्केट है, और हमारे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे कांगड़ा में भी कई जगह स्थानीय स्तर पर जिन्हें पंसारी कहते हैं वो भी इन सामान को खरीदते हैं। और इसके अलावा हमारे किसान भाई ओपन अब व्यापारी जो है इन जहां संभावना है उन क्षेत्रों में व्यापारी लोग, जैसे हमने हड़ की अभी बात की तो उसके व्यापारी गांव-गांव घूमते हैं और वो हमने भी अपना सरकारी एक फार्म के ऊपर बेचा है, व्यापारी लोग आते हैं और वो उन चीजों को बोली देकर के ले रहे हैं और उनकी विश्व में वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं इनके उनके कई प्रकार के उत्पादन वो तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो संभावनाएं हैं वो हमारे अनुसंधान केंद्र, जैसे हमारा क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र जांच है जहां मैं कार्यरत हूं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको अच्छे बाहर भी उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन जो मैंने फसलें जो आपको मुख्य तौर पर बताई इनकी बहुत ज्यादा मांग है और किसान भाई पैदा करेंगे तो इनको खरीदने वाला अपने ही द्वार पे आ जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जब भी कोई युवा किसान अगर शुरू करना चाहता है तो कितने स्तर से करे और कैसे कौन कौन सी फसलें लगाए, अगर हम आपने जो निचले हिमाचली हिस्सों की बात करें
0: जी,
1: तो कौन सी फसल लगाए, कितनी कितनी फसल लगाए इन औषधीय पौधों की
0: जी? देखिए, जो क्षेत्रफल की बात है वो तो हर एक व्यक्ति के पास जितनी उपलब्ध है उससे, लेकिन ये है कि इसमें हम एक नई चीज कर सकते हैं जो सहकारिता उसके माध्यम से करें कि जो युवा है, और ऐसे हमने एक ग्रुप वहां अपने खड़ा भी किया है।

0: किसान भाई जो युवा है वो मिल करके गांव में जो लोग खेती बाड़ी कम करते हैं, जहां जमीन में उपजाऊ क्षमता कम है, वहां वो उस जमीन को लीज पे ले लें और वहां इसकी खेती करें। और वहीं ही मुख्यतः जैसे हमारा निचला क्षेत्र है जहां हम हर्ड की खेती की बात करते हैं, वहां हम लेमन ग्रास की खेती की बात करते हैं, वहां हम एलोवेरा की खेती की बात करते हैं, तो इनके लिए हमें एक जिसे सहकार क्षेत्र जाकर के उसमें करें तो हमारे लिए सारा वर्ष जो है कच्चा माल उपलब्ध रहेगा और उसका हम जिसे हम क्रूड मटेरियल होता है कच्चा माल जो होता है उसके हम आगे शोध करके जो आगे फैक्ट्रियां हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो सहकार में इसको चलने से बहुत ही ज्यादा लाभ ले सकते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट में।
1: तो डॉक्टर साहब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब भी हमने कोई भी काम करना है, औषधीय पौधे लगाने हैं, तो उसके लिए हम जो है एक आर्यता के तौर पर इसको लें और पौधे लगाने से पहले मंडी सुनिश्चित कर लें।
0: हाँ, मंडी सुनिश्चित कर लें, कितना माल जानकारी ले लें
1: जी, किसान भाई जो कितना माल पैदा कर सकता है और मंडी से उसी बाबत जो है बात करें तो उसको जो है।
0: इसमें एक और बात मैं बताना चाहता हूँ जी कि जैसे कुछ जो हिमाचल में जो इंडस्ट्री लगी है वो एग्रीमेंट भी करते हैं किसानों से, लेकिन उनकी एक शर्त रहती है कि उनको कम से कम इतना मात्रा में उत्पादन चाहिए,
1: कच्चा माल चाहिए।
0: तो उसमें कई बार दिक्कत ही आती है कि एक अकेला किसान जो है वो एक वर्ष तो पूरी कर पाता है लेकिन अगले तो वो एग्रीमेंट नहीं चल पाता है। तो इसलिए इसको सहकार में करने से वो इंडस्ट्री की मांग भी पूरी हो जाती है और किसान को भी लाभ मिलता है। तो इसमें जाने से किसान अच्छा फायदा कमा रहे हैं। कई किसानों ने कोऑपरेटिव मूवमेंट में जिन्होंने एलोवेरा का काम किया है, लेमन ग्रास का काम किया है, तो वो कहते हैं कि सहकार में चल गए उनको ज्यादा लाभ रहा
1: जी। तो कहने का तात्पर्य ये हो कि सहकारिता के द्वारा ही जो है हमारा किसान भाई अच्छे औषधीय पौधे लगा के अच्छे बिकवाली करके जो है अपने इंडस्ट्री की मांग को पूरा करके जो है अच्छा लाभ कमा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने औषधीय पौधों की खेती कितनी लाभकारी है इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। दिखा बड़ी छेड़े जानकारी थी, कने इन्हें जानकारी ते सांझो जेड़ा से जरूर फायदा लेना चाहिए, कने अपनी खेती बाड़ी जेड़ा से अग्गे बधाना चाहिए, कने वैसे भी दिखा साड़ी जीवन च जेड़ा से औषधीय पौधिया का बड़ा भारी उपयोग है
3: जी।
2: तो हूँ हाँ फिर चलना एक प्यारी जी जी है से
3: लोक जनकार दे पासे
2: जी, तो वह सुन दे लोक गीत।

0: किसान साथियों दिखा इसी कन्ने जड़े है हां माता दे दरबार च भी अपनी हाजरी जड़ी है से लगाई ली
1: बिल्कुल
0: कने
1: जी
0: दिखा रही है जी हुन तुहाड़े वाल जड़े हैं से मंडी भाव आई है ओ तो दसा वाला
1: बिल्कुल मास्टर जी कांगड़ा सब्जी मंडी च देखा आलू 10 ते 22 रुपये किलो
0: जी
1: दे विच क्योंकि है थोक भाव जी ऐसे दसा कर दे।
0: जी
1: प्याज 46 ते 52,
0: जी
1: टमाटर 28 ते 30, लसन 180 ते 200, अदरक 70 ते 75, शिमला मिर्च 75 ते 80, अरबी 35 ते 40, खीरा 30 ते 35, मटर 120 ते 140, फूलगोभी 40 ते 45, बंद गोभी 22 ते 25, बैंगन 20 ते 22, कद्दू 15 ते 25, मूली 20 ते 22, पालक 35 ते 40, हरी मिर्च 90 ते 100, धनिया 150 ते 200, भिंडी 25 ते 30, फ्रांस बीन 55 ते 60 और मशरूम 170 ते 180।
0: जी ता दिखा ए ता थे सब्जी मंडी दे भाव कने अगर फलां दी गल कीती जाए ता सेब 40 ते 120, केड़ा 40 ते 50 रुपए प्रति दर्जन, अनार 100 ते 170, अनानास 40 ते 45, अमरूद 110 ते 130, मौसमी 40 ते 50, पपीता 50 ते 55 कने संतरा 80 ते 90 रहा।
1: बिल्कुल जी तो देखा हूँ कार्यक्रम का समा भी हुआ करता था, जाने से पहले एक बार फिर ही दसी दे कि कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया होर दा और प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह
0: जी उन सांझो दोनों जो दिया अनुमति।
1: अच्छा
0: अच्छा
1: जी
0: जी
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे किसान व बागबान भाई बहनों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 7:42 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912।
1: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो,
0: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो,
1: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
0: टूटी हो सर्विस तार,
1: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
0: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912 पर।
1: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
0: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
1: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लाहौल स्पीति जिले में 116 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। राज्य सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग का किया गठन। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को ठगने का लगाया आरोप, कहा सरकार हर मोर्चे पर विफल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज लाहौल स्पीति जिले के दुर्गम व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनजातीय सीमावर्ती क्षेत्रों में 116 करोड़ 28 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इनमें स्पीति घाटी के रोंगटोंग में बैटरी स्टोरेज से संचालित प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण भी शामिल है। इस दौरान काजा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में स्पीति के विकास पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कुंजुम पास के नीचे टनल निर्माण के लिए सर्वे करवाने और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टनल के निर्माण से क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों को वर्ष भर बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी।
1: मैं कुंजुम से नीचे जो टनल बनने की बात कह रहा हूँ, स्पीति के लोगों के लिए मैं उसका सर्वे करवाऊंगा और जहाँ तक उचित होगा कुंजुम में हम टनल बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ताकि 24 घंटे यहाँ टूरिस्ट आए और हमारे जो लोग हैं उनकी आय दुगनी हो।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध करवाने का प्रावधान होगा। इस अवसर पर विधायक अनुराधा राणा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे को लेकर चिंता जताई है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में आज राज्यपाल ने कहा

0: काम कर।
1: राज्य सरकार ने जन सुविधा व प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस पुनर्गठन में प्रशासनिक इकाइयों का गठन, मौजूदा इकाइयों का विलय और उनका विभाजन शामिल है। आयोग की अध्यक्षता प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी करेंगे और इसका मुख्यालय शिमला में होगा। आयोग द्वारा प्रदेश में जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों, विकास खंडों और अन्य विभागीय मंडलों की मौजूदा संरचना की समीक्षा की जाएगी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई सुविधाओं, प्राकृतिक खेती और मजबूत विपणन व्यवस्था से जोड़ने पर बल दिया है। शिमला में आज कृषि विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के हित में संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण और स्वरोजगार से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। वे आज घुमारवीं स्थित सेरिकल्चर संस्थान में आयोजित महिला स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राजेश धर्माणी ने कहा कि महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने के साथ साथ आकर्षक पैकेज, उचित लेबलिंग और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद विकसित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स 2020 के बारे में। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन कल्याण के उद्देश्य से किए गए सुधारों का एक प्रमुख हिस्सा है और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।
5: रास्ता रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है, इसलिए देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया। हमने इन बेड़ियों को खोला, हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। मैंने हर सेक्टर को अपने लक्ष्य तय करने को कहा है।
1: सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तय समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे आज नाहन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत शिमला संसद क्षेत्र की 294 सड़कों को मंजूरी दी गई है। सुरेश कश्यप ने जल जीवन मिशन के तहत लंबित कार्यों को वर्ष 2027 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए।
6: हिमाचल प्रदेश को बहुत भारी राशि PMJSY 3 में, PMJSY 4 में मिली है और मेरे संसदीय क्षेत्र की 294 रोड्स PMJSY 4 के बैच 1 में आई है और जिला सिरमौर की 11 सड़कें उसमें है। PMJSY

0: थ्री में 9 सड़कें आई थी। इसके अलावा PMJSY 1 से लेकर और PMJSY 4 तक सभी जितने भी परियोजनाएं समर्पित हुई हमने उनका रिव्यू किया है। 31 मार्च 2027 तक हम सभी स्कीमों को पूर्ण कर लेंगे और सुचारू रूप से हमारी स्कीमें चलने लगेंगी।
1: भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने आज सुजानपुर में भाजपा मंडल द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान ये बात कही। राजेंद्र राणा ने कहा कि सबसे बड़ी वोट चोरी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को ठग कर की है। SIR पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि SIR को कांग्रेस ही लाई थी, जबकि भाजपा राज में इससे वोट चोरी रुकी है। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट चोरी ही नहीं बल्कि हिमाचल की खजाना चोर भी है, जिसने प्रदेश के खजाने को लूटा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि पंचायत चुनावों में जनता ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इनका खाता भी नहीं खुलेगा। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में कल 15 अक्टूबर से पारंपरिक लोक पर्व फूल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। चंबा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमौरी ने समस्त पंगवाल समुदाय को इस 3 दिवसीय उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि फूल यात्रा पांगी घाटी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक रीति रिवाजों और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। सुरजीत शर्मा भरमौरी ने कहा कि इस तरह के पारंपरिक त्यौहार लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के साथ साथ समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत चंबा जिला में 65 सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। हर्ष महाजन ने बताया कि चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए भी इस वर्ष 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लाहौल स्पीति जिले में 116 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। राज्य सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग का किया गठन। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को ठगने का लगाया आरोप, कहा सरकार हर मोर्चे पर विफल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विभाग में MLT अर्थात मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन Grade 2 के 18 पद बैच वाइज भरे जाने हैं। ये पद जॉब ट्रेनिंग के आधार पर भरे जाएंगे। पदों का विवरण इस प्रकार से है। सामान्य श्रेणी के 9 पद, सामान्य श्रेणी EVS का EWS का एक पद, सामान्य श्रेणी WFF का एक पद, अनुसूचित जाति के 5 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 2 पद भरे जाने हैं। आवश्यक योग्यता इस प्रकार से है। आवेदक ने मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10.2 की परीक्षा विज्ञान विषय में उत्तीर्ण की हो। आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थान से BSc, MLT अथवा BSc मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज में डिग्री प्राप्त की हो। उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। वांछनीय योग्यताओं में आवेदक को हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों, रहन सहन व बोलियों का ज्ञान होना अनिवार्य है और साथ ही प्रदेश में प्रचलित

0: विशिष्ट परिस्थितियों में काम करने की दक्षता होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि सामान्य क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 15 अक्टूबर यानी कल 2026 और जनजातीय क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.hphealth.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। वेबसाइट एक बार फिर से सुन लीजिए, www.hphealth.nic.in। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी।
1: कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कैलाश

संगीत के विविध रूपों का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और ये रही कार्यक्रम की अगली पेशकश जगजीत सिंह और साथियों की आवाज में।

0: home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.62 lakhs.
0: Yes, ₹9.62 lakhs. Offer valid till limited period.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹7,999 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.62 lakhs.
0: Yes, ₹9.62 lakhs. Offer valid till limited period.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹7,999 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
4: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
5: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
6: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

जी श्रोताओं, जोश बरार का गाया ये गीत अभी आपने सुना। संगीत के विविध रूपों का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के संग। और सुर अलग हो सकते हैं, धुनें अलग हो सकती हैं, लेकिन संगीत की भाषा हमेशा दिल तक पहुंचती है। ऐसे ही एक और सुरीली पेशकश आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में।

साल ने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

जुबिन नौटियाल और साथियों का गाया ये लोग ये गीत अभी आपने सुना। और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम नगमा, ये पंजाबी गीत जिसे गाया है हरभजन मान और साथियों ने।

इसी पंजाबी गीत के साथ थे आज का विविध संगीत का ये कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

लता मंगेशकर, गुरदास मान और उदित नारायण की आवाज़ों में ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना, जिसे हमने लिया था फिल्म वीर ज़ारा से। कार्यक्रम की अगली देशभक्ति रचना फिल्म कभी खुशी कभी गम से।

संदेशक, शांडिल्य के संगीत निर्देशन में उषा उत्थुप और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कभी खुशी कभी गम से ये देशभक्ति गीत। और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम देशभक्ति गीत जिसे गाया है बी प्राक और साथियों ने।

0: योद्धा फिल्म के इसी गीत के साथ अब देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9 रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
2: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
2: दिव्यांग जनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
3: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, एमएसएमई को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
1: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
2: रेलवे के करीब

0: 5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
2: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है। और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनके हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम

0: और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरंगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
1: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
0: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
2: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
0: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
4: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर दें।
3: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 180,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री

0: For railway employees, Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before Diwali. India's Anand Kumar Vail Kumar wins silver medal in men's 1,000-meter sprint at World Skating Games in Paraguay. That is all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं गीतकार निदा फाजली। निदा फाजली का असली नाम मुक्तदा हसन फाजली था। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ।

जी श्रोताओं, शब्द जब दिल की आवाज बन जाएं, तो वे सिर्फ कविता नहीं रहते, वे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और एक ऐसे ही शायर और गीतकार को हम आज के इस कार्यक्रम में याद कर रहे हैं, जिन्होंने बेहद सरल शब्दों में इंसानी रिश्तों, जिंदगी की उलझनों और दिल की खामोशियों को आवाज दी। जी हाँ, निदा फाजली।

गीतकार निदा फाजली के लिखे गीत आप इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं। और आपको बता दें, उन्होंने आप तो ऐसे ना थे, रजिया सुल्तान, अनपढ़, बिल्लो बादशाह, बेनाम, चाहत, तमन्ना, सरफरोश, तरकीब, वद, लीला, सुर, धूप, देव, सिसकियां, शीशा, मॉर्निंग वॉक और खाप, ऐसी फिल्मों के गीत लिखे। और सरफरोश फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं निदा फाजली का ही लिखा हुआ।

बात करें उन्हें पुरस्कार जो मिले उनकी, तो निदा फाजली को 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और फिल्म सुर के लिए उन्हें भी लेखन पुरस्कार मिले।

उनका निधन 8 फरवरी 2016 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी गीतों, गजलों और साहित्य के माध्यम से लोगों के बीच में जीवित हैं।

सुर फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही कलाकार अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चर्चा का विषय है रिले किया जाएगा।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है बृहत्तर भारत विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत, विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों पुरानी है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ज्ञान के साझा प्रयासों से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा,
3: सो आई विल रीड द मैसेज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आई एम प्लीज्ड टू लर्न दैट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन द थीम भारत कल्चर कनेक्शंस अक्रॉस द ग्लोब। आई वार्मली वेलकम द स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, डिप्लोमैट्स एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। फॉर सेंचुरीज इंडिया सिविलाइजेशनल जर्नी हैज बीन अ स्टोरी ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। Centers of learning such as Nalanda strengthened the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. Monks, scholars, traders and travelers carried India's ideas to different parts of the world through land and maritime routes. Sites such as Angkor and Sambor Prey Kuk in the Southeast Asia bear witness to this cultural dialogue where Indian traditions interacted with local cultures and took distinctive forms. The cultural dialogue continues to evolve even today. Indian philosophy, music, dance, literature, cinema and cuisine continue to connect India with societies across the world. Indian festivals and traditions are also celebrated with enthusiasm in many countries.
1: Sachiv ne brihattar Bharat ke bare mein bataya.
3: It's indeed a privilege for Ministry of Culture that Honorable Prime Minister has given us this mandate to take up the mission of bringing India's ancient connections with the rest of the world, to bring them out, to put in scholarly effort to establish these connections along with scholars of the countries in which we had our ancient connections, and then bring these papers and bring these connections with international recognition.
1: अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक आम श्रोता के दृष्टिकोण से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो ये क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका हमारी संस्कृति के लिए महत्व क्या है, और साथ ही हम जो अपने लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित देश के लिए, उस दिशा में इसका क्या महत्व है?
2: सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि बृहत्तर भारत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ भारत की पुरानी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार नहीं है। इसका आशय उन व्यापक सांस्कृतिक संबंधों से है जिसके माध्यम से भारतीय विचार, भाषाएं, साहित्य, धार्मिक परंपराएं, कला और ज्ञान भारत के बाहर अनेक देशों तक पहुंचे और इन संबंधों को व्यापारियों, समुद्री यात्रियों, विद्वानों, बौद्ध भिक्षुकों, कलाकारों और सामान्य लोगों ने विकसित किया है। तो यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही और इसके प्रभाव आज भी अनेक देशों की संस्कृति में दिखाई देते हैं। तो भारत की सभ्यता की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने विभिन्न विचारों और परंपराओं के साथ संवाद किया है और यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और दर्शन विकसित हुए हैं। आप देखिए, वैदिक साहित्य है, उपनिषद है, बौद्ध और जैन दर्शन है, योग, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान ने भारत के बौद्धिक जीवन को समृद्ध बनाया है
1: जी।
2: तो समय के साथ इसमें से

0: अनेक विचार भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचे। दूसरे देशों ने उन्हें अपनी आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अपना लिया, और इस प्रकार सांस्कृतिक संबंध केवल एक देश से दूसरे देश तक विचार पहुंचाने का माध्यम नहीं थे,
1: जी
0: बल्कि आपसी सिद्धि और एक दूसरे को समृद्ध करने की प्रक्रिया भी थी। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये इसी के विषय में।
1: पराशर जी, अगर आपसे मैं पूछूं तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की प्राचीन विरासत और सभ्यतागत संबंधों को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करते रहे हैं, और भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका भी उन्होंने हमेशा जिक्र किया है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर। जब भी कभी वो लोगों को संबोधित करते हैं तो ये बात जरूर रखते हैं। तो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने की बात हो, संबंधों को और आगे ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में बृहत्तर भारत का महत्व हमारे लिए क्या है?
2: जी निखिल जी, बृहत्तर भारत का जो एक महत्व वाधवा जी ने रेखांकित किया कि ये केवल भौगोलिक सीमाओं के विस्तार की कोई बात नहीं है।
1: जी
2: और जहां तक प्रधानमंत्री की आपने बात की, तो आज जो हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वहां भारतीय डायस्पोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मोदी के साथ विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की जीवंत और खुशनुमा तस्वीरें हर बार हम लोग टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं। विदेश में भारतीयों ने खास पहचान कायम की है, और हम सब जानते हैं कि अब तो बहुत से देशों की राजनीति की मुख्य धारा में भी भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पक्की और पुख्ता जगह बना ली है। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पढ़ा गया, और उन्होंने मुख्य रूप से, जो मुझे लगता है, कि तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया
1: जी
2: कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बड़ी पहचान और सम्मान मिल रहा है, इसमें किसी को भी शक संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि विदेशों में ले जाई गई भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों और पुरावशेषों को वापस देश में लाने की कोशिशों में एक नई रफ्तार आई, यानी विदेशों में किसी भी तरह से जो हमारी धरोहरें थीं वो चली गई थीं, कलाकृतियां थीं, पांडुलिपियां थीं, तो अब दूसरे देश हमें ससम्मान वो हमारी पुरानी चीजें, पुरानी थाती, पुराने पुरानी ज्ञान परंपरा के स्रोत वापस लौटा रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर कही कि भारत के संगीत, नृत्य और समृद्ध दर्शन ने हमेशा दुनिया को जोड़ने वाले पुल के तौर पर काम किया है।
1: जी
2: और यही बात है, यही मूल संदेश है जो आपके प्रश्न में अंतर्निहित है। भारत का पूरी दुनिया के साथ जो कूटनयिक रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित की। और हम जानते हैं कि आज बहुध्रुवीय दुनिया है, ऐसे में भारत भी एक प्रमुख ध्रुव के तौर पर उभर रहा है। ये बहुत सी घटनाओं से हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
1: जी वाधवा जी, भारतीय विचारों और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार हुआ प्राचीन काल में थल और समुद्री मार्गों से हुआ था, और आज की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने सभी सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, व्यापारिक संबंधों की बात हो, या ऐसे कूटनीतिक संबंध हो जिन्हें आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिन्हें बढ़ाया जाना भी आवश्यक हो, उसके लिए भी पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ाने के लिए लगातार समुद्री मार्गों को विस्तार देना, जिसमें कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। हिंद प्रशांत की हम बात करते हैं, खुले हिंद प्रशांत की बात करते हैं, महासागर पहल की बात करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, अगर इनका एकीकरण करके देखें तो इन विचारों को कहां तक पहुंचता हुआ आप देखते हैं?
0: देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर उनका बहुत गहरा प्रभाव है, और बौद्ध धर्म ने भी भारत को एशिया के अनेक देशों से जोड़ा है। तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया सब जगह बौद्ध विचार पहुंच चुके थे प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद आज जैसे प्रधानमंत्री ने नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र किया, इन प्राचीन शिक्षा केंद्रों की प्रतिष्ठा भी भारत के बाहर पहुंच चुकी थी। तो भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा समुद्री मार्गों तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि मध्य एशिया को अगर हम देखें तो उसके साथ भी भारत के पुराने संबंध रहे हैं, और एक रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध एक व्यापारिक नेटवर्क, उसके माध्यम से व्यापारी, यात्री, विद्वान सभी विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करा करते थे।
1: जी
0: हम देखें तो इसका सांस्कृतिक मेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज जो भारत की विदेश नीति है उसमें भी बेहतर भारत की अवधारणा आज भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम एक्ट ईस्ट नीति को देखें तो उसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे पुराने

0: सांस्कृतिक संबंध आज व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क बनाने में सहायक हो सकते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानता, आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होने चाहिए, ऐसा
1: जी
0: भारत का विश्वास है। और संस्कृत की निकटता विश्वास बनाने में सहायता करती है, लेकिन उसे ठोस सहयोग और व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए भारत ने दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाया है, क्योंकि संयुक्त शोध हम देख रहे हैं, काफी सारी छात्रवृत्तियां आरित की गई हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण इस
1: जी
0: दिशा में उपयोगी कदम हो रहा है। और हम देखते हैं कि नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को शोध, छात्रवृत्तियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए, और डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन पुस्तकालय और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी इस दिशा में उपयोगी साधन बन सकते हैं। तो यही बृहत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और भारतीय परंपरा में जो वैष्णव कुटुंबों का विचार है, इसी व्यापक दृष्टि को व्यक्त करता है।
1: वाधवा जी, अभी आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है, तो बहुत ही कम शब्दों में अगर इसे समझना चाहें तो इसका बृहत्तर भारत की ऐतिहासिक अवधारणा के साथ किस तरह का संबंध नजर आता है, और ये जो हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अतीत के संपर्क रहे हैं, आज के रणनीतिक सहयोग को कितना आगे ले जा रहे हैं, खासतौर पे आधुनिक विदेश नीति को धरातल पर उतारने के लिए आर्थिक और सुरक्षा हितों की जब हम बात करते हैं, उनको आगे ले जाने की बात करते हैं।
0: जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण और महाभारत कहानियां दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर इनका बहुत गहरा प्रभाव है, और इंडोनेशिया में रामायण नृत्य, नाटक और छायापुतली कला के माध्यम से आज भी प्रस्तुत की जाती है। थाईलैंड में रामायण का स्थानीय रूप राम कियन के नाम से प्रसिद्ध है। कैम्बोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो इन देशों में भारतीय परंपराओं को अपनी स्थानीय मान्यताओं और जीवन पद्धतियों के साथ मिलाकर नए रूप दिए गए हैं, इसलिए इन परंपराओं को केवल भारतीय संस्कृति का विस्तार मानना पर्याप्त नहीं है, वे उन देशों की एक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। तो ये हमें सिखाता है कि संस्कृतियां एक दूसरे से सीखकर, परिवर्तन स्वीकार करके और नए विचार अपनाकर समृद्ध होती है। और भारत ने जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू करी थी 2014 में, उस समय में विदेश मंत्रालय में सचिव था, और मुझे याद है कि बौद्ध धर्म के ऊपर हमने काफी काम किया, और कई देशों को बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है उसके चलते इन सभी देशों को भारत के साथ फिर से जोड़ने का काफी प्रयास किया था, क्योंकि भारत से बौद्ध विचार कई देशों में पहुंचे थे, और बौद्ध भिक्षुओं ने लंबी यात्राएं की थी और विभिन्न दिशाओं में शिक्षा और धार्मिक अध्ययन की केंद्र स्थापित करने में योगदान दिया था। अब हम चीन को ही देखें तो चीन से फाहियान और ह्वेनसांग जैसे यात्री
1: जी
0: भारत आए, उन्होंने यहाँ के धार्मिक जीवन, शिक्षा केंद्रों और सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया, और दूसरी ओर भारतीय विद्वान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद के लिए चीन और दूसरे देशों में गए। तो हमने नालंदा का फिर से विकास किया, और भारत सरकार आज भी नालंदा को काफी मान्यता दे रही है। वो इसलिए है क्योंकि भारत प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शिक्षा का संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका एक रिवाइवल जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक कोशिश आजकल हो रही है। और आगे मैंने गांधार की कला का भी जिक्र किया था,
1: जी
0: तो इसमें हमें भारतीय बौद्ध विषयों के साथ यूनानी और रोमन कला के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इन सभी का प्रसार एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं विदेश नीति में, तो ये जो पुराने संबंध हैं भारत के इन सभी देशों के साथ में, इनका जो जिसको हम रिवाइवल बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो हो जाए तो विदेश नीति में इसकी काफी सहायता मिल सकती है।
1: जी पराशर जी, भारत और आसियान देशों की अगर हम बात करें तो साझा धार्मिक, साहित्यिक, भाषाई और कलात्मक विरासत की अक्सर चर्चा होती है, तो आपके विचारों को अगर मैं समझना चाहूं तो इन संबंधों की आज कितनी वास्तविक भूमिका आपको लगती है? क्या ये कोई केवल कूटनीतिक आयोजनों तक ही सीमित है, या फिर अभिव्यक्तियों तक सीमित है, या फिर व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं?
2: भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बहुत से देशों तक बहुत पुराने समय से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। भारत के लोग जिन देशों में पहुंचे, कुशल अकुशल मजदूर और कारीगर बनकर वे जिन देशों में पहुंचे और वहीं बस गए, वहां वहां भारतीय संस्कारों ने जड़ें जमाई। बहुत से विदेशी विद्वानों को भारतीय ज्ञान

0: परंपरा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय विचार का प्रचार किया, उसे अपनाया भी और उसका प्रसार भी किया। भारतीय लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते थे, बड़ी समृद्ध परंपरा थी और विदेशी जो लोग थे वो व्यापार के लिए भारत आते थे। आज व्यापार का स्वरूप बहुत ज्यादा वैश्विक है, शिक्षा के लिए देश विदेश के द्वार उदारता से खुले हैं, हुनरमंद भारतीयों ने दुनिया के तमाम देशों में अपनी प्रतिभा के बूते बड़ी और सम्मानजनक जगह बनाई है। ऐसे में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसा आपने बताया कि विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंध बृहत्तर भारत के जरिए जानने समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहत्तर भारत योजना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य, मूल मकसद केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, जैसा कि अनिल जी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आज के आधुनिक दौर में भी भारत के वैश्विक सांस्कृतिक और कूटनैतिक संबंधों को नए आयाम देना है। खास बात यह है कि सम्मेलन में चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, राजदूत और विद्वान लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे में केवल एक दैशिक इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। मैं बहुत सारे एक दूसरे से संबंधित देशों के जो बनते हैं तो केवल भाषाई आधार पर नहीं, साहित्यिक आधार पर नहीं, विकास के और दूसरे जो बुनियादी माध्यम है उनके द्वारा नहीं, एक बहुआयामी अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है और भारत सरकार ये काम कर रही है और काफी सफलतापूर्वक कर रही है, ये हम कह सकते हैं।
1: जी वाधवा जी, भारत चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन काल से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आपने सिल्क रूट का भी जिक्र किया था। आज के समय में जब लगातार हम ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और एशिया में भी इसका असर देखा जा रहा है, तो साझा इतिहास जो हमारा रहा है 72 भारत में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे किस नजरिए से आज देख सकते हैं? क्या ये सभी देशों के बीच में सहयोग का एक बड़ा आधार बनेगा या इतिहास को वर्तमान की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से हम अलग रखें या दोनों को मिला करके आगे बढ़ सकते हैं?
2: 72 भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है और आज दुनिया अनेक संघर्षों, राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। अब किसी दूसरे समाज की भाषा, कला, साहित्य और परंपराओं को समझने से उसके लोगों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। इससे मतभेदों के बावजूद सहयोग के रास्ते खुले रखने में मदद मिलती है। तो नई पीढ़ी को हमें इस विरासत से जोड़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण है और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। युवाओं को शोध और छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए। इसी तरह से कई बार किसी देश में सुरक्षित दस्तावेज दूसरे देश के इतिहास को समझने में भी सहायता करते हैं, तो ऐसे में संयुक्त शोध और जानकारी का आदान प्रदान विशेष महत्व रखता है। क्योंकि विरासत का संरक्षण भी साझा जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ स्थानीय समुदायों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें आपसी सम्मान और साझा हितों पर बहुत जोर है, आज के कॉन्टेक्स्ट में और हम जो ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नई दिल्ली में ये जो आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो इससे आशा की जा सकती है कि भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर नए शोध होंगे और विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा और हमारी साझा विरासत को सुरक्षित रखने के नए रास्ते भी खुलेंगे।
1: जी पराशर जी, 72 भारत की अवधारणा सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में भी हमारे सामने आती है और इसे राजनीतिक विस्तारवाद से भी जोड़ा जा सकता है, तो आपका विचार क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर है या दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू होकर के एक साथ चलेंगे ताकि इतिहास को ना तो संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए और ना ही उसका अधिकतम राजनीतिक इस्तेमाल हो?
0: निखिल जी, 72 भारत योजना, ये योजना पहली बार भारत की किसी सरकार ने शुरू की है और इसके महत्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये योजना 2026 से 2031 के बीच तक चलेगी और इसके बाद इसका कोई दूसरा चरण पर विचार किया जा सकता है। 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जहां तक बात है तो ये भारत सरकार की 72 भारत योजना का ही हिस्सा है। संस्कृति मंत्रालय के ग्लोबल एंगेजमेंट टीम के तहत चलाई जा रही इस योजना के जो लक्ष्य है उन्हें पहले समझ लेते हैं।
1: जी,
0: ये है कि दुनिया भर में बिखरी हुई भारत की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का दस्तावेज

0: 100 साल पूरे होने पर किया जा रहा है, यानी ये शताब्दी वर्ष है बृहत्तर भारत परिषद। परिषद की स्थापना 14 अक्टूबर 1926 को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय विद्वानों ने की। इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारत के बाहर, खासकर दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, धर्म और आध्यात्मिक विचारों के प्रचार और उसके ऐतिहासिक प्रभावों का अकादमिक अध्ययन करना। यानी हम देख रहे हैं कि 100 साल पहले ही हमारे देश के जो दूरदर्शी विद्वान थे, उन्होंने भांप लिया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें पूरी दुनिया में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई रहें, इसके लिए बाकायदा एक संस्थागत प्रयास किया जाना चाहिए, और वो प्रयास 100 साल पूरे होने पर किया गया। इसकी जो थीम है सम्मेलन की, 3 दिनों के दौरान विभिन्न देशों के भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव, पुराने व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रूट का जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ, दर्शन, कला, वस्त्र यानी टेक्सटाइल और खान पान के आदान प्रदान जैसे 10 जीवंत विषयों पर गहन चर्चा इस सम्मेलन में होगी। एक एक करके अगर देखें हम तो शुरुआती जुड़ाव और सभ्यतागत संपर्क यानी प्राचीन पुरातत्व, व्यापारिक मार्ग और शुरुआती संपर्क के साधन कौन कौन से थे, उनका अध्ययन करना, धार्मिक परंपराएं और ज्ञान प्रणालियां जैसे बौद्ध धर्म का उल्लेख हुआ, हिंदू और सूफी विचारों का वैश्विक प्रसार इसका उल्लेख हुआ, इससे संबंधित अध्ययन करना, दर्शन, भारतीय ग्रंथों और दर्शन का दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों में रूपांतरण यानी अनुवाद और उसका प्रकाशन, मूर्त वास्तुकला, मूर्तिकला और प्रदर्शन कलाओं की निरंतरता क्या क्या रही इसका अध्ययन, प्राचीन काल में वस्तुओं और विचारों के वाहक के रूप में व्यापारिक संबंध किस तरह के थे
1: जी,
0: उसका अध्ययन करना, वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण और सभ्यतागत निरंतरता इसकी स्टडी करना, भोजन और पहनावे के माध्यम से संस्कृतियों का आपसी तालमेल बिठाना, अमूर्त विरासत का संरक्षण करना जैसे लोक कलाएं हैं, त्योहार हैं और मौखिक वाचिक परंपराएं हैं, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय विद्वता की पुनर्प्राप्ति ये हासिल करना, और समकालीन दौर में यानी आज के दौर में कंटेम्पररी टाइम में सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक युग में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इस बात को स्टडी करना इसका लक्ष्य है।
1: जी वाधवा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक विचार विमर्श की जब बात होती है तो इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में किस तरह का स्थान प्राप्त होता है, हमारी मतलब जो विरासत है उसे वहां पर किस तरह से लिया जाता है?
2: आज हमारे भारतीय मूल के लोग विश्व के अनेक देशों में रहते हैं और मॉरिशस, फिजी, कैरिबियन देश हैं, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है क्योंकि वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं, त्योहार मनाते हैं और फिर संगीत, नृत्य और खान पान की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे अपने निवास देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान देते रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय भारत और दूसरे देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेतु है। उनकी भूमिका केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था सीमित नहीं है, वे अपने अनुभवों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से दोनों समाजों को करीब लाते हैं और कई पीढ़ियां भारतीय परंपराओं को अपने निवास देशों की संस्कृति के साथ जोड़कर नए रूप भी दे रही हैं। तो इससे पता चलता है कि संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, जीवन के साथ बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आज योग हो या भारतीय संगीत हो, नृत्य, सिनेमा, साहित्य और खान पान की लोकप्रियता विश्व के अनेक देशों में दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने कुछ सालों से मनाया है, योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है और भारतीय फिल्मों और संगीत ने विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को भारत से परिचित कराया है। ये भी भारत की सांस्कृतिक पहचान की मजबूती बताते हैं और भारत की संस्कृति में करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे विचारों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच इन विषयों पर विचार विमर्श उपयोगी हो सकता है और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ अध्ययन करके हम उसके उपयोगी पक्षों को समझ सकते हैं और मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति शक्ति केवल उसके प्राचीन इतिहास में नहीं बल्कि दूसरों से सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने और फिर विश्व को जोड़ने की क्षमता में भी है। तो यही बेहतर भारत का संदेश भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, विश्व की विविधता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण भविष्य के निर्माण में योगदान देना।
1: जी पराशर जी, आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है जहां पर ऐतिहासिक तथ्यों की बात तो होती है, साथ

0: में उसमें अतिरंजित दावे भी बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। तो ऐसे में जब हम इतना बड़ा एक आयोजन लेकर के चल रहे हैं जहां पर बृहत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे सुनिश्चित होगा कि सांस्कृतिक विरासत की जो चर्चा होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी और उन्हीं बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो वास्तव में हमारी विरासत से, हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से जुड़े रहे हों।
1: निखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेट की दुनिया में आजकल गलत खबर, गलत सूचना, गलत तथ्य बड़ी आसानी से, बहुत सुगमता के साथ प्रचारित कर दिए जाते हैं। लेकिन आज इंटरनेट की सामग्री जो है पूरे विश्व में, उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और सरकारी सिस्टम में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि इस तरह की जो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, गलत तथ्य है, उनका प्रसारण और उनका प्रसार प्रचार पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें फैलने से रोका जा सके। पूरे आयोजन का जो लक्ष्य है, अगर एक वाक्य में कहें तो औपनिवेशिक सीमाओं से दूर जाकर, परे जाकर, भारत को मात्र एक भौगोलिक भूमि न मानकर एक आध्यात्मिक और सभ्यतागत विचार के रूप में फिर से स्थापित करना है। और अगर इसके प्रचार प्रसार पर सही तरह से सकारात्मक माध्यमों से, सकारात्मक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, दुनिया भर में पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि अभी उल्लेख हुआ, प्राचीन भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय बहुत सारे देशों के छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। भारत की पहल पर पूरी, उस समय तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की जो पहचान है, उनकी जो कीर्ति है, पूरी दुनिया में किस तरह फैली होगी। भारत की पहल पर पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, अनिल जी ने भी उल्लेख किया। भारतीय आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ रहा है। भारतीय खगोल विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत ने शून्य दिया जिसके बिना गणितीय गणनाएं संभव ही नहीं थी। रामलीलाओं का आयोजन दुनिया के कई देशों में होता है। होली, दीपावली जैसे भारतीय त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं आजकल। भारतीय संगीत, नृत्य परंपराएं, खान पान, शाकाहार, संयम, प्रकृति के सम्मान की परंपरा पूरी दुनिया ने अपनाई है। अनिल जी ने भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे प्राचीन विचारों की पूरी दुनिया कायल है और ये विशुद्ध भारतीय विचार हैं। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु, विदेशी नागरिक उसमें शामिल होने आए। और भी हमारे जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं उसमें बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे जो भारतीय तो आते ही हैं, लेकिन विदेशी नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन हैं वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार ये योजना 5 साल के लिए लागू की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बृहत्तर भारत योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक सांस्कृतिक जो धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है बहुत प्राचीन समय से, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का ये अच्छा अवसर है। और इसके प्रचार प्रसार पर सरकार को भी बहुत ध्यान देना चाहिए और जो संस्कृति कर्मी है हमारे देश के, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इनको भी इसके प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और खासतौर पर नई पीढ़ी के सामने।
0: जी अनिल वाधवा जी और रवि पराशर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए रूपक।

0: भारत माँ के बहादुर सपूत आजादी के मतवाले सैनिकों में एक नाम है कैप्टन राम सिंह ठाकुर। अभिनय और जादुई संगीत की गूंज से जिन्होंने खिलाफत की अपने देश में अंग्रेजी साम्राज्य की। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने न जाने कितने ही जवानों को प्रेरित किया और विस्तार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित आजाद हिंद फौज का
1: अमर क्रांतिवीर तथा प्रख्यात संगीतकार कैप्टन राम सिंह का जन्म धर्मशाला के निकट गांव खन्यारा में 15 अगस्त 1914 को एक फौजी परिवार में हुआ। इनके पिता श्री दिलीप सिंह ठाकुर एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक थे। एक कर्मठ सैनिक होने के कारण इनके पिता श्री अपने घर की ओर पूर्ण रूप से ध्यान दे पाने में असमर्थ थे। बालक राम सिंह ठाकुर का पालन पोषण इनके नाना श्री नत्थूचंद ठाकुर जी के घर पर हुआ। इनके नाना शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। इन्हीं की छत्रछाया में बालक राम सिंह ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बालक राम सिंह बांसुरी और हारमोनियम में लीन रहते।

0: संगीत में अपार रुचि होने के कारण केवल माध्यमिक स्तर तक ही पढ़ सके।
1: जनवरी 1928 ईस्वी में धर्मशाला छावनी में स्थित सेकेंड फर्स्ट गोरखा राइफल्स के प्रमुख सेना अधिकारी कर्नल फेरल ने बालक राम सिंह की संगीत के प्रति अथाह रुचि को देखा और उन्हें रिक्रूट बॉय बैंड में भर्ती कर लिया। सैनिक जीवन के आरंभ में ही इन्होंने सेना बैंड के अधिकारियों लेफ्टिनेंट हॉडसन तथा लेफ्टिनेंट डेनिस से ब्रास बैंड, स्ट्रिंग बैंड तथा डांस बैंड में दक्षता प्राप्त की। कैप्टन रोज ने बालक राम सिंह ठाकुर की संगीत के प्रति अपार रुचि को भांपते हुए इन्हें वायलिन बजाना सिखाया। भारतवर्ष की शाही सेना में कार्य करते हुए राम सिंह ठाकुर अपनी चतुरता, फुर्ती और जोश के कारण लोकप्रिय हो गए और वर्ष 1941 में अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण कंपनी हवलदार मेजर का पद प्राप्त करने में सफल रहे।
2: दिसंबर 1941 में ही जापानियों ने मलाया थाईलैंड सीमा पर जोरदार हमला किया।
1: फलस्वरूप अंग्रेजी सेना सिंगापुर से पीछे की ओर हटने लगी।
2: इसीलिए उसी वर्ष राम सिंह ठाकुर को मुंबई से अपनी यूनिट के साथ सिंगापुर मलाया की ओर जाने के आदेश मिले।
1: उधर जापान ने मित्र राष्ट्रों को युद्ध में लपेटने की धमकी दी हुई थी।
2: अमेरिका और ब्रिटेन की मित्र सेनाएं जापान से बदला लेने को आतुर थी।
1: देखते ही देखते इस युद्ध ने वर्ष 1942 में भयंकर रूप धारण कर लिया।
2: इस युद्ध में जापान मित्र सेनाओं पर हावी रहा।
1: जापान ने मित्र सेनाओं को बर्मा, मलाया, थाईलैंड, सिंगापुर तथा अंडमान निकोबार की धरती से खदेड़ना शुरू किया
2: और हजारों सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया।
1: उनमें से एक नाम था राम सिंह ठाकुर।
2: इस युद्ध की सफलता के बाद जापान ने युद्धबंदियों को भारत की आजादी के पक्ष में करना शुरू कर दिया।
1: सबसे पहले

0: 200 ही युद्ध बंदियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्ष में किया।
1: इनमें मोहन सिंह, पूर्ण सिंह तथा अल्लादिता सहित एक नाम था राम सिंह ठाकुर।
2: उधर जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन हो ही रहा था कि यहाँ इन युद्ध बंदियों को वॉलंटियर बनाकर पूज्य रास बिहारी बोस भी एक फौज का गठन करना चाहते थे। जापान सरकार समस्त युद्ध बंदियों के साथ थी। जून 1942 में बैंकॉक में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन जापानी सरकार ने करवाया। यहाँ इंडिया इंडियंस लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस चुने गए। फिर काउंसिल ऑफ एक्शन बनी और गठन हुआ आजाद हिंद फौज का।
1: इस फौज में प्रथम 14 पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन मोहन सिंह को सेनाध्यक्ष का पद और राम सिंह को कैप्टन के पद से विभूषित किया गया। 3 जुलाई सन 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पधारे।

0: सुभाष जी वे जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पर हिंद को वे शाने हिंद आ गए।
1: देश प्रेम के गीतों के लिए राम सिंह ठाकुर द्वारा तैयार की गई मधुर धुनों से नेताजी का मन प्रसन्न हो उठा।
2: आजादीन फौज की आरजी हुकूमत जब बनने की तैयारी हुई तो नेताजी ने कहा कि जब हमारी आरजी हुकूमत बनेगी तो हम अपना कौमी तराना गाएंगे। उस कौमी तराने को, उसकी धुन को राम सिंह आपको बनाना है। नींद आने वाली धुन की जरूरत नहीं, जगा देने वाली धुन होनी चाहिए। मैंने कहा नेताजी आपके आशीर्वाद से जैसे आप चाहते वैसा ही धुन होगा। तो जन गण मन अधिनायक जय हो के गीत को नेताजी ने, आबिद हसन साहब ने और उच्च अधिकारी ने उसकी तर्जुमा ट्रांसलेशन हिंदी में की और वो गीत हमारा कौमी तराना बना जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ।
3: शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भागे जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा।

0: इस गीत को सुनकर नेताजी ने कैप्टन राम सिंह की पीठ थपथपाई और कहा,
1: मैं एक ऐसा गीत सुनना चाहता हूँ जिसे समस्त आजाद हिंद फौज के सेनानी और भारतवासी मिलजुल कर गाएं और उमंग में आकर आगे और आगे बढ़ते जाएं।
0: राम सिंह ठाकुर ने अपने एक साथी कवि क्रांतिवीर सेनानी मुमताज हुसैन के साथ मिलकर ये गीत लिखा और धुन बनाई

नेताजी 21 अक्टूबर सन 1943 को फिर से सिंगापुर पधारे। इस अवसर पर राम सिंह ठाकुर ने उन्हें ये गीत सहगान के रूप में सुनाया। इस गीत को सुनकर नेताजी राम सिंह ठाकुर से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी ओर से एक जर्मन वायलिन भेंट किया।

0: इस वायलिन से वो गीत बजाया जाए जिसे बजाते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारी आजाद हिंद फौज दिल्ली में लाल किले पर अपना प्यारा तिरंगा झंडा फहराए।
1: हर रोज की तरह युवा कैप्टन राम सिंह ठाकुर अपने संगीत के संसार में लीन रहते। गीत संगीत और अभिनय के माध्यम से हजारों सैनिकों के मध्य मिलजुल कर लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते। स्वतंत्रता सेनानी श्री चरण सिंह जी का कहना है,
2: मैं उनके साथ संपर्क में था जब हम सिंगापुर में पहुंचे। सिंगापुर में हम कैदी थे तो उस वक्त वो आया करते थे हमारे कैंप में। हमें आ करके वो अपना कुछ मंत्र बताते थे कि आप, हम हिंदुस्तान को आज़ाद करना है तो अब हमने INA में जाना, नेताजी की फौज में जाना। नेताजी उस वक्त आ चुके थे तो उस वक्त वो आ करके हमें ये बातें बताते रहते थे। वही थे हमारे एक किस्म का गुरु समझिए, कुछ भी समझिए। उन्होंने हमें INA में आने के लिए हमें उत्साह किया। उनके कहने पर उनका यानी उसमें आ करके फिर हम भी उनके INA में हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए छलांग लगा दिए जी। और वो बिल्कुल हठीले गठीले और बिल्कुल तकड़े और छोटा सा आदमी था वो। उस वक़्त हार्डली कोई 4.5 फुट ही होंगे उस वक़्त। तो वो आकर के बड़े रूप से वो आते थे और बड़े उनका चाल जो था बड़ा फुर्तीला, ठक ठक ठक ठक करके वो ऐसे चलते थे। तो बहुत हंसमुख थे और बड़ा, जब आदमी से वो बात करते थे तो बड़े हंसमुख से और बहुत मिलनसार आदमी थे वो। तो हमें उनके संपर्क में आकर के हमने भी कुछ थोड़ा बहुत उनसे सीखा ऐसी ऐसी बातें।

रंगून और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज ने अपने रेडियो स्टेशन स्थापित किए। राम सिंह ठाकुर को इनका संगीत निर्देशक नियुक्त किया।

0: स्वतंत्रता सेनानी श्री होशियार सिंह जी ने इनके बारे में कहा।
1: 40 में जब लड़ाई हुआ तो हम इकट्ठे थे, उसके बाद फिर हम मलाय में इकट्ठा हुआ ईपो में, ईपो के बाद हम कोलालमपुर में जब आज़ाद हिंद IANA खड़ा हुआ था उस टाइम में वो मिजुक का डायरेक्टर था, मिजुक का गाना गुना गाते थे और वो आम जो इंडियन आर्मी का जो जवान है उनको एडवर्टाइजमेंट करते थे कि आप आज़ाद हिंद फौज में आएँ और अपना देश के लिए काम करें, उनका ये प्रथम उसका कार्य था। हमारे देश के आज़ादी के लिए ये कार्य है, इसलिए हमें अपने तन मन धन कुर्बान करके काम करना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज जब बना, सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको म्यूजिक डायरेक्टर बनाया और उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे गाना बनाए हैं जोशीला, जैसे उन्होंने एक गाना जवान के लिए बनाया था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। हम दोनों एक ही कंपनी में था, हेडक्वार्टर कंपनी में, और हम ऐसे प्रेम से बैठते थे, वो बहुत दिलचस्प आदमी थे, गाना गाने के लिए नाचने के लिए, और हर ड्रामा में वो पार्ट लेते थे, दशहरे में पार्ट लेते थे, दुनिया को मनोरंजन देते थे, बहुत खुश करते थे, वो तरह तरह के बाजे बजाते थे, वायलिन सैक्सफोन क्लैनेट, और ये बजा के वो सबको मनोरंजन करते थे देश में पल्टन में, तो उनका बहुत नाम था कि राम सिंह ने सब जवानों को खुश करके रखा है बटालियन में, और बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत ज्ञानवान विद्वान आदमी थे।
0: इस दौरान उन्होंने अनेक देश प्रेम के गीतों को मधुर संगीत में सजाकर उक्त रेडियो द्वारा प्रसारित किया। रेडियो के ये दोनों केंद्र केवल एक ही नाम रेडियो शियोनान के रूप में अपना दैनिक कार्यक्रम प्रसारित करते। कार्यक्रमों का शुभारंभ व समापन भारतीय राष्ट्रीय गान शुभ सुख चैन की बरखा बरसे से होता था।

0: और इस तरह रेडियो शिनॉन के माध्यम से कैप्टन राम सिंह ठाकुर समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत किया करते। क्रांति वीरों ने देशभक्ति के गीत लिखे और कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने स्वरबद्ध तथा संगीतबद्ध किया उन गीतों को।
1: वर्ष 1945 ईस्वी के मई माह में ब्रिटिश सेना ने रंगून पर अधिकार कर लिया
2: और राम सिंह ठाकुर को बंदी बनाकर भारत लाया गया।
1: यहां लाकर लाल किला दिल्ली में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया।
2: इनका कसूर था कि इन्होंने गीत संगीत और अभिनय के माध्यम से हुकूमत के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया था।
1: अब कैप्टन राम सिंह ठाकुर के समक्ष अगर कुछ था तो वह केवल फांसी का फंदा।
2: अपील, दलील और वकील, ये तीनों ही सूत्र उनके लिए अर्थहीन सिद्ध हो चुके थे।
1: पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
2: अदालत में अंग्रेजी सरकार सहगल, ढिल्लो व शाहनवाज का केस ही हार गई
1: और आपको समस्त युद्ध बंदियों के साथ रिहा कर दिया गया।
2: इसी दौरान इनकी भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई।
1: नेहरू जी इनकी देशभक्ति व संगीत प्रतिभा से प्रभावित हुए,
2: इन्हें अपना कार्य जारी रखने के लिए कहा
1: और इस तरह कैप्टन राम सिंह ठाकुर अपने संगीत दल के साथ देश भर में भ्रमण किया करते और लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करते।
2: इसी दौरान इन्हें पुनः पुलिस ने पकड़कर दिल्ली छावनी के कारागार में डाल दिया।

0: इसी वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली छावनी के कारागार में स्वतंत्रता प्रेमी बंदियों से मिलने पधारे। कैप्टन राम सिंह ने नेताजी द्वारा भेंट में दी गई वायलिन पर देशभक्ति के गीत बजाना आरंभ कर दिया। गांधी जी ने इनके सिर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। इनके आगमन के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सुबह ही इन्हें जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी के चले जाने के बाद अंग्रेजी सरकार ने कैप्टन राम सिंह को पुनः बंदी बनाकर मुल्तान की जेल में बंद कर दिया।
1: 11 अप्रैल 1946 को यहां से रिहा होने के पश्चात अपने पैतृक स्थान धर्मशाला वापस आए। योलकैंट में अपने पुराने मित्रों से मिलने गए। उन दिनों योलकैंट की सैनिक बैरकों में इटली के सैनिक बंदी भी थे, जिनके पास अनेक वाद्य यंत्र थे। इटली के इन सैनिक बंदियों ने कैप्टन राम सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया और अपने समस्त वाद्य यंत्र इन्हें भेंट स्वरूप प्रदान कर दिए।
2: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
3: सौगात नई, कुछ नए तराने,
4: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
2: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
3: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
2: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
3: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
4: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
0: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली छावनी के कारागार में स्वतंत्रता प्रेमी बंदियों से मिलने पधारे। कैप्टन राम सिंह ने नेताजी द्वारा भेंट में दी गई वायलिन पर देशभक्ति के गीत बजाना आरंभ कर दिया। गांधी जी ने इनके सिर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। इनके आगमन के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सुबह ही इन्हें जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी के चले जाने के बाद अंग्रेजी सरकार ने कैप्टन राम सिंह को पुनः बंदी बनाकर मुल्तान की जेल में बंद कर दिया।
1: 11 अप्रैल 1946 को यहां से रिहा होने के पश्चात अपने पैतृक स्थान धर्मशाला वापस आए। योलकैंट में अपने पुराने मित्रों से मिलने गए। उन दिनों योलकैंट की सैनिक बैरकों में इटली के सैनिक बंदी भी थे, जिनके पास अनेक वाद्य यंत्र थे। इटली के इन सैनिक बंदियों ने कैप्टन राम सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया और अपने समस्त वाद्य यंत्र इन्हें भेंट स्वरूप प्रदान कर दिए।
0: आखिर 15 अगस्त 1947 का शुभ दिन आ गया। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। इस शुभ अवसर पर राम सिंह ठाकुर ने अपने संगीत दल के साथ दिल्ली में लाल किले पर अपनी बनाई राष्ट्रगान की धुन बजाई और ये राष्ट्रगान था, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग्य है जागा।

0: प्रथम स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर नेहरू जी ने कैप्टन राम सिंह ठाकुर के प्रति ये कहा,
1: He is great.

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में कैप्टन राम सिंह ठाकुर को उनके संगीत दल सही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस सशस्त्र बल तृतीय वाहिनी में नियुक्त कर लिया। वर्ष 1974 में जब ये सेवा से निवृत्त हुए तब इन्हें इसी पुलिस सशस्त्र बल में आजीवन कार्य करने का सम्मान भी उप पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रदान किया। उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रथम राज्यपाल का पदक 1956 ईस्वी में तथा भारत के राष्ट्रपति का पदक इन्हें वर्ष 1971 ईस्वी में देकर राज्य तथा केंद्रीय सरकार ने सम्मानित किया।

0: कैप्टन राम सिंह ठाकुर, आकाशवाणी धर्मशाला में जुलाई 1999 में हुई भेंटवार्ता के दौरान बताते हैं।
1: नेताजी की जो भावनाएं कल्पनाएं थीं उसको सामने लाएं तो आज देश संकट में जरूर है, लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो काबिलियत पुरुष हैं, अफसरान हैं, हम उनके आदेश पर, उनके आज्ञा पर, उनके विचारधारा पर सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और पिछड़े हुए लोगों को भी साथ लेकर अपने साथ आगे रखेंगे और देश को दिन दुनी चार चंदनी आगे बढ़ाते रहेंगे। और मरना जीना तो दुनिया में आता ही जाता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज जो हमने सपना देखा था और नेताजी ने जो कल्पना की थी वो रूप आया नहीं, लेकिन आने की हम पूरा पूरा चेष्टा करते हैं और विश्वास करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हमारा देश पीछे कभी नहीं होगा, हमेशा आगे ही रहेगा। हमारा देश सारे दुनिया के देश को रास्ता बताएगा कि इस रास्ते से चलो।
0: 8 जनवरी सन 1977 ईस्वी को आजीवन उप पुलिस अधीक्षक, क्रांतिवीर संगीतकार के रूप में राम सिंह ठाकुर को लखनऊ के निवासियों ने अपनी ओर से भव्य सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने उन्हें 1,00,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। सिक्किम सरकार ने भी इन्हें 50,000 रुपए का मास्टर मितसेन पुरस्कार प्रदान किया।
2: पंद्रह अप्रैल 2002 ईस्वी के दिन इस अमर क्रांतिवीर संगीतकार के निधन के समाचार ने समस्त देशवासियों को शोकग्रस्त कर दिया। कैप्टन राम सिंह ठाकुर की अद्वितीय देशभक्ति और संगीत कला के माध्यम से भारतवर्ष के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतिहास में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। राष्ट्र आज भी नतमस्तक है आजादी के अमर क्रांतिवीर कैप्टन राम सिंह ठाकुर की अमूल्य देन को।

अभी आप सुन रहे थे रूपक, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीतकार गुलजार और संगीतकार हैं खय्याम।

0: 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: घर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर है। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, बोल गुलजार के, और संगीत है RD वर्मन का।

मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। इस फिल्म के इस गीत को गाया है भूपेंद्र सिंह, लता मंगेशकर ने, संगीत मदन मोहन का, और गीतकार हैं गुलजार।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना फिल्म कटी पतंग से ये गीत। इस गीत को गाया था किशोर कुमार और साथियों ने। और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से

0: ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और दो अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरू, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपये नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रोपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।